आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 1 अगस्त सन 2026। प्रातः के 5:58 और ठीक 47 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की ये प्रथम प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। सुबह के 6 बजे अब समाचार होंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
2: बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
1: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिथम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मेटा की ग्लोबल टीम से अगले सप्ताह के मध्य में पूछताछ होने की संभावना है। टीम को संसदीय समिति के समक्ष भी पेश होना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूर पहुंचेंगे। यहां वो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय युवा विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए खेलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
3: कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीज की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीव इन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीव इन करेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से बात कर उन्हें पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। कल सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि बातचीत के दौरान दोनों नेता प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा और जनधन संबंधों जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने और भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर सहमत हुए। दिल्ली सरकार ने बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के अनिवार्य उपयोग की समय सीमा 16 अगस्त तक बढ़ा दी है। संशोधित निर्णय के अंतर्गत 15 अगस्त तक पिंक टिकट जारी किए जाएंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। भारत के अब तक कुल 20 पदक हो गए हैं, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। सांसारिक सुखों को त्याग कर राम नाम का स्मरण करने से जो आनंद प्राप्त होगा वो सांसारिक वैभव में कभी पाया नहीं जा सकता। राम सत्य है और जगत मिथ्या।

कागा किसका धन हरे, कोयल किसको दे, मीठी बानी बोल के जग अपना कर ले।

पिता दाता बंधु भ्राता, वाहेगुरु तू सब प्रकार से सहायक है। मेरी निष्ठा मेरा समर्पण जैसे जैसे बढ़ता जाता है, विश्वास का समुद्र ठाठे मारने लगता है। वाहेगुरु तेरी फतेह।

तेरा नूर तेरा जहूर जर्रे जर्रे में नुमाया होता है। नूरे बसीरत जिसे तूने अता कर दिया, उसे हर रह गुजर में नक्श कफे पाए यार नजर आया।

हरिहरन और साथियों को आप सुन रहे थे। इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं संगीतमय श्री रामचरितमानस गान।

श्री राम को अयोध्या लौटा लाने के अपने विनीत आग्रह को त्याग कर भरत ने निर्णय प्रभु पर छोड़ दिया। अग्रज के प्रति अपनी भक्ति तथा निष्ठा की दुहाई देते हुए उन्होंने कहा, गुरु और स्वामी का स्नेह पाकर मेरा क्षोभ मिट गया है, मन में अब कोई संदेह नहीं रहा। दया निधान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए आपके चित्त में किसी प्रकार का क्षोभ न हो। सेवक का हित इसी में है कि वो समस्त सुख और लोभ छोड़कर स्वामी की सेवा करे। हे नाथ, आपके लौटने में सबका स्वार्थ है, किंतु आपकी आज्ञा के पालन में ही सबका कल्याण है। भरत की विनय ये थी कि यदि स्वामी चाहें तो अकेले भरत वनवास करें, अथवा लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को अयोध्या लौटाकर भरत श्री

राम की सेवा में वन गमन करें, अथवा श्री राम तथा सीता अयोध्या लौट जाएं और बाकी तीनों भाई वन को जाएं। इन सभी विकल्पों में भरत अपना ही स्वार्थ होना बताते हैं, क्योंकि उनके अनुसार न तो उन्हें नीति का ज्ञान है और न धर्म का। इसी समय सभा स्थल पर राजा जनक के दूत पहुंचते हैं, जिनसे ये समाचार मिला कि स्वयं राजा जनक वहां पहुंच रहे हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे संगीतमय श्री रामचरितमानस गान। गायक कलाकार थे चतुर सेन और राजेंद्र काचरू। संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है चिंतन।
1: हमारे ग्रंथों में एक बड़ा सुंदर मंत्र इन शब्दों में मिलता है, उठो जागो और जब तक ध्येय की प्राप्ति ना हो प्रयत्न करते रहो। जीवन में सफलता की यही कुंजी है, बिना सक्रियता के कुछ नहीं हो सकता। हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें तो क्या मिलेगा? दुनिया उसी को प्यार करती है, उसी को मान देती है जो मेहनत करता है और मेहनत की कमाई करके खाता है। आदमी का काम प्यारा होता है, चाम नहीं। हिमालय की चोटी पर चढ़ने के अवसर कम ही आते हैं, लेकिन हाथ के काम को कुशलता से करने का मौका तो हर पल सामने रहता है। कुछ लोग जीवन की सफलता पैसे से आंकते हैं। जिसने अधिक कमाई कर ली उसके लिए माना जाता है कि वो जिंदगी में सफल रहा है, पर धन सफलता की असली कसौटी नहीं है। धन साधन है, जीवन का साध्य नहीं हो सकता। यदि पैसा ही सब कुछ होता तो बुद्ध, महावीर, गांधी जी आदि महापुरुष क्यों गरीबी का जीवन अपनाते? आदमी को निराशा तभी होती है जब वो आशा रखता है। जो काम वो करता है उसके फल में उसकी आसक्ति रहती है। गीता में कहा गया है, काम करो, फल की इच्छा मत रखो। मेहनत कभी अकारथ नहीं जाती,

0: सच बात यह है, निष्क्रिय जीवन से बढ़कर दूसरा अभिशाप नहीं है। जो लोग क्रियाशील रहते हैं वो काम करने का संतोष पाते हैं और अपनी प्रसन्नता से धरती का बोझ हल्का करते रहते हैं। इसके विपरीत जो काम से बचते हैं वो स्वयं तो परेशान होते ही हैं, समाज में भी बड़ा दूषित वायुमंडल पैदा कर देते हैं। कर्ममय जीवन दूसरों पर अच्छा असर डालता है, आलसी दूसरों को आलसी बनाता है। किसी ने कहा है, उठो दिन बीता जा रहा है और तुम सपने लेते हुए पड़े हो। दूसरे लोगों ने अपने कवच धारण कर लिए हैं और रणभूमि में चले गए हैं। सेना की पंक्ति में एक खाली जगह है जो तुम्हारी राह देख रही है। हर मनुष्य को अपना कार्य करना होता है। हर आदमी के लिए ऊंचाई पर स्थान है, लेकिन वहां पहुंचता वही है जिसके भीतर आत्मविश्वास होता है। हाथ पैरों में ताकत होती है, निगाह में ऊंचाई होती है और हृदय में सबके लिए प्रेम और सहानुभूति का सागर उमड़ता रहता है। ऐसा व्यक्ति जानता है कि उसके ऊपर सदा निर्मल आकाश है। अगर कभी बादल घिर भी आते हैं तो वे अधिक समय तक नहीं टिकते। अपने लक्ष्य पर आंख रखकर मजबूती से बढ़ते चलना इंसान का सबसे बड़ा कर्तव्य है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। काव्यधारा के अंतर्गत आइए सुनते हैं श्री अनिल शर्मा अनिल से उनका काव्य पाठ। सावन के इस पवित्र माह में भोले महादेव को याद करते हुए आज का काव्य पाठ आप सबकी सेवा में प्रस्तुत

देवान है। इसी के साथ आइए भगवान राम को समर्पित कुछ घनाक्षरी। के श्री हरि के अवतार श्याम सौम्य उदार जग के पालनहार हैं हमारे राम जी। श्री हरि के अवतार शांत सौम्य

तनिक आतताई शत्रुओं के संहारक राम जी राक्षसों से रक्षा कर यज्ञ निर्विघ्न हुए ऋषि संस्कृति वाले प्रचारक राम जी राम को ले चले साथ बन सब के ही नाथ सब को ले चले साथ बन सब के ही नाथ और मन में उमंग भरी संचारक राम जी पतितों से दलितों से वनवासी बंधुओं से मित्रता

देश की, खुद संवरिए और प्यारे देश को संवारिए, खुद संवरिए और प्यारे देश को संवारिए। आइए एक आह्वान गीत पौधारोपण के लिए। पौध रोप कर आओ करें हम अपनी धरती।

0: काव्य धारा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे श्री अनिल शर्मा अनिल से उनका काव्य पाठ। आकाशवाणी का यह नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:55 हुए हैं। कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य एकदिवसीय आंध्र प्रदेश कर्नाटक यात्रायां भविष्यति। आंध्रप्रदेशे प्रधानमंत्री भोगापुरम इत्यत्र अल्लूरी सीताराम राजु अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थानकस्य उद्घाटनं करिष्यति। सार्वजनिक निज सहभागिता प्रारूपस्यान्तर्गतं 675,000,000,000,000 रूप्यकाधिकेन व्ययेन निर्मितं तदन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानकं प्रतिवर्षं 60,00,000 यात्रिणां सेवा प्रदातुं विनिर्मितमस्ति। प्रधानमंत्री 80,800,000,000,000 रूप्यकाधिक व्ययुताः राष्ट्रिय राजमार्ग परियोजनाः राष्ट्राय समर्पयिष्यति। तासां शिलान्यासम् अपि करिष्यति। आंध्रप्रदेश यात्रानन्तरं प्रधानमंत्री कर्नाटकस्य मैसूरनगरं गमिष्यति, यत्र स्वामी विवेकानन्द सांस्कृतिक युवक केन्द्रस्य विवेक स्मारकस्य उद्घाटनं करिष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् अपशब्द प्रयोगः द्वेष भावना च कस्यापि समस्यायाः समाधानं न भवतः। असौ मार्गभ्रष्टेभ्यः युवभ्यः करुणाभावम् आवहन् अवदत् यत् ते दण्डनीयाः न अपितु राष्ट्रनिर्माणस्य राष्ट्रहितस्य च भावनया सम्यक् मार्गे प्रेरणीयाः। सामाजिक संचारपटलेषु प्रसारिते एकस्मिन् दृश्य श्रव्य सन्देशे प्रधानमंत्री राष्ट्रिय राजधान्याः जन्तर्मन्तरस्थले सद्यः एव जातायाः तस्याः घटनायाः उल्लेखमकरोत्, यस्मिन् तस्मै तस्य दिवंगतमात्रे च अपशब्दाः प्रयुक्ताः आसन्। सः अवदत् यत् एषा घटना देश विदेशेषु बहुभिः जनैः दृष्टा। एतादृशस्य आचरणस्य विषये समाजे विद्यमानः आक्रोशः निराशा च स्वाभाविकौ स्तः। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् एतादृशान् युवकान् न्यायालयीय प्रक्रियासु न निवेशयेत्, सामाजिक तिरस्कारस्य भाजनं वा न कुर्यात्, अपितु समाजेन तान् सस्नेहं स्वीकृत्य सम्यक् मार्गः प्रदर्शनीयः।
2: बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
1: केन्द्रीय मंत्रिमण्डलेन प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना अनुमोदिता। एषा योजना ऊर्जा संचयन प्रणालीभिः युक्तानां फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक इति परियोजनानां विकासाय प्रवर्तिता अस्ति। केन्द्रीय मंत्रिमण्डलस्य उपवेशनानन्तरं नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं 5,000 मेगावाट मितानां क्षमतायुतानां फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक इति परियोजनानां विकासः भविष्यति। ताभिः सह स्थापितानां ऊर्जा संचयन प्रणालीनां न्यूनतम संचयन क्षमता द्विहोरात्मिका भविष्यति। केन्द्रीय मंत्रिमण्डलेन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनायाः अस्मात् वर्षात् 31,000,000,000 प्रवर्तनस्य निरन्तरतायै अपि अनुमोदनं प्रदत्तम्। भारतम् अवदत् यत् पाकिस्तानाधिकृतस्य जम्मू कश्मीर प्रदेशस्य तथा कथितानि निर्वाचनानि पाकिस्तान प्रशासनस्य अपमानस्पदम् एव सन्ति। नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवदत् यत् पाकिस्तानस्य प्रशासनं पीओजेके इत्यत्र शान्तिप्रियाणां नागरिकाणां विरुद्धं निष्ठुरं बलप्रयोगं निरन्तरं करोति। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर गत सायं ईरान देशस्य विदेश मंत्रिणा अब्बास अराघची इत्यनेन सह दूरभाषया वार्तालापम् अकरोत्। अस्मिन् वार्तालापे सः अस्मिन् क्षेत्रे प्रवर्तमानायाः शत्रुतायाः विषये भारतस्य गभीरां चिन्तां प्रकटितवान्। राष्ट्रमंडल क्रीडासु भारतस्य पदक संख्या 23 यावत् वर्धिता, यस्मिन् 5 स्वर्ण पदकानि, 12 रजत पदकानि, 6 कांस्य पदकानि च सन्ति इति वार्ताः।
3: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग शो नमस्कार लखनऊ। श्रोताओं, प्रातः के 7 बजे है और समय है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा का।
4: नीना सोनकर और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम स्वास्थ्य चर्चा।

0: करीब 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न
1: खास बात तो ये है कि ये गुण उस विशेष शिशु की जरूरतों के तो स्तनपान केवल बच्चे होता है।

बल्कि माँ के लिए भी कई स्तरों पर लाभकारी है। प्रसव के बाद स्तनपान कराने से गर्भाशय तेजी से अपने सामान्य आकार में लौटता है, शरीर में अतिरिक्त फैट

नई दिल्ली में कल संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीओजेके में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में 40 से अधिक लोगों की मौत हुई है और कई अन्य घायल हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकी से फोन पर बात कर पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। डॉ जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने का आग्रह किया। राष्ट्रमंडल

0: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर। सवेरे के 7:05 हुए हैं। स्वास्थ्य चर्चा में आइए सुनते हैं जानकारी रीढ़ की हड्डी के रोग और बचाव विषय पर।
1: रीढ़ की जो हड्डी है वो टेढ़ी हो जाती है। टेढ़ी होने के कई कारण होते हैं, हम आपको एक एक चीज बताएं। उससे सबसे पहले कारण में होता है कि मरीज की उम्र क्या है। जैसे बच्चा है, पैदा हुआ है, और पैदा होने के बाद जब उसको बैठने लगा या खड़ा होने लगा और तब आपने देखा कि वो हड्डी टेढ़ी है, तो इसको हम पैदाइशी कहते हैं, और उसको अंग्रेजी में कंजनाइटल स्कोलियोसिस कहते हैं, जो कि पैदाइशी टेढ़े बच्चे होते हैं। जैसे ही उम्र बढ़ती जाती है, फिर आपने देखा बच्चा 3 साल का हो गया, 4 साल का होगा, चलने लगा, और माँ बाप ने देखा कि भाई कमर टेढ़ी है, तो इसकी जो अपने यहाँ जो और एक समस्या है वो है पोलियो की या सेरिब्रल पैलेसी की, जिसमें क्या होता है, इसमें पैरालिसिस हो जाती है, और इस पैरालिसिस की वजह से कुछ मास इसका टेढ़ा हो जाता है। इससे भी जैसे ही उम्र बढ़ती रहती है, फिर बच्चे होते हैं खास तौर से लड़कियों के लिए, जैसे आपने देखा 8 साल 10 साल 12 साल की जब लड़की बड़ी होती है या लड़के बड़े होते हैं, तो इनमें भी एक होती है जिसको स्कोलियोसिस कहते हैं। ये एक पैदाइशी नहीं होती, इसको हम डेवलपमेंटल कहते हैं, और इसकी आपको वजह सबसे ज्यादा जिससे कि बहुत ज्यादा माँ बाप कंसर्न होते हैं कि इसका कारण क्या है, इनका कोई कारण नहीं होता है। जैसे कि डेवलपमेंटल डिफेक्ट होता है, किसी की नाक टेढ़ी है, किसी की एक उंगली टेढ़ी है, इनमें भी मसल्स का ही इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से ये भी टेढ़ी हो जाती है। तो ये तो बच्चों तक या देखा ना आपने 15 से 20 साल या इस उम्र में हो जाता है, लेकिन जैसे ही उम्र बढ़ती है या इनमें, अपने देश में जो सबसे बड़ी समस्या है टीबी एक बहुत बड़ी समस्या है, और टीबी एक ऐसी चीज है कि टीबी भी कमर को कुबड़ या तो सीधे तरफ से या साइड की तरफ से वो कर देती है, और जो कि एक टीबी है वो एक इन्फेक्शन है, और ये एकदम नहीं करता है। यदि इस इन्फेक्शन की जांच हो जाए और इसका इलाज हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन हाँ कुछ जगहों पर कुछ लोगों का इलाज भी नहीं हो पाता, और कुछ लोग इलाज करा नहीं पाते हैं साधनों की वजह से या जगह की वजह से, तो ये भी हड्डियां हैं कमर की हड्डी, इनमें भी टेढ़ी हो जाती है। इससे भी ज्यादा यदि उम्र बढ़ती है या कभी किसी को चोट लग गई तो उसकी वजह से भी कमर में कुबड़पन आ जाता है, वो सीधे भी हो जाता है और टेढ़ेपन भी हो जाता है, तो वो भी एक कारण बन जाते हैं। और वैसे भी कहा जाता है जब माँ के पेट में बच्चा

0: को, तो जो एक्सरे या और दवाइयां हैं जो कि बहुत जरूरी दवाइयां होती हैं, जिसमें ताकत की दवाइयां, कैल्शियम की दवाइयां, वो तो लेनी चाहिए, लेकिन दूसरी दवाइयां जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक नहीं लेना चाहिए। और मैं आपको ये भी बताता हूं कि इनमें यदि इलाज अच्छे हो जाते हैं तो लोग या बच्चे जो हैं जिंदगी भर के लिए ठीक भी हो जाते हैं। कुबड़पन के लिए हल्का सा कुबड़ या कमर का टेढ़ा होना, एक तो स्लिप डिस्क की वजह से भी हो जाता है उसमें, लेकिन इतना टेढ़ापन नहीं होता कि दूसरे आदमी को कपड़ों के ऊपर दिख जाए, बहुत ज्यादा होती तब होती, एक तो ये वजह होती है जिसको स्लिप डिस्क कहते हैं। और जब स्लिप डिस्क में इतना टेढ़ापन आ जाए तो मेरी तो आपको यही सलाह है कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, और अधिकांशतः इसमें ऑपरेशन की जरूरत होती है। और स्लिप डिस्क के ऑपरेशन बहुत कामयाब ऑपरेशन है। लोगों का ये डर है कि कमर का ऑपरेशन कराएंगे तो जिंदगी भर के लिए मोहताज हो जाएंगे, या पैरालिसिस हो जाएगी, खटिया पे पड़ जाएंगे, या लोगों के पराधीन हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोगों की हमारी अपनी सोच से एक भ्रम है। अच्छे इलाज के बाद इसमें तो यहां तक है कि लोगों को यह भी नहीं पता चलता कि इस व्यक्ति का कभी किसी ने ऑपरेशन भी किया था, जब तक कि आप उसके कपड़े से ना देखें या कपड़ा ना हटाएं कि इसमें चीरा लगा हुआ है, तो इस तरह की कोई समस्या नहीं होती है। कुछ लोगों को इसकी वजह से पैरालिसिस भी हो जाती है, जैसे पांव उठता नहीं है या अंगूठा नहीं उठता, सुन्नपन रहता, भारीपन रहता, झंझनाहट रहती है। ये सब चीजें जैसे ही ऑपरेशन हो जाता सब चीजें गायब हो जाती हैं, मान्य हो जाता, मरीज चलने लगता। सिर्फ इसमें एक ही समस्या ये रहती है कि ये आपको बीमारी कितने दिनों से, जितने दिनों से स्लिप डिस्क की शिकायत रहेगी उतना ही टाइम आपको उसको दोबारा सामान्य होने में उतना से ज्यादा टाइम लगता है, बस इसमें तो ये है। दूसरा जो कुबड़पन होता है, जैसे कि कभी जो हमने पहले भी बताया, या तो इन्फेक्शन होता, खास तौर से टीबी का इन्फेक्शन जो कि बहुत खतरनाक है, लेकिन आज के टाइम में इसका भी इलाज हो जाता है और बहुत अच्छे इलाज होते हैं। ऐसा नहीं है कि टाइम से आप इलाज करा लें तो बीमारी भी कंट्रोल हो जाती है और कुबड़पन भी खत्म हो जाता।
1: स्वास्थ्य चर्चा में अभी आप सुन रहे थे रीढ़ की हड्डी के रोग और बचाव विषय पर जानकारी। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं खेती की बातें।
2: किसान भाइयों नमस्कार, खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज खेती की बातें कार्यक्रम में विषय है इस पखवाड़े किसान भाई क्या करें। तो भैया देखिए, अगस्त माह का पहला पखवाड़ा आज से शुरू हो रहा है और ये महीना बरसात का माना जाता है और सबसे ज्यादा वर्षा इसी महीने में होती है। और भाई वैसे भी हिंदी मास की बात करें तो श्रावण का महीना खूब बारिश वाला होता है। तो भैया देखिए, इन दिनों हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इस पखवाड़े सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जियों वाली फसल की, जैसे बैंगन है, भिंडी है, मिर्च है, टमाटर है। तो इन फसलों में हमें रोग और कीटों का ध्यान रखना है, क्योंकि भैया बरसात के मौसम में कीट और रोग बहुत ज्यादा आते हैं। यदि हम कीटों की बात करें तो कुछ सोंडी और तितली हमारे जो सब्जियां होती हैं उन्हें नुकसान पहुंचाती हैं। सब्जियों का फल जो है सूंडियां वो खा जाती हैं और तितलियां हमारी सब्जियों की जो पत्तियां हैं उनको नुकसान पहुंचाती हैं। तो भाई हमारे किसान भाई इनकी सुरक्षा के लिए अपने फसल पर, चाहे वो भिंडी हो, बैंगन हो, मिर्च हो या टमाटर हो, तो भैया एक हल्का कीटनाशी जैसे मिथाइल पैराथियन होता है तो उसका बुरकाव प्रातःकाल कर दें जब ओस होती है पौधों पर। अब भैया इसके बाद बात आती है किसी कवक जनित रोग की, तो इसमें पौधे गलने लगते हैं और पौधे तभी गलते हैं जब हमारे खेतों में पानी रुक जाता है, क्योंकि सब्जियों की फसल पानी बहुत कम मांगती है। तो जल निकास का उचित प्रबंध रखें और अपनी फसल पर सुरक्षात्मक रूप से एक कवकनाशी मैंकोजेब और कार्बनडाजिन नाम की दवाई का घोल बनाकर छिड़क दें। अब इसके बाद हम बात करते हैं भैया दलहनी फसलों की। तो दलहनी फसलों में हमारे किसान भाई इस समय चारे की फसल काट कर भी कुछ किसान भाई उड़द बोते हैं, मूंग बोते हैं और कुछ किसान भाई गेहूं के बाद ही इसकी बुआई करते हैं खरीफ के शुरू के सीजन में। तो भैया इस समय ज्यादा वर्षा होती है तो ज्यादा वर्षा, आप जानते हैं कि दलहनी फसलों में भी ज्यादा वर्षा की आवश्यकता नहीं होती और दलहनी फसलों से भी जल निकास पूरी तरह हमें प्रबंध रखना चाहिए। तो जल निकास रखें और हमारी पत्तियों पर या हमारी फसल पर कोई नुकसान दिखाई दे, कोई कीट दिखाई दे या बीमारी दिखाई दे तो भैया इसी प्रकार इनकी भी सुरक्षा हम कर सकते हैं हल्के कीटनाशी और जो कवकनाशी हैं उसी प्रकार। कवकनाशी के लिए आप कार्पर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग कर सकते हैं और इसकी आधा किलोग्राम मात्रा लगभग लगभग 5 बीघा यानी कि 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होती है। होती है। अब यदि भैया हमारी फसल पे कोई कीट प्रकोप कर रहा है, पत्तियां कुतर रहा है, तो उसके लिए भी आप जो है अपने खेतों में हल्की सी क्लोरोपाइरीफास का छिड़काव कर सकते हैं, और प्रातः काल ये छिड़काव किया जाए, बुरकाव किया जाए तो अच्छा होता है, क्योंकि ओस में पत्तियों पर अच्छी तरह दवाई चिपक जाती है। अब इसके बाद हम पशुओं की बात करें तो भैया पशुओं का भी हम विशेष ध्यान रखते हैं बरसात के मौसम में। बरसात के मौसम में वैसे तो हमारे किसान भाई होशियार हैं, तो भाई गलघोटू का और जो लंगड़िया बुखार है उसका टीका लगाया जाता है, और खुरपका मुंहपका का टीका भी लगाया जाता है, और भैया बरसात के मौसम में गोबर और मूत्र की साफ सफाई की व्यवस्था भी हमारे किसान भाई अच्छी तरह रखें ताकि हमारे पशु बीमार न हो, और भैया पशुओं को अच्छा पौष्टिक चारा खिलाएं। और दूसरी बात यह है कि भैया जो हमारे दुधारू पशु हैं उनके बच्चों का भी ध्यान रखें, और जो नवजात बच्चे होते हैं उनको पर्याप्त मात्रा में दूध पिलाएं। इसके बाद बात आती है गन्ने की, तो गन्ने में इस समय मुख्य रूप से हमारे किसान भाई बंधाई कर सकते हैं, और जो पछेती गन्ना होता है जैसे हम ग्रीष्मकालीन गन्ने की बुआई करते हैं गेहूं काटने के बाद, तो उस फसल पर इस समय हम मिट्टी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद बात आती है भैया रोग की, तो इस समय यदि रोग की बात की जाए गन्ना में तो भैया पोका बोइंग रोग आता है और इसके अलावा कोई रोग नहीं आता। लाल सड़न रोग भी आता है, लेकिन भैया लाल सड़न रोग ज्यादातर हमारे 0238 गन्ने की प्रजाति में आता था। तो भैया हम बात कर रहे थे पोका बोइंग रोग की, तो पोका बोइंग रोग पर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की आधा किलोग्राम मात्रा को एक एकड़ के हिसाब से आप जो है 300 लीटर पानी में घोलकर आराम से छिड़काव कर दीजिए जब धूप खिली हो, तो भैया बहुत ही अच्छा परिणाम आता है। कीट की बात करें तो मिली बग और चोटी बेदक जिसको कहते हैं टॉप बोरर, तो ये कीट इस समय गन्ने की फसल में लग जाते हैं, और इनकी रोकथाम के लिए हमारे किसान भाई क्लोरेंट्रा नीलीपोरोल और उसके साथ में इमिडाक्लोप्रिड, यदि ये दवाइयां मिलाकर, तो इमिडाक्लोप्रिड हमारे किसान भाई 250 ml ले सकते हैं, और जो क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल है वो हमारे किसान 100 ml लेकर, और दोनों दवाइयां एक जगह मिलाकर जो है एक एकड़ में आप छिड़काव कर दें।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। आज रात 8 बजे इस सप्ताह संसद में, रात 9:30 पर राष्ट्रीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती, और रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये सभी कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। प्रातः 9:15 पर कार्यक्रम जिले की हलचल, जिसमें हम आपको सुनवाएंगे सिद्धार्थनगर और सोनभद्र जिलों की हलचल। इसके अलावा संध्या 6:50 पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का पहला भाग, ये दोनों कार्यक्रम लखनऊ केंद्र से रिले किए जाएंगे। सूचना और मनोरंजन पर आधारित कार्यक्रम सूरज के साथ साथ प्रसारित किया जाएगा 7:31 पर। प्रातः 9:25 पर धरती गाती है कार्यक्रम में सुनिएगा रोहिलखंडी लोकगीत। महिला जगत में दिन में 1:15 पर आधी आबादी से क्रम में डॉक्टर तरुभी अग्रवाल से बिना कोट नाला की बातचीत का विषय होगा माता और शिशु दोनों के लिए वरदान स्तनपान। दोपहर 1:45 पर लोकधारा में सुनिएगा हरियाणवी लोकगीत। मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में संध्या 5 बजे रोजगार सृजन हेतु भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में श्रम और रोजगार मंत्रालय की राष्ट्रीय कैरियर सेवा योजना NCS और सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योग मंत्रालय की योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP पर चर्चा होगी। शाम 5:15 पर युवाणी के कुछ खास आयोजक्रम में राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस पर चर्चा होगी। क्रम होगा गीत आपके नाम। साथ ही हम आपको सुनवाएंगे सुश्री नगमा परवीन की वार्ता कृत्रिम बुद्धिमत्ता भविष्य अथवा जोखिम। कृषि जगत में सुनिएगा लोकगीतों और रागनियों का फरमाइशी कार्यक्रम हेलो लोकमंजरी संध्या 6:05 पर। शाम 7:32 पर सुगम संगीत में आप सुनेंगे रागनी शर्मा के स्वर में भजन। फिल्मी गीत हमारे केंद्र से सुनवाए जाएंगे सवेरे 8:45 पर गोल्डन हिट्स कार्यक्रम में। सुबह 10 बजे गीत तुम्हारे कार्यक्रम के तहत प्रातः 11 बजे चित्रपट संगीत कार्यक्रम में, दोपहर 12:05 पर एसएमएस आधारित कार्यक्रम जिंदगी लाइव के अंतर्गत,
3: ये प्रादेशिक,
1: दिन में 2:30 पर एक ही गीत कार्यक्रम में सुनिएगा शकील बदायूनी के लिखे गीत, रात 8:15 पर गीत संध्या कार्यक्रम में, और रात 8:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम के अंतर्गत फिल्मी गीत सुनवाए जाएंगे। ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों के संबंध में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

0: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
0: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
0: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। वर्ष 2031 तक जारी रहेगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसानों में उत्साह, केंद्र सरकार के प्रति जताया आभार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया योजना के विस्तार का प्रस्ताव भी किया पारित। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होगा उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर, ओमान, ऑस्ट्रिया, ब्राजील सहित अन्य देशों की सहभागिता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से किया हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़ कर सहभागिता का आह्वान। 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य। और श्रावण मास में मंदिरों और शिवालयों में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़, कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए किए गए व्यापक इंतजाम। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी गई है। इस अवधि के दौरान इस योजना के लिए कुल 3,15,000 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन स्वीकृत किया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के माध्यम से डीबीटी द्वारा पात्र किसान परिवारों को समय पर और पारदर्शी आय सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे किसानों को कृषि निवेश बढ़ाने और अपनी आजीविका को मजबूत करने में मदद मिल रही है।
3: पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है। इस प्रोग्राम में देश के किसानों को क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए इनकम सपोर्ट दिया जाता है। इसमें पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्पर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है।
2: प्रदेश के किसानों ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। जौनपुर के किसान श्याम दत्त ने कहा कि पीएम किसान योजना के तहत दी गई सहायता से किसानों को कृषि आवश्यकताओं से जुड़ी चीजें खरीदने में बहुत मदद मिलती है।
4: ये जो हमें पीएम किसान सम्मान निधि मिलती है, मैं अपनी किसान से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता हूँ। मैं इसी पैसे से बीज खरीद लेता हूँ, इसी पैसे से खाद खरीद लेता हूँ। मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देता हूँ कि जो उन्होंने किसान सम्मान निधि को आगे तक बढ़ाया है।
2: इसके अलावा मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 तक की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों की बढ़ी हुई सहायता को भी मंजूरी दे दी है। स्वीकृत बजट पिछली खेलो इंडिया योजना की तुलना में लगभग 8 गुना है। केंद्रीय कैबिनेट ने 5,070 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। श्री मोदी ने कहा कि सरकार किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया योजना का विस्तार और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि से देशभर के युवा एथलीटों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और अपनी प्रतिभा को निखारने के अधिक अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल आगामी 25 से 29 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में होने वाले उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इसे उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्षमता, नवाचार उत्पादों और निर्यात सामर्थ्य को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर बताया। एक रिपोर्ट।
5: ट्रेड शो के चौथे संस्करण में 2400 से अधिक प्रदर्शकों, 1.5 लाख से अधिक पंजीकृत B2B खरीदारों, करीब 4.5 लाख से अधिक B2C आगंतुकों और 85 देशों से 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों की सहभागिता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही 4000 से अधिक MOU, 3200 करोड़ रुपए से अधिक प्रस्तावित MOU मूल्य और 13500 करोड़ रुपए से अधिक बिजनेस इंक्वायरी होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने सिंगापुर, ओमान, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया और रूस सहित अन्य देशों के साथ भी सक्रिय संवाद स्थापित कर उनकी अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से तन्वीर फातिमा।
2: सरकार ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी योजना के अंतर्गत किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का कोई बकाया नहीं है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने VBG रामजी योजना को अधिसूचित कर लागू करना शुरू कर दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में हर घर तिरंगा अभियान, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस और स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर सहभागिता का आह्वान करते हुए इस वर्ष 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया। एक रिपोर्ट।
6: मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण, उपलब्धता एवं वितरण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा स्वयं सहायता समूहों, खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थाओं, MSME इकाइयों एवं स्थानीय उत्पादन केंद्रों को हर घर तिरंगा अभियान से जोड़ने के निर्देश दिए। श्री योगी ने कहा कि राशन की दुकानों, ग्राम पंचायत भवनों, जनसेवा केंद्रों, तहसीलों, विकासखंड कार्यालयों, विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, डाकघरों, पेट्रोल पंपों एवं अन्य निर्धारित केंद्रों के माध्यम से आम जन को राष्ट्रीय ध्वज सहज उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि आगामी 14 एवं 15 अगस्त को प्रदेश के सभी सिनेमा घरों में राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान का अनिवार्य प्रसारण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस तथा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के सभी कार्यक्रम पूरे सम्मान, गरिमा एवं राष्ट्रभक्ति के भाव के साथ आयोजित किए जाएं। समाचार कक्ष से अरुण।
2: प्रदेश भर के शिव मंदिरों और शिवालयों में पवित्र श्रावण मास पर भक्तों और कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही श्रद्धालु वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम में गंगा जल लेकर बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कांवड़ यात्रा को लेकर रूट डायवर्शन लागू किए गए हैं। अमरोहा में पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर बताया है कि श्रावण मास के प्रत्येक रविवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 5 बजे तक नेशनल हाईवे 9 पर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। बदायूं में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर प्रत्येक शनिवार और सोमवार को कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल बंद रहेंगे। अंबेडकर नगर में कांवड़ यात्रा को सकुशल ढंग से संपन्न कराने के लिए 9 जोनल, 78 सेक्टर और 9 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने बताया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर लगातार निगरानी के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं।
7: कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत जो ये अयोध्या का रूट है टांडा होके, उसपे भी विशेष रूप से इंतजाम किए गए हैं। सारे सड़कों को गंधा मुक्त किया गया है। जो हमारे मेन घाट है महादेवा घाट, उसकी लगातार सफाई के लिए 3 शिफ्टों में सफाई कर्मी लगाए गए हैं। प्रकाश की व्यवस्था की गई है, 3 लेयर्स ऑफ बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि किसी की भी जल लेने के समय कोई किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। और जिला प्रशासन समुचित रूप से सतर्क है और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई गई है।
2: गोरखपुर में भी व्यापक यातायात डायवर्शन व्यवस्था लागू की गई है जो सावन के प्रत्येक सोमवार को प्रभावी रहेगी। मौसम विभाग ने आज से आगामी 5 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। वहीं पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश तथा हरिद्वार, बिजनौर और नरौरा बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं के कछला गंगा नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। इसके चलते जिले के 36 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वर्ष 2031 तक जारी रहेगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसानों में उत्साह, केंद्र सरकार के प्रति जताया आभार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया योजना के विस्तार का प्रस्ताव भी किया पारित। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होगा उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर, ओमान, ऑस्ट्रिया, ब्राजील सहित अन्य देशों की सहभागिता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से किया हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़ कर सहभागिता का आह्वान। 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य। और श्रावण मास में मंदिरों और शिवालयों में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़, कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए किए गए व्यापक इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ, यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
8: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
9: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में तिथि विशेष पर जानकारी होगी। असहयोग आंदोलन, विश्व फिनटेक दिवस, विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस और वर्ल्ड वाइड वेब डे पर। कार्यक्रम में शामिल होंगी अखबारों की सुर्खियां और फिल्मी गीतों का आनंद तो आप ले ही पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं असहयोग आंदोलन से। श्रोताओं, पहले बात करते हैं भारत की आज़ादी के संघर्ष के दौरान हुए बहुत ही महत्वपूर्ण असहयोग आंदोलन की शुरुआत के बारे में। गांधी जी का स्पष्ट मत था कि अगर भारतवासियों ने अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दिया तो निश्चित ही ब्रिटिश साम्राज्य का पतन हो जाएगा और हमें स्वराज मिल जाएगा। सन 1919 में अंग्रेज सरकार ने रोलट एक्ट पारित किया, जिसके तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसे मौलिक अधिकारों को खत्म कर पुलिस की ताकत को बढ़ा दिया गया। इस एक्ट में 2 साल तक बिना किसी ट्रायल के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने का प्रावधान किया गया था। गांधी जी ने 1 अगस्त सन 1920 को स्वराज की मांग के साथ असहयोग आंदोलन आरंभ किया। देश भर में इसका व्यापक असर हुआ। इस आंदोलन में शहर से लेकर गांव देहात तक लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान छात्रों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में तथा वकीलों ने अदालतों में जाने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, कई कस्बों और शहरों में कामगार भी काम बंद कर हड़ताल पर चले गए। एक रिपोर्ट के अनुसार सन 1921 में 396 हड़तालें हुईं, जिसमें तकरीबन 6 लाख श्रमिक शामिल हुए थे। सन 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के बाद असहयोग आंदोलन ने अंग्रेजी राज की बुनियाद हिला दी थी। इस आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा पुलिस थाने में आग लगा दी। इस घटना के दौरान 23 पुलिस वालों और 3 नागरिकों की मौत हो गई थी। इससे पहले यह पता चलने पर कि चौरा चौरी पुलिस स्टेशन के थानेदार ने मुंडेरा बाजार में कुछ कार्यकर्ताओं को मारा है, गुस्साई भीड़ पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हुई थी। इस हिंसा के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। हिंसा के बाद महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लिया जाना अहिंसा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही इस निर्णय में उनका ये दृढ़ विश्वास भी परिलक्षित होता है, जिसमें उनका साफ मानना था कि लक्ष्य के साथ साथ उसे प्राप्त करने के साधन भी पवित्र होने चाहिए। हालांकि महात्मा गांधी के इस फैसले से क्रांतिकारियों का एक दल बेहद नाराज हो गया था। 16 फरवरी 1922 को गांधी जी ने अपने लेख चौरी चौरा का अपराध में लिखा था कि अगर यह आंदोलन वापस नहीं लिया जाता तो दूसरी जगहों पर भी ऐसी ही घटनाएं होतीं।

0: साथियों, आधुनिक युग में वैज्ञानिक प्रगति ने मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर गहरा प्रभाव डाला है। ये दौर डिजिटलाइजेशन का दौर है। मौजूदा बैंकिंग भी अब डिजिटल हो गई है। लगभग सभी बैंक, चाहे वो निजी हों या सरकारी, आपस में इंटरकनेक्ट हो गए हैं। बैंकों के इस डिजिटलाइजेशन से न केवल वित्तीय सेवाओं का विस्तार हुआ है, बल्कि देश विदेश में एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजना सरल, कम खर्चीला और त्वरित पहुंच वाला हो गया है। पहले जहां चेक अथवा ड्राफ्ट के माध्यम से ही पैसा एक से दूसरे बैंक खातों में अंतरित किया जाता था और उसमें कई दिनों का समय लगता था, अब IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस, जिसे हिंदी में तत्काल भुगतान सेवा कहा जाता है, के जरिए यही काम सेकंडों में हो जाता है। और हाँ, ये सेवा साल के 365 दिन 24 घंटे काम करती है। इस सेवा को बैंक शाखाओं के अलावा मोबाइल बैंकिंग ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या ATM के जरिए भी उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जिसे हिंदी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस कहते हैं, ये NPCI द्वारा बनाई गई एक डिजिटल भुगतान प्रणाली है, जिसकी मदद से बिना बैंक खाता नंबर या IFSC कोड साझा किए तुरंत पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। आधार कार्ड की वर्चुअल ID और QR कोड के माध्यम से भी बैंकिंग बेहद आसान हो गई है। इस तरह की सभी आधुनिक बैंकिंग सेवाओं का लाभ जन जन तक पहुंचे, इसके लिए हर साल 1 अगस्त को हम मनाते हैं विश्व फिनटेक दिवस। ये दिन वित्तीय सेवाओं को आधुनिक बनाने और डिजिटल भुगतान तथा बैंकिंग तकनीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। ये दिन इतालवी बैंकर और राजनेता कोसिमो डी मेडिसी की पुण्यतिथि की याद में मनाया जाता है। कोसिमो डी मेडिसी को आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का जनक माना जाता है। वित्तीय क्षेत्र में नई तकनीकों और सुधारों को बढ़ावा देना भी इस दिन को मनाए जाने का एक मकसद है। इस अवसर पर दुनिया भर में कई बड़े सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: दोस्तों, फेफड़े मानव शरीर के मुख्य श्वसन अंग हैं, जो हवा से ऑक्सीजन लेकर खून में पहुंचाते हैं और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं।

0: या तंबाकू के धुएं से दूरी, प्रदूषण और धूल मिट्टी से बचाव तथा नियमित शारीरिक श्रम अथवा योग बेहद आवश्यक है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही फेफड़ों को कई तरह की बीमारियों की सौगात दे जाती है, जिनमें अस्थमा, COPD, निमोनिया, TB और फेफड़ों का कैंसर शामिल है। इन बीमारियों में प्रमुख और भयावह रोग कैंसर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में फेफड़ों के कैंसर से हर साल लगभग 18 लाख लोगों की मौत होती है। ये विश्व स्तर पर कैंसर से होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण है। सभी प्रकार के कैंसर से होने वाली मौतों में से लगभग 18.70% मौतें अकेले फेफड़ों के कैंसर के कारण होती हैं। हर साल करीब 25 लाख नए लोग इस बीमारी की चपेट में आते हैं। लगभग 85% मामलों का मुख्य कारण धूम्रपान और तंबाकू का सेवन होता है। एक खास बात यह है कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों में इसके मामले और मौतें लगभग दोगुनी हैं। दोस्तों, ये सब जानकारी देने का मकसद ये है कि आज हम मना रहे हैं विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस। फेफड़ों के कैंसर से संबंधित गंभीर मुद्दों के बारे में दुनिया भर में जागरूकता पैदा करने, लोगों को शिक्षित करने, फेफड़ों के कैंसर अनुसंधान पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और इसके लिए वित्तीय और नैतिक सहायता बढ़ाने के लिए हर साल 1 अगस्त को ये दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों, हम सबको संभलना होगा अपने और अपने परिवार की भलाई की खातिर।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: श्रोताओ, इंटरनेट हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। इंटरनेट पर YouTube, Facebook, Instagram जैसी सोशल साइट्स तो इतनी पॉपुलर हो चुकी हैं कि सीधे आपस में बातचीत करने के बजाय हमारा अधिकांश समय इन्हीं पर व्यतीत होने लगा है। इंटरनेट एक विशाल समुद्र की तरह है, जहां दुनिया भर की सूचनाओं और जानकारियों को समेटा गया है। इन्हीं सूचनाओं और जानकारियों में से हमें जो चाहिए उसको सरलता से प्राप्त करने का माध्यम है WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब। ये उन सभी वेब पेजों और दस्तावेजों का एक संग्रह है जिन्हें इंटरनेट पर देखा जा सकता है। ये आपस में जुड़े हुए वेब पेजों, चित्रों और फाइलों का एक विशाल भंडार है। यही तय करता है कि इंटरनेट पर कौन कौन सी जानकारी उपलब्ध है। सरल शब्दों में कहा जाए तो इंटरनेट कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने वाला एक वैश्विक नेटवर्क है और वर्ल्ड वाइड वेब उस नेटवर्क पर चलने वाली एक सेवा है जो पेजों और फाइलों को ब्राउजर पर दिखाती है। इसका आविष्कार 1 अगस्त 1989 को ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्न्स ली ने किया था। 30 अप्रैल 1993 को यह तकनीक मुक्त कर दी गई थी। तभी से दुनिया के लिए ये मुफ्त उपलब्ध है। इसके लिए किसी को कोई भी फीस नहीं देनी पड़ती। टिम के इसी आविष्कार की याद में दुनिया भर में हर साल 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया जाता है। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब ने एक वैश्विक नेटवर्क बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो लगभग पूरी मानवता को जोड़ता है। आज हम इंटरनेट का उपयोग कई अलग अलग उद्देश्यों के लिए करते हैं, जिनमें सूचना एकत्र करना सबसे लोकप्रिय है। अब हम दूध के पैकेट खरीदने से लेकर फ्लाइट बुकिंग तक हर चीज के लिए इंटरनेट और वेब का उपयोग करते हैं, जिससे जीवन आसान हो गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आज के युवाओं पर गहरा प्रभाव पड़ा है। हालांकि मनोरंजन के अलावा इंटरनेट ने लाखों लोगों को नया ज्ञान और कौशल प्राप्त करने में मदद की है। हमारे जीवन में इस साइट का योगदान अद्भुत है। सभी श्रोताओं को विश्वव्यापी वेब दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इन महत्वपूर्ण जानकारियों के बाद अब जान लेते हैं आज के दिन हो चुकी प्रमुख घटनाओं के बारे में। आज शनिवार 1 अगस्त है, साल 2026 का 2

1913 मुगल बादशाह अकबर के दरबारी कवि उर्फी शिराजी का जन्म ईरान के शिराज शहर में हुआ था। उसकी प्रतिभा ने उसे अभिमानी बना दिया था। अपने समकालीन मशहूर ईरानी कवियों से टक्कर लेने के कारण उसे ईरान छोड़कर भारत आना पड़ा। उर्फी के लिखे कसीदे यानी प्रशस्ति गीत बहुत प्रसिद्ध हैं। उर्फी शिराजी अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहा। 1 अगस्त 1591 को केवल 36 वर्ष की अवस्था में लाहौर में उसका निधन हो गया था। सर स्पेंसर हारकोर्ट बटलर का जन्म 1 अगस्त 1869 को लंदन में हुआ था। वे यूनाइटेड प्रोविंस यानी उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल रहे। सन 1921-22 में इस पद पर रहने के बाद हारकोर्ट बटलर 1923 से 1927 के बीच बर्मा के भी राज्यपाल रहे। नेशनल प्रोविंशियल बैंक के निदेशक रहे हारकोर्ट बटलर का भारत में अनेक शैक्षिक संस्थानों की स्थापना में विशेष योगदान रहा है। भारत रत्न से सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी पुरुषोत्तम दास टंडन का जन्म 1 अगस्त 1882 को इलाहाबाद में हुआ था। राजऋषि नाम से विख्यात टंडन स्वतंत्रता पूर्व एक दशक से भी अधिक समय तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे। संविधान सभा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रहे टंडन। समर्पित राजनेता, कर्मठ पत्रकार, तेजस्वी वक्ता और समाज सुधारक थे। उन्होंने 10 अक्टूबर 1910 को नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी के प्रांगण में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की थी। कमला कौल नेहरू 1 अगस्त 1899 को दिल्ली में जन्मी थी। पंडित नेहरू की पत्नी होने के नाते उन्हें आजादी के आंदोलन में सक्रिय भागीदारी का अवसर मिला। कमला नेहरू ने महात्मा गांधी की ऐतिहासिक दांडी यात्रा में भाग लिया था। 1921 के असहयोग आंदोलन में उन्होंने इलाहाबाद में एक महिला समूह गठित कर विदेशी वस्त्रों तथा शराब की दुकानों का घेराव किया था। भारत की आजादी के लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। दोस्तों, पंजाब के होशियारपुर में 1 अगस्त 1910 को जन्मे मोहम्मद निसार ने भारत के लिए विश्व क्रिकेट में पहली गेंद फेंकी और पारी में 5 विकेट भी लिए। 22 साल की उम्र में उन्होंने टेस्ट डेब्यू और 26 की उम्र में आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला। अपने पहले और आखिरी टेस्ट में 5-5 विकेट और कुल 6 टेस्ट में 26 विकेट लेने वाले निसार का करियर दूसरे विश्व युद्ध और भारत विभाजन के कारण असमय खत्म हो गया। निसार 1947 में पाकिस्तान चले गए थे। अभिनेता और फिल्म निर्देशक भगवान आभाजी पालव, जिन्हें सिनेमा प्रेमी भगवान दादा के नाम से जानते हैं, आज ही के दिन 1913 को बंबई में पैदा हुए थे। भगवान दादा हिंदी सिनेमा के पहले डांसिंग मास्टर थे। उन्होंने ही पहली बार सिर पर बड़े आकार की टोपी रखकर डांस करने की संस्कृति शुरू की। सन 1951 में भगवान दादा ने अलबेला फिल्म बनाई थी, जिसका गीत शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के आज भी खूब पसंद किया जाता है। हिंदी के प्रथम तिलसिमी लेखक कहे जाने वाले देवकीनंदन खत्री का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। बाबू देवकीनंदन ने जब उपन्यास लिखना शुरू किया तब उर्दू का बोलबाला था। ऐसे हालात में उन्होंने चंद्रकांता उपन्यास के रूप में ऐसी रचना प्रस्तुत की जिससे हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ। ये उपन्यास इतना लोकप्रिय हुआ कि लोग तब हिंदी पढ़ना नहीं जानते थे, उन्होंने भी चंद्रकांता पढ़ने के लिए हिंदी सीखी। केवल 52 वर्ष की अवस्था में 1 अगस्त 1913 को आपका निधन हो गया। जानी मानी अभिनेत्री और शायरा महजबी बानो यानी मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1932 को बंबई में हुआ था। खराब आर्थिक स्थिति के कारण मीना को बचपन में ही स्कूल छोड़ना पड़ा। सन 1939 में उन्होंने बाल कलाकार के तौर पर फिल्म लेदर फेस में काम किया। मीना कुमारी अपनी दर्द भरी आवाज और भावनात्मक अदाकारी के लिए बहुत ही मशहूर रही हैं। उनकी साहिब बीबी और गुलाम, पाकीजा, परिणीता, बहू बेगम और मेरे अपने दिल को छू लेने वाली कलात्मक फिल्में हैं। मशहूर शायर अली सरदार जाफरी का जन्म गोंडा जिले के बलरामपुर गांव में हुआ था। जाफरी की शोहरत एक ऐसे शायर के रूप में हुई जिसने उर्दू शायरी में छंद मुक्त कविता की परंपरा आरंभ की। अपनी रचनाओं में जाफरी ने प्रतीकों, बिंबों और मिथकों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। उन्हीं की पंक्तियां हैं, मैं सोता हूं और जागता हूं और जाग कर फिर सो जाता हूं, सदियों का पुराना खेल हूं मैं मर के अमर हो जाता हूं। 1 अगस्त 2000 को अली सरदार जाफरी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। तो दोस्तों, ये थी इतिहास के पन्नों में दर्ज आज की तिथि की प्रमुख घटनाएं, और अब एक नजर डाल लेते हैं।

आज के अखबारों की सुर्खियों पर। जूडो में भारत का गोल्डन डबल, मुक्केबाजों का विजयी पंच, इस सुर्खी के साथ दैनिक जागरण खबर को विस्तार देते हुए लिखता है, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए शुक्रवार का दिन शानदार रहा। भारतीय जूडो खिलाड़ियों ने शानदार इतिहास रचते हुए 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। वहीं मुक्केबाजी में जैस्मिन लंबोरिया, प्रीति पवार, अरुंधति चौधरी, अंकुश पंघाल और जादूमणि सिंह ने अपने अपने भार वर्ग में फाइनल में प्रवेश करते हुए कम से कम रजत पदक पक्के कर लिए हैं। शुक्रवार को लोकसभा में बिना चर्चा के जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी गई। इस विधेयक को फर्जी प्रमाण पत्रों पर रोक के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। इस विधेयक और नए नियमों पर विस्तृत समाचार के साथ दैनिक हिंदुस्तान ने सुर्खी लगाई है, जन्म मृत्यु पंजीकरण बिल पास। दैनिक अमर उजाला ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा सड़कों पर लावारिस जानवरों की वजह से होने वाले हादसों का संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसे मामलों में मुआवजे के लिए एक तंत्र बनाने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी निर्देशित किया है कि पशुओं से लाभ न होने पर जो मालिक उन्हें खुला छोड़ देते हैं उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रातः के 8 बज रहे हैं, कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर, वे वहां कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। भारत ने ईरान से किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी, जूडो में 2 ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीते, पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार दोहरा पोडियम स्थान हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। ये विधेयक बृहस्पतिवार को संसद से पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कठोर दंड का प्रावधान करने और फास्ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। ये अधिनियम विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा करते हुए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करके परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट्रैक अदालत स्थापित करने की आवश्यकता है। इसमें ये भी अनिवार्य है कि प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अपराधों की जांच पूरी की जाए, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
4: बचपन में गलतियां होती है, बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम, उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको ताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
3: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां वे विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूर सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: इस नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री विशाखापत्तनम में 460 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से विकसित की जा रही ASIP सेमीकंडक्टर परियोजना की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी कुर्नूल 4 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के एकीकरण के लिए 4.5 गीगावाट क्षमता वाले ट्रांसमिशन सिस्टम के प्रथम चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसे पावर ग्रिड द्वारा एक विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा लगभग 5,550 करोड़ रुपए के निवेश से कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री लगभग 3,550 करोड़ रुपए की लागत से कार्यान्वित कुर्नूल पवन ऊर्जा क्षेत्र और सौर ऊर्जा क्षेत्र भाग ए और भाग बी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। अनंतपुरम में 2,500 मेगावाट और कुर्नूल में 1,000 मेगावाट के सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए पावर ग्रिड द्वारा 800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्यान्वित ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी 1,880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। विजयवाड़ा से अलू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
3: आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरु पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
6: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फीथिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम के ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
3: पश्चिम बंगाल में आज से जनगणना शुरू हो रही है। ये प्रक्रिया 2 चरणों में डिजिटल माध्यम से संपन्न की जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से अद्यतन जनसांख्यिकीय आंकड़े एकत्र करना है। 2 चरणों वाली ये प्रक्रिया राज्य में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।
7: पहले चरण में नागरिक आज से 15 अगस्त तक आधिकारिक जनगणना पोर्टल sec.census.gov.in पर अपनी जानकारी देकर सेल्फ इन्यूमरेशन करने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस चरण का दूसरा भाग 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान जनगणना अधिकारी मकान सूचीकरण और शुरुआती गिनती के लिए घरों का दौरा करेंगे। आखिरी चरण अगले साल फरवरी में होगा, जब जनगणना करने वाले कर्मचारी वास्तविक जनसंख्या गणना के लिए प्रत्येक घर के हर सदस्य के नाम, उम्र, लिंग, जाति और धर्म के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब 12 करोड़ से ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में तथा कथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीओजेके में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है।
2: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जांच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बात कर पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने कल जूडो में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। भारत ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार डबल पोडियम फिनिश हासिल की। डेकाथलॉन में पहला कांस्य पदक जीता और 10 मुक्केबाजों ने अपनी अपनी स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। एक रिपोर्ट।
3: अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में भारत के लिए पहले राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता ने महिलाओं का 48 किलोग्राम वर्ग का खिताब जीता, जबकि हर्ष ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यामिनी मौर्य ने महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। एथलेटिक्स में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.83 मीटर के साथ रजत पदक जीता, जबकि यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर के थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर डेकाथलॉन में कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। भारत के 10 मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत अब कुल 23 पदक के साथ तालिका में 10वें स्थान पर है, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डेकाथलॉन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर एथलीट तेजस्विन शंकर को बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंध्र कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरल, माहे में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हाई सर्वेक्षण करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है नवीन सेना।
4: जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की माता के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले बच्चों के लिए श्री मोदी का बयान अनेक अखबार की हेडलाइन है। जनसत्ता लिखता है प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम कहा हमें इन गुमराह बच्चों को माफ करना चाहिए। पत्र ने अंदर के पृष्ठ पर शीर्षक से छात्रों के प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों का वक्तव्य दिया है। वर्दी के पीछे एक परिवार होता है। दैनिक भास्कर ने परिजनों की पीड़ा का उल्लेख किया है। भीड़ ने खींचा खून से सनी वर्दी में घर लौटे। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद आखिर हुसैन सहित 5 को उम्र कैद की सजा की खबर अखबारों में सुर्खी है। दैनिक जागरण लिखता है अदालत ने कहा अंकित शर्मा की हत्या इतनी क्रूर और बर्बर कि समाज की अंतर आत्मा को छोड़ देती है। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है अदालत के फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद बंधी। दंगों में धर्म के नाम पर आम लोगों को निशाना बनाया गया, इसके जख्म आज भी हरे हैं। लोकतंत्र में शांति प्रदर्शन का अधिकार तो है, पर इसकी आड़ में उपद्रव फैलाने की छूट किसी सूरत में नहीं दी जा सकती। गांव में आतंकी हमला, मजदूर की मौत, नवभारत टीम के पृष्ठ पर है। अमर उजाला लिखता है कश्मीर में आतंकियों के नाम पूछकर बरसाई गोलियां, प्रवासी की मौत, टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल को जूडो में पदक मिलने की अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। पहली बार जिंदा दिल लेकर दौड़ी वंदे भारत सत्य है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। इसके साथ ही समाचार विभाग का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for compassion and guidance for misguided youth. Says hatred and abuse never solve anything. President gives assent to anti-paper leak bill introducing stricter punishment and setting up of fast-track courts. Prime Minister to launch multiple development projects in Andhra Pradesh and Karnataka today. India raises concerns over ongoing hostilities in West Asia region, urges Iran to avoid attacks on commercial shipping and seafarers. Italy suspends free border travel with Spain over Ceuta migrant crisis. And at Commonwealth Games, India clinched two historic gold medals in judo, secured double podium finish in men's javelin throw, and win a first ever bronze in decathlon. Prime Minister Narendra Modi has said that abuse and hatred never solve anything. He appealed for compassion toward misguided youth who have gone astray, saying they should be guided onto the right path in the spirit of nation building and national interest rather than be punished. In a video message posted on his social media handles, the Prime Minister referred to the recent incident at Jantar Mantar in national capital, where abusive language was used against him and his late mother. He said the episode has been witnessed by people across the country and the world, adding that while the anger and disappointment in the society over such conduct were understandable, childhood is also a phase of learning, making mistakes and correcting them.
6: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको ताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
5: President Draupadi Murmu has given assent to the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. The bill was passed by Parliament on Thursday. The Act aims to curb unfair practices in public examinations by introducing stricter punishments and establishing fast-track courts. It seeks to strengthen transparency, fairness and integrity in the examination system by creating a robust legal framework while protecting the future of students. The Act includes several key provisions, including stringent penalties such as imprisonment of up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees and the confiscation of properties belonging to convicted offenders. Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Andhra Pradesh and Karnataka today. Mr. Modi will first travel to Andhra Pradesh, where he will lay the foundation stone, inaugurate and dedicate to the nation multiple development projects worth nearly 18,000 crore rupees at Bhogapuram in Vizianagaram district. More from our correspondent.
7: The Prime Minister will take a walkthrough of the passenger terminal before inaugurating the Greenfield Allur Sitaramaraju International Airport at Bhogapuram. Built under the public-private partnership mode at a cost of over 5,600 crore rupees, the airport has the capacity to handle 6 million passengers annually. The Prime Minister will also lay the foundation stone for Andhra Pradesh's first semiconductor manufacturing facility under the India Semiconductor Mission at Visakhapatnam. The ASIP project, involving an investment of over 460 crore rupees, will have the capacity to produce about 96 million chips every year. In addition, he will dedicate to the nation and lay the foundation stone for renewable energy transmission projects worth about 9,920 crore rupees and national highway projects worth over 1,880 crore rupees. Allu Murli, Akashwani News, Visakhapatnam.
5: In Karnataka, Mr. Modi will inaugurate Swami Vivekanand Cultural Youth Center, Viveka Samarka, at Mysuru in Karnataka today. Our correspondent has the details.
8: Viveka Smaraka, to be inaugurated by Prime Minister in Mysore today, is dedicated to promoting the teachings and philosophy of Swami Vivekananda. The 75,300 square feet facility houses a 4D experience center, exhibition hall, amphitheater, classrooms, conference halls, library, reading room, and a meditation and yoga hall. Sri Ramakrishna Ashrama in Mysore will offer short-term courses and workshops for youth at the Swami Vivekananda Cultural Youth Center. Sudhindra, Akashwani News, Bengaluru.
5: The Union Cabinet has approved an expanded Khelo India scheme and enhanced assistance to National Sports Federations, ANSFS, with a combined outlay of 36,441 crore rupees for the period 2026-27 to 2030-31. Addressing the media in New Delhi yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the decision reaffirms the government's commitment harnessing the power of sports for youth development and nation building.
9: Complete a comprehensive view liya jayega, stadium ho, infrastructure ho, training ka program ho, nutrition program ho, mentorship ho, un sab ke upar ek bahut carefully crafted program banaya gaya hai. 29,000 crore rupees ki ye scheme hai 5 years ke liye aur ye seedha weave in karegi Olympic, Paralympic aur aage Commonwealth Games ko होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में उन सब के साथ ये वीविन करेगी.
5: West Bengal begins the process of census today, which will be conducted digitally in two phases. The exercise aims to collect updated demographic data through a technology-driven approach, with the two-phase process designed to ensure comprehensive coverage across the state. More from our correspondent.
10: In the first phase, citizens can complete the self-enumeration process online from today until the 15th of August by submitting their details through the official census portal. Citizens can log on to ac.census.gov.in and complete their own details through the self-enumeration system. The second stage of this phase will run from the 16th of August to the 14th of September. During this period, census officials will visit households for house listing and preliminary enumeration. The final phase is scheduled for February next year, when enumerators will collect detailed information on every members of each household, including name, age, gender, caste and religion, for the actual population count. Sandeep Bandashgupta, Akashwani News, Kolkata.
5: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. India has said the so-called elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir POJ case stand as a humiliating rejection of the Pakistani establishment. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the Pakistani establishment continues to unleash ruthless force against peaceful civilians in POJK. He said the crackdown has resulted in the tragic death of over 40 civilians and serious injuries to many. The spokesperson said, facing a violent regime, the people have requested international organizations for an independent investigation into the unlawful killings. India has urged the international community to scrutinize Pakistan's actions and hold it accountable for its atrocities.
2: The so-called elections stand as a humiliating rejection of the Pakistani establishment facing a violent regime. The people there have requested international organizations for an independent investigation into the unlawful killings. We urge that the international community should scrutinize Pakistan's actions and hold it accountable for its atrocities.
5: India and China will resume border trade through the Nathula Pass in Sikkim today, marking the revival of a key trade route between the two neighboring countries. The resumption of trade will end a six-year suspension that had been placed since 2020 due to the COVID-19 pandemic. The revival of trade is expected to boost cross-border commerce, benefiting registered traders, transport operators and allied businesses. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar spoke to his Iranian counterpart Abbas Araghchi last evening and conveyed India's deep concerns over the ongoing hostilities in the West Asia region. During the telephonic conversation, Dr. Jaishankar strongly urged that attacks on commercial shipping and seafarers be avoided under any circumstance. He has stressed that India condemns any such attack by any party. The External Affairs Minister said in a social media post that he was also apprised of Iran's perspective on current developments and discussions which are underway. He said India is always supportive of dialogue and diplomacy. Italy has temporarily suspended open border travel with Spain following a sharp rise in migrant crossings into the Spanish enclave of Ceuta from Morocco. The move will affect flights and maritime transport and temporarily suspend Spain's Schengen border-free travel arrangements, which allow people to move freely across 29 European countries. Meanwhile, more than 48,000 migrants have returned to Morocco from Ceuta, where around 60,000 people arrived in recent days. Spain and Morocco have agreed to strengthen measures to facilitate the swift return of all migrants who entered Ceuta illegally. Prime Minister Narendra Modi spoke with the Prime Minister of the United Kingdom, Andy Burnham, and congratulated him on assuming office. In a social media post yesterday, Mr. Modi said during their conversation, they agreed to work together across sectors such as technology, innovation, defense, security, clean energy, education, and people-to-people ties, and take the India-UK Comprehensive Strategic Partnership to new heights. He added that both nations will also collaborate closely to fully harness the trade and investment opportunities presented by the recently operationalized India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement for the shared prosperity and well-being of people of India and UK. At the Commonwealth Games in Glasgow, India delivered another outstanding performance yesterday, clinching two historic gold medals in judo, securing a memorable double podium finish in the men's javelin throw, winning a first-ever bronze medal in the decathlon, and booking places for 10 boxers in their respective finals. We have a report.
1: Judo player Asmita Day and Harsh Singh scripted history by becoming India's first-ever Commonwealth Games gold medalist in the sport. Asmita clinched the women's 48-kilogram title, while Harsh won the yellow medal in men's 60-kilogram category. Yamini Moria added a silver in the women's 57-kilogram event, giving India its best-ever Commonwealth Games campaign in judo with 2 gold and 1 silver medal. In athletics, Olympic champion Neeraj Chopra won silver in the men's javelin throw, while Yashvir Singh secured bronze. Jaswant Shankar also created history by becoming the first Indian to win a Commonwealth Games medal in the decathlon, claiming bronze. India's boxers also delivered an outstanding performance, with 10 pugilists winning their respective semi-final bouts to enter the finals. Swati Rakheja, Sports Desk.
5: The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall over East Rajasthan, Madhya Maharashtra, coastal Karnataka, south interior Karnataka, Konkan, Goa, Kerala and Mahe today. The IMD has also predicted heavy rainfall over Himachal Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Haryana, Chandigarh, Delhi, West Rajasthan, Bihar, sub-Himalayan West Bengal, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep and some parts of northeast India. The weather agency has forecast thunderstorm accompanied by lightning over Gujarat, Chhattisgarh, Vidarbha, Assam and Tripura for today. And now for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
11: Thank you, Naresh. Newspapers have prominently covered Prime Minister Modi's video message on their front pages. PM, I forgive children who abused me. Let's show them the way. Headlines, The Indian Express. Pak forces target women, kids in POK. India calls for global scrutiny. 40 killed in stir since July 27, says The Asian Age. Life term for Tahir Hussain in Ankit Sharma murder case is a top headline in the Pioneer. Tribune under the headline, uniform was soaked in blood. Cops skin recount trauma after CJP protest violence. Reports that the family members of police personnel injured during the violence at the CJP protest have shared their ordeal and sought justice. In its editorial, How Apps Have Built the Modern Consumer, Financial Express writes that modern life has a way of creating inconveniences out of the conveniences it promises. The paper says that they promise a user-friendly interface but become a surprisingly accurate portrait of their owners. The paper concludes that what began as an alternative to the website has evolved into a system of hyper-personalized nudges, inducements and playful jabs on our phones. A top headline in The Hindu says, Trump touts Gaza deal. Hamas seeks Israeli exit, saying Hamas acknowledges the deal only if Israel withdraws the troops and stops killing Palestinians. And finally, the front page of Hindustan Times shows beaming faces of Asmita Day and Harsh Singh after winning the country's first ever gold medals in judo at the Commonwealth Games. And with that, it's back to you, Naresh.
5: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for compassion and guidance for misguided youth, says hatred and abuse never solve anything. President gives assent to anti-paper leak bill, introducing stricter punishment and setting up of fast-track courts. Prime Minister to launch multiple development projects in Andhra Pradesh and Karnataka today. India raises concerns over ongoing hostilities in the East Asia region, urges Iran to avoid attacks on commercial shipping and seafarers. Italy suspends free border travel with Spain over Ceuta migrant crisis, and at Commonwealth Games, India clinched two historic gold medals in judo, secure double podium finish in men's javelin throw, and win a first ever bronze in decathlon. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
12: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं अब्दुल वाहिद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुमराह नौजवानों के तई हमदर्दी और रहनुमाई इख्तियार करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि नफरत और गालम गलोज से कभी कोई मसला हल नहीं होगा। सदर जम्हूरिया ने पेपर लीक की रोकथाम के बिल को मंजूरी दे दी है, जिसमें सख्त सजा और तेजी से काम करने वाली अदालतें कायम करने के लिए कहा गया है। वज़ीर आज़म आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। भारत ने मगरबी एशिया खित्ते में जारी मुखासिमाना कार्रवाइयों पर तशवीश जाहिर की है। उसने ईरान से जोर देकर कहा है कि वो कमर्शियल जहाजों और जहाजियों पर हमलों से गुरेज करे। इटली ने सीटा माइग्रेंट्स बहरान के मामले पर खुली सरहद के रास्ते आने जाने की सहूलत मुअत्तल कर दी है। दौलतें मुश्तरक खेलों में भारत ने जूडो में सोने के दो तमगे जीते हैं, जो एक तारीख है। भारत ने नेजा फेंकने के मर्दों के मुकाबले में दो तमगे हासिल किए हैं। उसने डेक्थोलन में अभी तक का पहला कांसे का तमगा जीता है। खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बुरा भला कहने और नफरत से कभी कोई मसला हल नहीं हुआ। उन्होंने उन गुमराह कुन नौजवानों के तई हमदर्दी इख्तियार करने की अपील की है, जो बेलगाम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की तामीर और कौमी मफाद के जज्बे के सही रास्ते पर इन नौजवानों की रहनुमाई की जानी चाहिए। वज़ीर आज़म ने अपने एक वीडियो पैगाम में, जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया है, कौमी राजधानी में जंतर मंतर पर हालिया वाक़े का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी आजहानी वालिदा के खिलाफ गालम गलोच का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में तमाम लोगों और दुनिया भर ने इन वाक़ियात का नजारा किया। उन्होंने ये भी कहा कि अगरचे इस रवैये पर समाज में जो गुस्सा और मायूसी पाई जाती है वो बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन बचपना सीखने, गलतियां करने और उनकी दुरुस्तगी का मरहला भी है।
6: बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको ताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
5: सदर जम्हूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों के इम्तिहानात के 2026 के बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल को पार्लियामेंट में जुमेरात को मंजूरी दे दी गई थी। इस कानून का मकसद सख्त तर सजाएं मुकर्रर करके और तेजी से काम करने वाली अदालतें कायम करके गलत तौर तरीकों की रोकथाम करना है। इस बिल में इम्तिहान के निजाम में कानूनी फ्रेमवर्क के जरिए शफाफ और सही तौर तरीकों और दियानतदारी की बात कही गई है, ताकि बच्चों के मुस्तकबिल का तहफ्फुज किया जा सके। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश में विजय नगरम जिले के भोगापुरम इलाके में अलूरी सीतारामा राजू बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह करेंगे। जनाब मोदी अपने दौरे में कई तरक्याती प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे, इनका इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों पर तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
12: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के शहर मैसूर में नौजवानों के स्वामी विवेकानंद सकाफती मरकज विवेकानंद स्मारक का इफ्तिताह करेंगे। ये मकाम भारत के सबसे अजीम रूहानी रहनुमाओं में शामिल स्वामी विवेकानंद के तारीखी दौरे की यादगार है जो उन्होंने 1982 में किया था जो उन्होंने 1892 में किया था। इस दौरे में वो मैसूर के दीवान सर के केशेषाद्री अय्यर से मिले थे और उन्हें महाराजा श्री चमाराजेंद्रा वडियार के हाथों माली मदद हासिल हुई थी। ये माली मदद शिकागो में मजहबों की पार्लियामेंट में शिरकत के मकसद से अमरीका जाने के लिए दी गई थी। तफसील हमारे नामानिगार से।
13: विवेक स्मारक का इफ्तिताह वजीर आजम के हाथों आज मैसूर में किया जाएगा। ये यादगारी मकाम स्वामी विवेकानंद की तालीमात और फलसफे को फरोग देने के लिए है। 75,300 मुरब्बा फुट के रकबे पर 4D तजर्बेगाह, नुमाइश हॉल, एम्फीथिएटर, क्लासरूम्स, कॉन्फ्रेंस हॉल्स, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम और एक मेडिटेशन और योग हॉल कायम किया गया है। बेंगलुरु से सुधीन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बे।
12: मरकजी काबीना ने तौसीशुदा खेलो इंडिया स्कीम और कौमी स्पोर्ट्स फेडरेशन ANSFS की इमदाद में इजाफे को मंजूरी दे दी है जिसके मुताबिक 2026-27 से 2030-31 तक इसके लिए मुश्तरका तौर पर 36,441 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। कल नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए इत्तला-ओ नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस फैसले से नौजवानों की तरक्की और मुल्क की तामीर में स्पोर्ट्स की ताकत को मनवाने के तई हुकूमत के अज़्म का इआदा होता है। उन्होंने कहा कि इससे सभी नौजवानों की सलाहियत को बेहतर से बेहतर बनाने और इसके लिए वाज़ह राह हमवार करने को यकीनी बनाया जा सकेगा। जनाब वैष्णव ने यह भी कहा कि इस स्कीम से पूरे मुल्क में समाज की बिल्कुल निचली सतह से टारगेट पोडियम ओलंपिक स्कीम की सतह तक हर तरबियती मरकज कायम करने में मदद मिलेगी। मगरबी बंगाल में आज से मर्दमशुमारी का अमल शुरू हो रहा है जो 2 मरहलों में डिजिटल तौर पर किया जाएगा। इस मशक का मकसद टेक्नोलॉजी पर मबनी नुक्ते नजर के जरिए अपडेट शुदा आबादियाती डेटा इकट्ठा करना है जिसमें रियासत भर में जामे कवरेज को यकीनी बनाने के लिए 2 मरहले के अमल को डिजाइन किया गया है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
14: पहले मरहले में मगरबी बंगाल के बाशिंदे मर्दमशुमारी के सरकारी पोर्टल के जरिए अपनी तफसीलात जमा करके आज से 15 अगस्त तक खुद की गिनती के अमल को ऑनलाइन तौर पर मुकम्मल कर सकते हैं। इसका दूसरा मरहला 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान मर्दमशुमारी करने वाले अहलकार घरों की फहरिस्त और इब्तदाई गिनती के लिए घर घर जाएंगे। आखिरी मरहला अगले साल फरवरी में होगा जब मर्दमशुमारी करने वाले अहलकार हर घर के फर्द के बारे में तफसीली मालूमात जमा करेंगे जिसमें नाम, उम्र, जिंस, जात और मजहब की बुनियाद पर आबादी का हकीकी तौर पर इंदिराज होगा। कोलकाता से संदीपोन दास गुप्ता और श्यामलाल गोस्वामी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
12: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नाम नेहाद इंतखाबात पाकिस्तानी इंतजामिया को शर्मनाक तरीके से मुस्तरद करने के मुतअल्लिक हैं। दिल्ली में नामनिगारों से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणदीप जसवाल ने कहा कि पाकिस्तानी इंतजामिया कश्मीर के अपने ज़ेरे कब्ज़ा इलाके में पुरअमन शहरियों के खिलाफ बेरहमाना ताकत का इस्तेमाल जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई का नतीजा 40 से ज्यादा शहरियों की अलमनाक मौत और बहुत सों के जख्मी हो जाने की शक्ल में बरामद हुआ है। रूसी फौज में भारतीय शहरियों के बारे में तर्जमान ने कहा कि रूसी फौज में बकिया भारतीय शहरियों की रिहाई के लिए भारत रूस से बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा कि इन कोशिशों की वजह से अभी तक 139 भारतीय शहरी रिहा कराए जा चुके हैं। भारत और चीन आज सिक्किम में नाथुला दर्रे के जरिए सरहदी तजारत दोबारा शुरू करेंगे जिससे दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान एक अहम तजारती रास्ते की बहाली होगी। तजारत की बहाली से 6 साल तत्तुल खत्म हो जाएगा जो 2020 से कोरोना वायरस वबा की वजह से पैदा हुआ था। तवक्को है कि तजारत की बहाली से सरहद पार तजारत को फरोग मिलेगा जिससे रजिस्टर्ड ताजिरों, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों और मुतअल्लिका कारोबारियों को फायदा पहुंचेगा। नाथुला के जरिए तिजारत 4 दहाइयों से ज्यादा अरसे तक मुअत्तल रहने के बाद 2006 में दोबारा शुरू हुई थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।

0: सबब बरसों से अदालतों में जेरिल तो मामलात में तेजी आएगी। नीज इस तरह के सभी मामलों को फास्ट ट्रैक अदालत में मुंतकली की तैयारी की जा रही है। इस खबर पर रोजनामा इंकलाब ने तवज्जो मरकूज की है। रोजनामा प्रताप ने मरकजी काबीना के जरिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना की मंजूरी की खबर को उजागर किया है, जिसके 5,000 करोड़ रुपए का बजट मुख्तरफ किया गया है।
1: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुमराह नौजवानों के तई हमदर्दी और रहनुमाई अख्तियार करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि नफरत और गालम गलोच से कभी कोई मसला हल नहीं होगा। जमहूरिया ने पेपर लीक की रोकथाम के बिल को मंजूरी दे दी है, जिसमें सख्त सजा और तेजी से काम करने वाली अदालतें कायम करने के लिए कहा गया है। वज़ीर आज़म आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। भारत ने मगरबी एशिया खित्ते में जारी मुखासिमाना कार्रवाईयों पर तश्वीश जाहिर की है। उसने ईरान से जोर देकर कहा है कि वो कमर्शियल जहाजों और जहाजियों पर हमले से गुरेज करे। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 8:45 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा बस एक क्लिक में कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे मिलन फिल्म का गीत। आवाजें थी लता मंगेशकर और मुकेश जी। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर में आप सुन रहे थे मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत। सचिन देव बर्मन ने इस गीत की धुन तैयार की थी बम्बई का बाबू फिल्म के लिए।

गीता दत्त और साथियों की आवाज़ों में आप सुन रहे थे मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का गीत। बोलते मजरू सुल्तानपुरी की और धुन ओपी नैयर की थी।

आप सुन रहे थे अनुपमा फिल्म का गीत आशा भोसले के स्वर में। शब्द रचना थी कैफी आजमी की और धुन हेमंत कुमार की थी।

0: दोना
1: भरो इंतजार आएगा वो दिन थोड़ी देर है
0: कब आएगा।
2: अरे अरे अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे।

0: ना बारिश तेज है ये भीग जाएंगे, ये बारिश तेज है।
1: उषा मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आप सुन रहे थे दो झूठ फिल्म का गीत। गीत लिखा था एमजी हशमत ने और इस गीत की धुन तैयार की थी शंकर जयकिशन ने। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर। अपने सुनने वालों को एक बार फिर बता दें, कुछ ही देर बाद प्रातः 9:25 पर धरती गाती है कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे रोहिलखंडी लोकगीत। लोकधारा में दिन में 1:45 पर आप सुनेंगे हरियाणवी लोकगीत। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में कार्यक्रम जिले की हलचल हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए सिद्धार्थनगर और सोनभद्र जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सिद्धार्थनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है डॉक्टर सावन कुमार का।
2: सिद्धार्थनगर पुलिस को साइबर क्राइम से संबंधित मामले में बड़ी सफलता हासिल हुई है। जनपद की खेसराहा थाने की पुलिस ने साइबर क्राइम को लेकर एक 20 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक अभिषेक महाजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस द्वारा NCRP समन्वय पोर्टल पर दर्ज कुल 9 मामले के 15,47,63,520 रुपए के मामले में एक 20 वर्षीय अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से साइबर क्राइम कर इकट्ठा हुए रुपए से खरीदा गया एक आईफोन, एक वीवो मोबाइल, एक लैपटॉप व साइबर ठगी के 20,000 रुपए नकद बरामद हुए। यह अभियुक्त अपने 6 विभिन्न खातों में 14,00,000 रुपए का लेन देन कर चुका है। आगे भी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।
3: NCRP पोर्टल और समन्वय पोर्टल पे जो भिन्न भिन्न राज्यों से शिकायतें आती हैं, उसमें 9 शिकायतें प्राप्त हुई थी म्यूल अकाउंट के संबंध में, और उसी जांच के क्रम में म्यूल खाते का भी पता चला और ये पता चला कि ये एक बड़ा फ्रॉड नेटवर्क है जिसने 15 करोड़ से भी अधिक की साइबर फ्रॉड किया है।
2: सिद्धार्थनगर जिले में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 का भव्य शुभारम्भ किया गया। इस महाअभियान के तहत जिले में 45,65,400 पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा किया गया। सभी विभागों के कर्मचारियों और स्कूली बच्चों ने अपने कार्यालय, स्कूल और खाली स्थानों पर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके तहत सभी विभाग के कर्मचारियों व बच्चों ने अपने कार्यालय, स्कूल व अन्य खाली स्थानों पर पौधारोपण किया। एक पेड़ माँ के नाम विषय पर प्रसिद्धीय स्कूल के बच्चों ने मंच से इसकी महत्ता बताई। इस अवसर पर धौरी कुइयां गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिद्धार्थनगर में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में विभिन्न धर्म के 146 जोड़ों का विवाह उनकी रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ। जनपद मुख्यालय के BSA ग्राउंड पर आयोजित इस सामूहिक कार्यक्रम में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, विधायक विनय वर्मा, पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक जय प्रताप सिंह, सदर विधायक श्यामधनी राही सहित जिले के आला अधिकारियों ने शादीशुदा जोड़ों को आशीर्वाद दिया। उत्तर प्रदेश में संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़ा कार्यक्रम का शुभारम्भ किया जा चुका है। वही जनपद सिद्धार्थनगर में इस कार्यक्रम को लेकर मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में लगातार लोगों में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस विशेष अभियान को गति देने के लिए विकास भवन से एक विशेष प्रचार वाहन को रवाना किया जा चुका है, जो जनपद में सभी तहसील क्षेत्र के गांव, कस्बा व नगर में जाकर रोग के बारे में लोगों को जागरूक कर रहा। जनपद में तहसील स्तर पर सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व सामुदायिक केंद्रों पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया, जिसके नेतृत्व में आशा, आंगनबाड़ी व स्वास्थ्य विभाग की टीम गाँव में कैंप लगाकर संचारी रोग को लेकर लोगों को जागरूक कर रहा है, साथ ही बचाव के लिए भी जानकारी दे रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को मौसमी और संचारी बीमारियों के प्रति जागरूक करना है, साथ ही जिले में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है, जिससे बरसात के दिनों में फैलने वाले जानलेवा बीमारियों से बचा जा सके। सिद्धार्थनगर जिले में भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र के नव नियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय का जिला मुख्यालय पर प्रथम आगमन हुआ। जिले में पहुंचने पर सिद्धार्थनगर नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद माधव, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि उपेंद्र सिंह सहित जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। चिलचिलाती धूप के बावजूद हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था। स्वागत समारोह के बाद जिला कार्यालय पर एक महत्वपूर्ण जिला बैठक की आयोजित की गई। मीडिया से मुखातिब होते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया और संगठन को मजबूत करने के लिए संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, उसका पूरी निष्ठा से निर्वहन करेंगे। उनका लक्ष्य है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी साल 2017 से भी अधिक सीटें जीतकर इतिहास रचे। इसके लिए वह हर मंडल में प्रयास करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद स्थापित करेंगे। सिद्धार्थनगर जिले के विकास खंड बर्डपुर में ग्राम पंचायत बर्डपुर नंबर 6 टोला माधव नगर में ग्राम चौपाल गाँव की समस्या गाँव गांव में समाधान का आयोजन किया गया। इस मौके पर अपनी समस्याओं को लेकर आए ग्रामीणों की जिलाधिकारी शिव शरणप्पा जीएन, मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह सहित जिले के अधिकारियों ने समस्याएं सुनी और उनसे बेहतर ज्यादातर का निपटारा मौके पर कर दिया। ग्रामीण चौपाल को लेकर जिलाधिकारी ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप पूरे जिले भर में सप्ताह के एक दिन जिले के किसी एक गांव में ग्राम चौपाल का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर जिले के हर विभाग से संबंधित अधिकारी मौजूद रहते हैं और ग्रामीणों की समस्या सुनकर उसे निपटाने की कोशिश की जाती है। कुछ समस्या जिनका निदान मौके पर नहीं हो सकता, उसको उसके लिए एक समय सीमा के भीतर इसका निपटारा करने के निर्देश दिए जाते हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि इस कार्यक्रम से लोगों की समस्याओं को निदान के साथ साथ सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी भी लोगों तक पहुंचाई जाती है।
1: सिद्धार्थनगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सोनभद्र जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज सिंह का।
4: जनपद सोनभद्र में करीब एक सप्ताह देरी से पहुंचे मानसून के बावजूद सामान्य से कुछ ज्यादा वर्षा से किसान खुश हैं। धान की डाली गई नर्सरी के बाद किसान धान की रोपाई अभी भी कर रहे हैं। जनपद के लगभग आधे से कुछ कम हिस्सों में ही धान की रोपाई की जाती है, बाकी के हिस्सों में दलहन तिलहन की बुआई होती है, जिसके लिए हाल के समय की वर्षा पर्याप्त है। भौगोलिक दृष्टिकोण से जनपद अधिकांश इलाका उबड़ खाबड़ टीले नुमा है, ऐसे में धान की रोपाई करना किसानों के लिए संभव नहीं है। जनपद सोनभद्र में 50 एकड़ से ज्यादा क्षेत्रफल में सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा। जिलाधिकारी चर्चित दौड़ ने बताया कि शासन स्तर पर लिए गए निर्णय के अनुक्रम में जनपद ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई है। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद का मारकुंडी क्षेत्र विंध्य और पूर्वांचल का प्रमुख औद्योगिक कौशल विकास एवं रोजगार का केंद्र बनेगा। उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए लगभग 16 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से तेजी से उद्योगों की स्थापना होगी। जिलाधिकारी ने बताया कि सिंगल विंडो के माध्यम से समस्या का त्वरित निस्तारण भी किया जाएगा। रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम से स्थानीय लोगों को भरपूर रोजगार और स्वयं के उद्योग भी लगा सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल योजना युक्त योजना के अंतर्गत स्थानीय एमएसएमई स्टार्टअप एवं नए उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे आदिवासी बाहुल जनपद में स्थानीय लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जनपद सोनभद्र के बबनी ब्लॉक की 1000 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक हब बनाया जाएगा। एक्सप्रेस वे के करीब बनाए जा रहे औद्योगिक हब के लिए जिलाधिकारी और उद्योग बंधुओं के बीच बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने आदेशित किया कि सभी समस्याओं का त्वरित किया जाए। जनपद में विगत दिनों मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का निस्तारण समय से किया जाए, जिससे स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा मिल पाए। जनपद सोनभद्र में जिला उर्वरक निर्धारित समिति की बैठक के बाद जिलाधिकारी ने आदेश दिया है कि किसी भी परिस्थिति में खाद की ओवर रेटिंग नहीं होनी चाहिए। साथ ही हर सहकारी समिति एवं संबंधित एजेंसी पर डीएपी और यूरिया की उपलब्धता होनी ही चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान हाल में खरीफ की बुआई में व्यस्त है, ऐसे में उर्वरक सही समय पर उनको उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है। जनपद सोनभद्र में संचारी रोगों के प्रभावी नियंत्रण के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाया गया। गाँव में नालियों की सफाई कराई गयी, पानी स्टोरेज इलाकों को चिन्हित करके दवाओं का छिड़काव कराया गया। इस बीच आशा आंगनबाड़ी एएनएम द्वारा लगातार संचारी रोगों से बचाव के लिए कार्य किए गए। जनपद सोनभद्र में अवस्थित रिहंद बांध की कैचमेंट एरिया में जल भराव उम्मीद के अनुरूप नहीं है। जनपद के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में मानसून की कमजोर सक्रियता का असर रिहंद के जल स्तर पर दिखाई दे रहा है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक 30 जुलाई को सुबह बांध का जल स्तर 854.4 फीट रिकॉर्ड किया गया, जबकि पिछले वर्ष इसी दिन बांध यह 868.1 फीट पर था। विशेषज्ञों का कहना है कि जुलाई माह में 22.7 फीट जल स्तर कम होने का असर आगामी समय में विद्युत उत्पादन पर पड़ेगा। केंद्र और राज्य सरकारों ने रिहंद के जल पर आधारित कई बड़ी तापी परियोजनाओं की स्थापना की है। रिहंद बांध से जुड़े एनटीपीसी की रिहंद नगर, सिंगरौली और शक्तिनगर परियोजनाओं के अलावा अनपरा तापी बिजली परियोजना, रेणु सागर ओबरा तापी परियोजना प्रमुख है। इन सभी संयंत्रों की शीतलन प्रणाली और उत्पादन प्रक्रिया के लिए बड़ी मात्रा में पानी रिहंद बांध से उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही रिहंद बांध से वर्ष भर सस्ती बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। जनपद सोनभद्र में प्रदेश सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव सिंह गोड़ ने विगत दिनों कन्हरा बैरपुर मार्ग पर बिजली बिजुल नदी पर दीर्घ सेतु की आधारशिला रखी। संजीव सिंह गोड़ ने बताया कि उत्तर सेतु के निर्माण से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच आवागमन और भी सुगम हो जाएगा, साथ ही व्यापार के अवसर भी बढ़ेंगे।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। कार्यक्रम में पहले हम आपको सुनवा रहे हैं शालू सक्सेना के स्वर में ये रुहेलखंडी लोकगीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आइए अब सुनते हैं नीलम अग्रवाल के स्वर में ये रोहेलखंडी लोकगीत।

नीलम अग्रवाल के स्वर में ये रोहिलखंडी लोकगीत आप सुन रहे थे। आइए अब सुनते हैं उषा अग्रवाल और रुचि गुप्ता के युगल स्वर में ये रोहिलखंडी लोकगीत।

उषा अग्रवाल और रुचि गुप्ता के युगल स्वर में आप सुन रहे थे ये रुहेलखंडी लोकगीत। लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं मधुराकेश के स्वर में एक और रुहेलखंडी लोकगीत।

0: सारिका श्रीवास्तव के स्वर में ये रुहेलखंडी लोकगीत आप सुन रहे थे। इसी के साथ कार्यक्रम धरती गाती है संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रातः के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है आपके अनुरोध पत्रों और व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। सभी श्रोताओं को मेरा यानी ताहिर महमूद का
1: और मेरा यानी आपकी दोस्त अलका सिंह का प्यार भरा नमस्कार।
0: तो अलका जी, कार्यक्रम का पहला गीत हम श्रोताओं को सुनवाते हैं और इनकी फरमाइश उसके बाद हम शामिल करेंगे।
1: बिल्कुल ताहिर जी।

0: लीजिए स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का इस गीत के बाद। और ताहिर जी, सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को बता देते हैं हमारा नंबर जिस पर करने हैं उन्हें मैसेज लिखकर अपना नाम पता और फरमाइशी गीत। तो
1: नंबर से पहले अलका जी, हम श्रोताओं को बता दें कि ये जो गीत हमने सुनवाया आप सब श्रोताओं को, ये हमने याराना फिल्म से लिया था। आवाज थी किशोर कुमार की, गीत अनजान ने लिखा था और धुन थी राजेश रोशन की।

0: चलिए बता
1: पसंद
0: देते
1: करने वाले श्रोताओं के नाम आप बता दीजिए।
0: जी बिल्कुल, पसंद करने वाले श्रोताओं से पहले हम बता देते हैं हमारा नंबर जो है 9457078288 पर। तो जो हमारे नए श्रोता हमसे जुड़े हैं जल्दी से कर दीजिए हमें मैसेज 9457078288 पर। तो देख लेते हैं पहला मैसेज जो इस गीत के लिए हमारे पास आया था, वो हमें भेजा है शेख जियाउर रहमान ने सियरा लियोन वेस्ट अफ्रीका से।
1: ये पत्र हमारे पास आया था दरियापुर बाबली महाराष्ट्र से। अनुरोध करने वाले श्रोता थे गजानन येले, नवदीप येले, शेरी बडने रकोला से, बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर।
0: इस गीत के लिए फरमाइश हमारे पास आई थी अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना की कांट रोर लदावली से।
1: ये पत्र था ग्राम बग बुड़वा पथरिया से। पसंद करने वाले श्रोता थे नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका, उत्कर्ष नेताम और उनके परिवार के सदस्य।
0: कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार के मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता का।
1: तेलीपुरा रवाना शिकारपुर तलाई से आप थे मोहम्मद यूनुस अंसारी, मुरसलीन अंसारी, अताउर रहमान अंसारी और मोहम्मद उमेर अंसारी।
0: इस गीत के लिए फरमाइश हमारे पास आई थी मोहल्ला हलवाई अन शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीर, रोजी, बरवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर और रंगीन के परिवार के सभी सदस्यों की।
1: एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से फरमाइश करते थे कुमारी वंदना मराठा, कुमारी देविका चौधरी, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी और ललिता नारायण खर्चे।
0: कोटवा नारायण पूर्बावा पट्टी बलिया से मैसेज हमें कर रहे थे ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नवेदा जिला गाजीपुर से, प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रंजल राय।

0: कश्मीर की कली फिल्म से ये गीत था। आवाज़ें थी आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की, गीतकार थे SH बिहारी और धुन थी OP नैयर की। पसंद आप सब श्रोताओं की थी। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप और उनके परिवार के सदस्य, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल ने भी इसी गीत को पसंद किया था।
1: इसी गीत को पसंद करने की फरमाइश हमारे पास आई है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा की।
0: सेक्टर 18 जगाधरी हरियाणा से आप थे विनय मोहन, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी।
1: निजामाबाद से ये नजीबाबाद लिख रहे हैं और इनका मैसेज हमें मिला है पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंत भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत का।
0: फतेहपुर नवाबाद बिजनौर से अनुरोध करते थे विजेंद्र कुमार उर्फ बिंदे, कुड़िया देवी, प्रीत, सिमरन और दीपांशु।
1: मौताला महाराष्ट्र से फरमाइश आई हमारे पास थी विजय सुलरकर, रतनमाला सुरलकर और कुमकुम की।
0: ये पत्र था महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से। अनुरोध करते थे इस गीत के लिए राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे।
1: SM जावेद, शगुफ्ता अंजुम और नजबुल होदा की फरमाइश हमारे पास आई है गुमला झारखंड से।
0: खुर्दी रोड मानपुर से आप हैं विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद।
1: गांव खिड़की जिला बिजनौर से दिव्यांशु यादव, सूर्य नारायण यादव, विनायक यादव, कार्तिकेय यादव, दिदर्शन गौरी जी, श्री हरवर्षन यादव जी और नंदिनी जी यादव, वसुंधरा यादव और इनके परिवार के सभी सदस्य।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म आया सावन झूमके का ये गीत, जिसे आवाज़ें दी थी लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों ने। गीत था आनंद का और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो
1: इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता थे अलका
0: जी,
1: दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार।
0: इसी गीत की फरमाइश हमारे पास आई थी गांव हीरा वाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदरा, विमला गोदरा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदरा और इनके परिवार के सभी सदस्यों की।
1: गांव चहलादा बागपत से इस गीत को पसंद करते थे संजय ढींगिया, नमन, मुस्कान और कुणाल।
0: इसी गीत की फरमाइश हमारे पास आई थी ददरेंगी

0: के भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा की।
1: ये पत्र था डब वाली हरियाणा से। अनुरोध करते थे जे के बोकोलिया, सुनीता बोकोलिया, संजय अनिल और मीनू बोकोलिया।
0: ऑरेंज सिटी नागपुर से विठल जाधव, अनुसुईया जाधव, पवन राज्य जाधव, छत्रपति संभाजीनगर से मंगेश इंगले, संध्या इंगले, स्वराज विराज भी इसी गीत को सुनना चाहते थे।
1: ये पत्र हमें मिला था डोंगर गांव, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। फरमाइश करने वाले श्रोता थे राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये।
0: बागपत उत्तर प्रदेश से मैसेज कर रहे थे संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया।
1: छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद, किशोर कुमार, दीपक कुमार और जावेंद्र कुमार वर्मा ने भी इसी गीत को पसंद किया था।
0: मोहल्ला अफगानान शेरकोट से मैसेज कर रहे थे नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर, मोहम्मद जैन, जन्नत और इनके परिवार के सभी सदस्य। तो ताहिर जी सुनवा देते हैं अगला गीत।
1: बिल्कुल बिल्कुल।

0: अभी हमारे श्रोताओं ने सुना फिल्म जुर्माना का ये गीत, जिसे आवाज दी थी लता मंगेशकर ने। गीत लिखा था आनंद ने और संगीत था राहुल देव का। तो देख लेते हैं अगला मैसेज जो हमारे पास आया है। उत्तम नगर दिल्ली से लिखने वाली हैं कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश।
1: इसी गीत को पसंद करते थे आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से मेरा जहां गुलाम साबिर राही और ताज मोहम्मद अंसारी।
0: मेहर नगर उमरखेड़ा महाराज से अभिजीत गवाड़कर राही, श्रीमती सरिता गवाड़कर, प्रणीता, सिद्धांत गवाड़कर, प्रिंस एकांश गवाड़कर, अर्जुन गवाड़कर और टुक टुक।
1: ये पत्र आया था सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से। फरमाइश करते थे कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा, सालिया, शोएब खान, मुश्तबा खान, रऊफ भाई और शहीद भाई।
0: इस गीत के लिए फरमाइश हमारे पास आई थी मालवा श्रोता, रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी, आलोट जिला रतराम एमपी से जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजुबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़ की।
1: गांधीबाग अकोला से आप थे रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर।
0: इसी गीत के लिए फरमाइश हमारे पास आई थी नसीब रेडियो श्रोता संघ नांगचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से लिखने वाले थे अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी जी।
1: ग्राम नंगला उबन नजीबाबाद बिजनौर से ठाकुर विजयपाल सिंह, जबर सिंह, जयपाल सिंह, राहुल, सचिन, सविता, नोनी, लालू, नमन, सेजल, छोटी, शिवी, ओम प्रकाश, बलवंत, पूनम और उनके परिवार के सभी सदस्य।
0: मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से फरमाइश करने वाले थे इरशाद हुसैन अंसारी, सैयद शारिक अली, महराज अंसारी और बाबू अंसारी।

0: अभी आपने सुना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत, जिसे आवाज दी थी लता मंगेशकर ने और फिल्म थी अभिनेत्री।
1: पसंद करते थे इस गीत को आप सब श्रोता। वार्ड नंबर 1 पोफाली, जिला यवतमाल से जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार सिंगणकर और अर्पिता। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अकरम अंसारी और अल्ताफ अंसारी ने भी इसी गीत को पसंद किया था।
0: इस गीत को फरमाइश करने के लिए मैसेज हमारे पास आया था मालियान सरघना मेरठ से, अनिल जैन, जैन साहब, सईद जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जीवीएम जैन का।
1: डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। सारिमपुर बक्सर से आप थे आसमा खातून अंसारी, राज एस डी अंसारी, मेहता अंसारी, आफ्ताब अंसारी और मेराज अंसारी।
0: इसी गीत के लिए फरमाइश हमारे पास आई थी परी महल कासगंज से आदाब

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे शैलेंद्र का लिखा गीत। शंकर जयकिशन ने इस गीत की धुन तैयार की थी झुक गया आसमान फिल्म के लिए। इसको पसंद करते थे पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री।
1: पटियाला रोड गंज डोंडवारा उत्तर प्रदेश से मैसेज कर रहे थे एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, अकील कुरैशी, बेबी आरिबा हबीबा।
0: परिमहल कासगंज से आप थे आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान और असलम सैफी।
1: उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भोगराज खोरवाल और भानु प्रकाश ने भी इस गीत के लिए फरमाइश हमारे पास भेजी थी।
0: महाराष्ट्र के बीड शहर से इस गीत को पसंद किया था प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया, केशव पटेल और राम निवास अग्रवाल ने।
1: इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई थी समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से सोनम सिंह और अनामिका सिंह की।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर में आप सुन रहे थे प्यार का मौसम फिल्म का ये दो गाना। गीत था मजरू सुल्तानपुरी का और धुन थी राहुल देव बर्मन की। पसंद आप सब श्रोताओं की थी। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी गव्य और भाई सुच्चा पाठक।
1: इस गीत के लिए फरमाइश हमारे पास आई थी गुलाम रोड, हरगोविंद नगर, नवा शहर, पंजाब से सुरिंदर संधू, अनीता संधू, रोहित संधू, रितेश संधू, शिखा संधू, प्रतीशा संधू और मैक्स की।
0: बोरी खुर्द तालुका जाफराबाद जिला जालना से आप थे सुधाकर राजे दाझव जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, चुगताई राजे जाधव, वर्षाताई, संचित, प्रथमेश, सोहम, प्रणाली और सानवी देशमुख।
1: इस गीत के लिए फरमाइश हमारे पास आई थी किशोर नगर अमरावती से हीरा मन शेंडे और सिद्धार्थ गौणा सेनी की।
0: शाही मार्केट सियारा से इस गीत को पसंद किया था आसिफ चौधरी, अराफात चौधरी, आदिब चौधरी और कादिर चौधरी ने।
1: गनगोला दातागंज जिला बदायूं से इसरत खान, शायरा बेगम, रहूफ खान, साबरीन बेगम, शाहनवाज खान, सैफ खान और ईशान खान ने भी इस गीत के लिए फरमाइश हमें दी थी।
0: ये पत्र आया था चनेहटी बरेली कैंट रेलवे केबिन के पास से। अनुरोध किया था विनेश कुमार रागिनी, श्रीवास्तव और मुस्कान ने।
1: जिला खरगोन सनावल मध्य प्रदेश से मैसेज कर रहे थे मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाई जान, भाई राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप।

0: जी
1: मंजिल फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसे आवाज दी थी किशोर कुमार ने। गीत लिखा था योगेश ने और संगीत दिया था आरडी वर्मन ने। और अब जो गीत हम हमारे श्रोताओं को सुनवाने वाले हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म महबूबा से, आवाज है किशोर कुमार की, गीत है आनंद बख्शी का और संगीतकार है राहुल देव।
0: दोनों गीतों की मिली जुली फरमाइश अलका कुछ इस तरह से हमारे श्रोताओं की है। कटरा चांदखा मौर्य मंदिर, वार्ड नंबर 11, पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, वेदराम मौर्य, कैलाश मौर्य, सुनील मौर्य, खुशबू मौर्य, रोही मौर्य और स्वाति मौर्य।
1: कृष्णा पाक दिल्ली से हमें मैसेज कर रहे हैं सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना।
0: राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से आप हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिका वर्मा और आर्यन वर्मा।
1: खेमपुर से फिजा शिफा, मंतशा, मायरा और अनायसा ने हमें मैसेज भेजा है।
0: शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊनाथ भंजन से फरमाइश करने वाले श्रोता हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, रितेश कृष्णा और पिहू स्वर्णकार।
1: छत्रपति संभाजीनगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप, राजेश, राजी, राशि राजेश और शीतल राजेश हमें मैसेज कर रहे हैं।
0: ये पत्र आया था गांव भड़भूंजी जिला आगर मालवा से, फरमाइश करते थे रघुनाथ मालवीय, सुषमा, मंजू, बबीता और ओम प्रकाश।
1: यह मैसेज हमारे पास आया है मुरादाबाद ग्राम पूरा साविर पूरा से लिख रहे हैं साविर अली, नसरीन, काजल और इनके परिवार के सभी सदस्य।
0: पटेल नगर मलोट पंजाब से फरमाइश करने वाले श्रोता डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया और आरजू जाजौरिया थे।
1: मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से मैसेज कर रहे हैं विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, नीलमपुरी, रमापुरी, पालकपुरी, सुनील पाठक, वीकेपुरी और विनोदपुरी।
0: तो आप सब श्रोताओं की पसंद पर आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: किशोर कुमार के गाए महबूबा फिल्म के इसी गीत के साथ कार्यक्रम संपन्न करने की हमें आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आपके पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 11 बज रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त अलका सिंह का प्यार भरा नमस्कार। तो श्रोताओं, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आनंद ले रहे होंगे इस मौसम का, जो गर्मी से कुछ राहत हमें दे रहा है। श्रोताओं, दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम खुद हैं। खुद को समझ लीजिए, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जी हाँ श्रोताओं, खुद को समझना आजकल बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि हम ना इतने बिजी हो गए हैं लाइफ में, तो हंसना मुस्कुराना और ज़िंदगी को खुल के जीना भूल गए हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी नजीबाबाद। तो सुनवा देते हैं आपको ये पहला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म जब वी मेट से। इसे आवाज़ दी है मीका सिंह ने।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म जब भी मैं अटकाएगी, जिसे आवाज दी थी मीका सिंह ने। गीत लिखा था इरशाद कामिल ने और संगीत था प्रीतम का। और अब आपको सुनवाते हैं ये जरूरी संदेश।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
0: एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का उनके अपने कार्यक्रम चित्रपट संगीत में। श्रोताओं, आप खुश होकर मुस्कुरा दीजिए, हम आपको देखकर मुस्कुरा देंगे। जी हाँ, जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारे अपने भी हमें देखकर कहीं ना कहीं मुस्कुरा ही जाते हैं। ऐसी ही होती है ये प्यारी सी मुस्कुराहट। और ज़िंदगी में मुस्कुराहट लाने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, बस जो हमारे सर पे जो भारी सा बोझ है ना, उसे थोड़ा हल्का करना होता है, थोड़े स्ट्रेस को कम करना होता है, टेंशन को साइड में रखना होता है और दिल से मुस्कुरा देना होता है। और सच मानिए श्रोता, ये जो मुस्कुराहट होती है ना, ये बहुत कीमती होती है, क्योंकि ज़बरदस्ती तो कोई भी मुस्कुरा सकता है। दिल से मुस्कुराएं, हंसें और अपनों को भी हंसाते रहें। तो चलिए सुनवा देते हैं ये अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म मोहब्बतें से। इसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत तैयार किया है जतिन ललित ने। इस गीत को आवाज़ दी है उद्भव और प्रीतम मजूमदार ने। फिल्म मोहब्बतें।

श्रोताओं भी आपने सुना फिल्म मोहब्बतें का ये गीत, जिसे आवाज दी थी उद्धव और प्रीतम मजूमदार ने, संगीत दिया था जतिन ललित ने और गीत लिखा था आनंद बख्शी ने। श्रोताओं, जिंदगी बहुत खूबसूरत है और इसको जितनी हंसी खुशी से जिया जाए जिंदगी उतनी ही हसीन हो जाती है। तो बिल्कुल हमें हंसी खुशी से जीना है और हर लम्हे को अपनी यादों में कैद कर लेना है। खुशियाँ बांटते रहिए और मुस्कुराते रहिए। तो चलिए सुनवा देते हैं ये अगला गीत, जिसे आवाजें दी हैं लाभ जुंजवा और सूजी क्यू ने। गीत लिखा है मयूरपुरी ने और संगीत है प्रीतम का। और श्रोताओं, ये फिल्म है सिंग इज किंग।

श्रोता, अभी आपने सुना फिल्म सिंग इज किंग का ये गीत, जिसे आवाज दी थी लाभ जंजुआ और सूजी क्यू ने। गीत था मयूरप्री का और संगीत में सजाया था प्रीतम ने। श्रोता, कभी वे वजह ही खुश रहकर देखिए, क्योंकि वजह से ज्यादा देर तक खुश नहीं रहा जाता। जी हाँ श्रोता, क्योंकि ये जो वजह होती है ना, स्टार्टिंग में हमें लगता है कि हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी बात है, हम खुश हैं और किसी वजह से हमारी जिंदगी में खुशी आई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप बिना वजह भी खुश रहना जानते हैं, तो फिर आपके पास उदास रहने की कोई वजह नहीं बचती, है ना। तो चलिए सुनवा देते हैं ये अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म गुंडे से। इस गीत की शब्द रचना है इरशाद कामिल की, संगीतकार है सुहेल सेन, और आवाज़ें हैं विशाल डडलानी, के नीति मोहन और बप्पी लहरी की।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म गुंडे का ये गीत, जिसे आवाजें दी थी विशाल डडलानी, के रीति मोहन और साथियों ने। गीत लिखा था इरशाद कामिल ने और संगीत था सोहेल सेन का। श्रोताओं, छोटी सी जिंदगी है, अरमान बहुत है, अपना कोई नहीं पर इंसान बहुत है। जी हाँ श्रोताओं, लेकिन इस भीड़ भरी दुनिया में अगर कोई हमारे पास हमारा अपना है तो हम बहुत खुश नसीब हैं। उसके साथ हंसना है, मुस्कुराना है और ज़िंदगी को बिताना है। और इसमें सबसे ज़्यादा हमारे करीबी होते हैं हमारे दोस्त या हमारे परिवार के सदस्य, जो हमें समझते हैं और हमारी बातों में खुशियाँ ढूंढ लेते हैं, या हम यूँ कहें उन्हें देख कर हम मुस्कुराना सीख जाते हैं, है ना। तो चलिए सुनवा देते हैं अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म मौसम से। इस गीत को आवाजें दी हैं मीका सिंह और पंकज कपूर ने, संगीत है प्रीतम का और गीतकार हैं इरशाद कामिल।

श्रोताओ, अभी आपने सुना फिल्म मौसम का एक गीत, जिसे लिखा था अरशाद कामिल ने, संगीत में पिरोया था प्रीतम ने, आवाज थी मीका सिंह और पंकज कपूर की। एक सुकून सा मिलता है उनकी बातें सुनकर, ऐसा लगता है जैसे सदियों से उन्हें जानते हैं। जी हाँ श्रोताओ, ये जो हमारे अपने होते हैं ना, उनकी बातें सुनकर हमें वैसे भी सुकून मिल जाता है, और हमारे अपने अगर हसीन हो तो उनकी बातें भी लाजवाब हो जाती हैं। और सच कहें तो श्रोताओं, जो ये हसीन चेहरा होता है ना, ये सिर्फ आंखों के लिए नहीं होता है, क्योंकि हमारे अपने हमें वो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं जो चेहरे से हसीन नहीं होते, क्योंकि उनका दिल इतना हसीन होता है कि चेहरा उस दिल के आगे फीका पड़ जाता है ना। तो चलिए सुनवा देते हैं ये अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म काबिल से। गीत लिखा है कुमार और अनजान ने, संगीत में पिरोया है राजेश रोशन और गौरव रोशन ने। इस गीत को आवाज दी है रफ्तार और पायल देव ने।

श्रोता, अभी आपने सुना फिल्म काबिल का ये गीत, जिसे आवाज दी थी रफ्तार और पायल देव ने। गीत था कुमार और अनजान का, संगीत दिया था राजेश रोशन और गौरव रोशन ने। शोर हो गुल से दूर एक शाम का किनारा हो, बस तेरा जिक्र हो और मेरा अक्स तुम्हारा हो। जी हाँ श्रोताओं, जब हमारे अपने होते हैं ना, तो वो हमसे दूर भी रहें तो हमें लगता है कि बस वो पास आ जाए। उनकी बातें, उनकी मुस्कुराहट, उनकी अदाएं, हमें सब कुछ खूबसूरत रंग ले लगती हैं, है ना। तो चलिए सुनवा देते हैं आपको ये अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से। इसे आवाज ही दी थी अरिजीत सिंह और जोनिथा गांधी ने। गीत है अमिताभ भट्टाचार्य का और संगीत दिया है मदन मोहन और प्रीतम ने।

0: झुमका
1: शुदा। अभी आपने सुना फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से ये गीत, जिसे आवाज दी थी अरिजीत सिंह और जॉनी था गांधी ने। गीत था अमिताभ भट्टाचार्य का और संगीत था मदन मोहन और प्रीतम का। श्रोताओं, जिंदगी ना बड़ी प्यारी सी चीज है और इसमें हमारे अपने हो, मौज मस्ती हो और खुशनुमा माहौल हो तो जिंदगी और भी हसीन हो जाती है ना। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करते और सुनवा देते आपको ये अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म सोल्जर से। इसे आवाज दी है जसविंदर नरूला और सोनू निगम ने।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म सोल्जर का ये गीत, जिसे आवाज दी थी जसविंदर नरूला और सोनू निगम ने। गीत लिखा था समीर ने और संगीत था अनु मलिक का। श्रोताओं, काश कोई बहाना मिल जाए हमारे अपने के पास आने का, क्योंकि उनसे दूर रहकर भी हम दूर नहीं रह पाते हैं, और लगता है कि बस वो दूर हैं तो हम उनके पास दूर चले जाएंगे, या फिर ये कहे कि साथ समुंदर पार भी जाना पड़े तो हम नहीं रुकेंगे और अपनों के लिए दौड़कर चले जाएंगे, है ना। ऐसा ही तो होता है, अपनों का प्यार, अपनों की यादें और विश्वास। तो चलिए सुनवा देते हैं ये अगला गीत, जिसे प्यारी सी आवाज दी है साधना सरगम ने। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीत में पिरोया है विजू शाह ने, और फिल्म है विश्वात्मा।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म विश्वात्मा का ये गीत, जिसे आवाज दी थी साधना सरगम ने। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत दिया था विजू शाह ने। श्रोताओं, कहते हैं ना कि काश कोई बहाना मिल जाए आपके पास आने का और हम दौड़कर चले आएं, चाहे फिर हमें उसके लिए कुछ भी लाना पड़े, गड्डी, हेलीकॉप्टर, प्लेन या जो भी हमारे पास अवेलेबल हो, बस हम पहुंच जाएंगे, है ना। बस अपनों के पास आने का बहाना चाहिए। ऐसे ही होते हैं कि जब हम कहीं ड्यूटी पर भी बाहर जाते हैं और हमें कहीं से ये हो जाए कि हाँ छुट्टी आ रही है, हम अपनी फैमिली के पास जा रहे हैं, तो बस हम निकल जाते हैं और इस निकलने पर हम गड्डी लेकर बड़े गुनगुनाते हैं, है ना। तो चलिए सुनवा देते हैं ये अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म गदर से। आवाज़ है उदित नारायण की, आनंद बख्शी का गीत है और संगीत दिया है उत्तम सिंह ने।

लीजिए श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म टू स्टेट से। इसे आवाज दी है बेनी दयाल ने, संगीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्स पर। दिन के 12 बज रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण।

आज रात 10 बजे सुनिएगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। रात 9:30 पर सुनेंगे आप राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती, और रात 8 बजे सुनिएगा इस सप्ताह संसद में। ये तीनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

आज संध्या 6:50 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का एपिसोड 1, जिसके प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा।

सुगम संगीत सुनेंगे आप आज शाम 7:32 पर, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे रागिनी शर्मा के गाए भजन। कृषि जगत सुनेंगे हमारे किसान बंधु आज शाम 6:05 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे लोकगीतों व रागनियों का फरमाइशी सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी। समय याद रखिएगा आज शाम 6:05 पर।

हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना मनपसंद दैनिक कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज आकर्षण का केंद्र होंगे कुछ खास है आज गीत आपके नाम बूस्टर्स, और साथ ही आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का भी। समय रहेगा आज शाम 5:15 पर।

आज दिन में 2:30 पर सुनेंगे आप एक ही गीतकार, जिसमें आज के हमारे गीतकार होंगे शकील बदायूनी, और शाम 5 मेरा सपना उन्नत भारत में भारत सरकार की रोजगार सृजन योजनाओं के अंतर्गत सुनिएगा राष्ट्रीय कैरियर सेवा NCS परियोजना, श्रम और रोजगार मंत्रालय और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय। समय रहेगा आज शाम 5 लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा में सुनिएगा विविध कलाकारों के गाए हरियाणवी लोकगीत, आज दोपहर 1:45 पर।

महिला जगत सुनेंगी हमारी बहनें आज दिन में 1:15 पर, जिसमें आज आप सुनेंगी डॉक्टर तरुभी अग्रवाल से बीना कोटनाला की बातचीत, जिसका विषय होगा माता और शिशु दोनों के लिए वरदान स्तनपान। और अब आपको लिए चलते हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रमों की ओर। आज रात 8:30 पर सुनेंगे आप एक ही फिल्म से। गीत संध्या का समय रहेगा आज रात 8 बजे। और अब से कुछ ही देर में यानी 12:05 पर सुनेंगे आप जिंदगी लाइव। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। दिन के 12:05 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कंपेयर्ड और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जिंदगी लाइव। नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम जिंदगी लाइव में, जिसे लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त अलका सिंह। श्रोताओं, आज कार्यक्रम जिंदगी लाइव में हमारा विषय है हुनर या टैलेंट या फिर आपका वो सपना जिसे आप पूरा करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए। जी हाँ, कुरेदी अपनी यादों को और पहुंच जाइए अपने उस सपने के पास जिसे आप पूरा करना चाहते।

थे, लेकिन समय या परिस्थिति के कारण उसे आप पूरा नहीं कर पाए। तो साझा कीजिए आज हमसे और हमारे सभी श्रोताओं से उस सपने को जो कहीं पीछे छूट गया, लेकिन आज भी याद आता है तो लगता है काश ऐसा हो गया होता। तो जल्दी से लिख भेजिए अपने उस हुनर के बारे में जिसे आप अपना कैरियर या जिंदगी में आगे लेकर जाना चाहते थे लेकिन ले जा नहीं पाए। शुद्ध हमारी जिंदगी में बहुत ऐसे हसीन ख्वाब होते हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं, और कभी कभी वक्त, परिवार या स्थिति ऐसी हो जाती है कि हमें उन्हें छोड़ना पड़ता है। लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि काश ये हो गया होता तो अच्छा लगता है ना। तो चलिए आज उन्हीं यादों में वापस चलते हैं और कुरेदते हैं अपने ऐसे ही कुछ सपने, कुछ जज्बात, कुछ यादें जो हमें फिर से हंसने पर मजबूर कर दें, या फिर हमें याद आए अरे ऐसा भी करना था वो छूट गया है ना। चलिए उन यादों में चलते हैं आज। तो मैसेज कर देना है आपको हमारे नंबर पर जो है 9457078288 पर। नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए 9457078288 पर। तो जल्दी से भेज दीजिए अपनी यादें, ख्वाहिशें, सपने और वो अधूरी बातें जो पीछे छूट गई हैं, है ना। तब तक सुनवाते हैं आपको ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म मेला से। आवाज़ है सोनू निगम, अलका याग्निक और साथियों की।

लीजिए श्रोताओं, एक बार फिर से स्वागत है आपका। कार्यक्रम जिंदगी लाइफ में, और अभी आपने सुना फिल्म मेला का ये गीत, जिसे आवाज़ दी थी सोनू निगम और अलका याग्निक साथ के साथ साथियों ने। गीत लिखा था देव कोहली ने और संगीत था अनूम मलिक का। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं जिंदगी की उन यादों की, उन बातों की, उन सपनों की और उस हुनर की जो हमसे पीछे छूट गया है, लेकिन जब भी याद आता है तो एक दिल में दर्द सा उठ जाता है कि काश हम वो कर पाते, है ना। तो चलिए देख लेते हैं हमें पहला मैसेज कौन लिखकर भेज रहे हैं। ये जो पहला मैसेज हमें मिला है, ये मिला है जसपुर रोड दूल्हापुर जिला मुरादाबाद से। लिखने वाले हैं महबूब दुकानदार, बेगम साहिबा, महबूब मोहम्मद समीर अंसारी, मोहम्मद वारिस अंसारी, बेटी अलशिफा अंसारी का। ये लिख रहे हैं जीवन के सफर में सपने और यादें दो ऐसे पहलू हैं जो हमारे वर्तमान को पूरी तरह प्रभावित करते हैं। सपनों की ताकत जो हमें, सपने हमें, हम खुली आंखों से देखते हैं, वो हमें हर मुश्किल परिस्थितियों से लड़ने की ताकत देते हैं। जब विचार अच्छे और सकारात्मक हों तो वो एक मजबूत दिशा और प्रेरणा का काम करते हैं। यादों का एहसास, पुरानी यादें हमारे अतीत का आईना होती हैं। जब हम उन्हें कुरेदते हैं तो कभी चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और कभी आंखें नम हो जाती हैं। इस बात का ये प्रमाण है कि हम ने वह समय पूरी शिद्दत से जिया है। विचारों का प्रभाव, जब अच्छे विचार और गहराई से सोचते हैं, सोचे गए अपने आपस में मिलते हैं तो वे व्यक्ति को एक नई ऊर्जा से भर देते हैं। यह आंतरिक मंथन है। हम बेहतर इंसान बने, खुद को तराशें और जीवन में कुछ सार्थक करने के लिए प्रेरित करते रहे। बिल्कुल सही बात आपने कही है महबूब दुकानदार जी, कि जो ये पुरानी यादें होती हैं या पुराना समय होता है ना, वो हमें काफी कुछ सिखा जाता है। इतना कुछ सिखा जाता है कि लगता है हम बस इन्हीं उसमें घूम रहे हैं, और जिंदगी ना ऐसी ही होती है। श्रोताओं, जिंदगी को हम जितने अच्छे से जिए, जितने अच्छे से वो करें, वो हमें और ज्यादा हसीन लगने लगती है। खुशनुमा जितना होकर हम जिएंगे, उसको हम खुश होकर जी पाएंगे, है ना। तो पुरानी यादें कुरे दिए और लिखकर भेज दीजिए, आगे पढ़ेंगे आपके मैसेज। लेकिन उससे पहले सुनवा देते हैं आपको ये अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म ब्रदर्स से। इसे आवाज़ दी है नीतू मोहन और सोनू निगम ने।

0: श्रोताओं, भी आपने सुना फिल्म ब्रदर्स का ये गीत, जिसे आवाज दी थी नीति मोहन और सोनू निगम ने। गीत लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत था अजय अतुल का। और अब आपको सुनवाते हैं ये जरूरी संदेश।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
0: एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का उनके अपने कार्यक्रम जिंदगी लाइव में, जो वो सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोताओं, आज का हमारा विषय है आपके वो सपने, इच्छाएं या फिर हुनर जो आप पूरा करना चाहते थे लेकिन पीछे छूट गया है, या यूं कहें कि आगे आप उसको जारी भी रखना चाहते हैं, या आपका कोई सपना है तो हमें जरूर बताएं। नंबर है 9457078288। तो जल्दी से भेज दीजिए हमें मैसेज और देख लेते हैं अगला मैसेज हमें कौन लिखकर भेज रहे हैं। ये मैसेज

मिला है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्लापुर उत्तर प्रदेश से। लिखने वाले हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। ये अपनी बात की शुरुआत चार लाइनों से कर रहे हैं। मंजिल पर पहुंचना है तो कभी राह के कांटों से मत घबराना, क्योंकि कांटे ही तो बढ़ाते हैं रफ्तार हमारे कदमों की। क्या बात है मोहम्मद फरमान जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि जिंदराओं में और जिंदगी में कांटे लगते ही रहते हैं, तो उनसे घबराना तो बिल्कुल नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। अगर इन छोटे मोटे कांटों से हम डरेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। आगे लिखते हैं, सपना तो हर आदमी के होते हैं, अधूरे ही रह जाते हैं। हमारा सपना था कि हम आकाशवाणी के उद्घोषक बने, पर नहीं बन पाए, पर हमने हार नहीं मानी, कोशिश कर रहे हैं और अपने माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है फरमान जी की, आप खिदमत कर रहे हैं। वही हमने कहा कि अगर सपने पूरे नहीं होते हैं तो हमें नहीं पता ऊपर वाले ने हमारे लिए क्या हसीन जिंदगी सोच कर रखी है ना। तो श्रोताओं, वो सपने जो कभी हमारे लिए सबसे जरूरी हुआ करते थे और उन पर यादों की धूल जम गई है, तो उन यादों को फिर से ताजा करते हैं और चलते हैं उन कोरे सपनों को फिर से जीने, है ना। तो चलिए सुनवा देते हैं ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म सूर्यवंशम से। इसे आवाजें दी हैं कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल ने। संगीत अनु मलिक का है और गीतकार हैं समीर।

हार्दिक अभिनंदन। हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में एक बार फिर से जो है जिंदगी लाइव, और हमारे श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोताओं, जिंदगी लाइव में आज का हमारा विषय है हमारे वो अधूरे सपने, वो ख्वाब, वो इच्छाएं और वो हुनर जो जिंदगी में कहीं पीछे छूट गया है, आज करते हैं उन्हीं को याद। तो देख लेते हैं अगला मैसेज किन्होंने भेजा है। ये अगला मैसेज हमें मिला है जसपुर रोड दुल्हापुर जिला मुरादाबाद से। लिखने वाले हैं महबूब दुकानदार, बेगम साहिबा महबूब, मोहम्मद समीर अंसारी, मोहम्मद वारिस अंसारी और बेटी अलशिफा अंसारी। ये लिखते हैं जीवन के सफर में सपने और यादें दो ऐसे पहलू हैं जो हमें वर्तमान को पूरी तरह प्रभावित करते हैं। सपनों की ताकत, जो सपने हम खुली आंखों से देखते हैं वे हमें हर मुश्किल परिस्थिति से लड़ने की ताकत देते हैं। जब विचार अच्छे और नकारात्मक सकारात्मक हो तो वे एक मजबूत दिशा प्रदान करते हैं। जी हाँ महबूब दुकानदार जी, आपने बहुत सही कहा कि जब उन्हें दिशा सही मिल जाती है तो बातें भी सही बन जाती हैं। और श्रोताओं, हमारे जो बेहद खास हमसे बिछड़ जाते हैं ना, जो कभी हमारी जिंदगी हुआ करते थे या जिंदगी का अहम हिस्सा होते थे, वो आज दूर दूर तक हमारी जिंदगी में नहीं है, लेकिन उनकी याद आज भी दिल में कहीं टीस सी उठ जाती है जब उनकी याद आती है, और वो धुंधली यादें फिर से ताजा हो जाती हैं। श्रोताओं, मिलना हर किसी की आज जरूरी नहीं होता, क्योंकि मिलने को तो हीर रांझा, सोनी महिवा, लैला मजनू भी नहीं मिले, लेकिन आज भी लोग उन्हें भूल नहीं पाए हैं। ऐसे ही हमारे अपने भी हमारी ज़िंदगी में होते हैं जो कभी हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी है, लेकिन वक्त और परिस्थिति के कारण वो हमसे या हम उनसे दूर हो जाते हैं, है ना। तो चलिए सुनवा देते हैं ये अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म सत्या से। इसे आवाज़ दी है आशा भोसले और सुरेश वाडेकर ने। गीत है गुलजार का और संगीतकार है विशाल डडलानी।

ये श्रोताओं फिर से हाजिर है लेकर आपका अपना कार्यक्रम जिंदगी लाइव। और आज हम बात कर रहे हैं सपनों की, उन यादों की, उन बातों की जो कहीं हमारे दिल के किसी कोने में धुंधली पड़ गई है, तो उन्हें ताजा करते हैं। आज देख लेते हैं ये अगला मैसेज जो हमारे पास आया है ग्राम सतारवाला से। लिखने वाले हैं सोनू चौधरी। ये लिखते हैं, जिंदगी बेहद खूबसूरत है और कब गुजर जाती है पता ही नहीं चलता, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एहसास होता है कि क्या क्या पीछे छूट गया है, क्या बदल गया है, क्योंकि बदला हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। यादें छूट जाती हैं और समय गुजर जाता है। जी हाँ श्रोताओं, ये जो हमारे श्रोता सोनू चौधरी ने लिखा है, बहुत अच्छी बात लिखी है कि जो वक्त गुजर जाता है वो वापस नहीं आता और किसी के लिए नहीं रुकता है। अगर ऐसे गुजरे वक्त के बाद भी अब आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं तो मतलब आप अपनी ज़िंदगी को खुलकर जी रहे हैं। और श्रोताओं, वक्त चाहे जैसा भी हो, वो कहते हैं ना, जो चाहते हैं वो सब थोड़े ही मिल जाता है, लेकिन जो चाहिए उसे लेने की ईमानदार कोशिश भी ज़रूर करनी चाहिए। क्या पता वो पूरी हो जाए, और पूरी ना हो तो कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। अगर हमारे लिए वो होगा जो हमारे लिए होगा वो हमें ज़रूर मिलेगा, और क्या पता ऊपर वाले ने कुछ बेहद खास सोचा हो हमारे लिए, है ना। तो निराश बिल्कुल नहीं होना है श्रोताओं, और चलिए सुनवा देते हैं आपको ये अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म खूबसूरत से। इसे आवाज़ दी है कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति ने, संगीत है जतिन ललित का और गीतकार है संजय छैल।

कार्लो कंपनी में अकाउंट डिपार्टमेंट में जॉब कर ली। मैंने कंपनी में आगे बढ़ने के लिए एमकॉम प्राइवेट कर लिया। मैं नगीना से मुरादाबाद पेपर देने जाता था, जो मैंने अच्छे से मार्क्स दे कर लिया। फिर मैंने 5 साल जॉब करके छोड़ दी। फिर शॉप की जो सो ही चली। मैं अच्छा क्रिकेट व फुटबॉल खेलता था। मैंने इसमें भी आगे बढ़ना चाहा था, लेकिन बढ़ ना सका क्योंकि कोई मेरा गॉडफादर नहीं था। लेकिन सबका जिम्मेदार मैं हूँ, सब डिसीजन मेरे ही थे, मगर मेरे विचारों ने मुझे जाने नहीं, जीने नहीं दिया। मैं मन से सदा आज तक संतुष्ट रहा हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी की ट्रेन पतली सड़क से निकालता रहा। बेटी को इंजीनियर बनाया था उसने। इन्फोसिस इट कंपनी से 3 साल जॉब करके बी टेक की डिग्री, आगे लिख रहे हैं, बी टेक की डिग्री ख़राब कर ली, जिसे 8 साल हो गए थे। आज वो हाउसवाइफ है, लड़का बीकॉम है। लड़की को मैंने मना किया कि जॉब छोड़ दे, छोड़ने को, लेकिन उसने कहा, मैं वो नहीं मानी और पूरे बिजनौर में सेकंड नंबर आने पर भी 10th और 12th में रहती थी। देखिए अनिल विनोचा जी, आपने अपनी सारी ज़िंदगी की परतें खोल कर रख दी हैं कि आप क्या करना चाहते थे और आज आप क्या हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि ज़िंदगी जो सोचती है ना, वो बड़ा हसीन होता है। आप नहीं बन पाए सीए, लेकिन आप जो कर रहे हैं, हम पूरी उम्मीद करते हैं उसमें बहुत खुश होंगे और आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। साथ ही आपकी बेटी के लिए भी हम कहना चाहेंगे कि हर किसी की अपनी चॉइस होती है। कुछ लोगों का मन करता है कि हम बाहर जाकर बिजनेस करें, जॉब करें, सेटल हो जाएं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो फैमिलीज को भी साथ में लेकर चलते हैं कि नहीं, मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, उनके लिए कुछ अच्छा करते रहना है और हाउसवाइफ बन जाना है। तो अनिल विनोचा जी, आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि उसने अपनी डिग्री खराब कर ली है। आपको लगता होगा ऐसा, लेकिन उनके दिल से पूछ कर देखिए कि जब वो अपने के साथ बैठती होंगी, उनके लिए कुछ करती होंगी, वो छोटी छोटी बातें उनको कितना सुकून दे जाती हैं, है ना। तो देख लेते हैं, चलिए अगला मैसेज जो हमें मिला है, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से लिखने वाले हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। ये लिखते हैं, सपने सिर्फ रात में ही नहीं, दिन में भी देखे जाते हैं। उन्हें पूरा करने की इच्छा ही असल जिंदगी होती है। बिल्कुल सही कहा मुकेश कश्यप जी आपने। सपने तो वैसे होते हैं कि वो रात को सोने भी नहीं देते हैं। जब हमें कुछ करना होता है ना, तो वो सपने सोकर नहीं देखे जाते हैं, वो जाग कर देखे जाते हैं कि हाँ, हमें जिंदगी में कुछ करना है। और कुछ करते करते हम कहीं और भी निकल जाते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ, हमें ये करना है ज़िंदगी। जब हम वो बोलते हैं ना कि अपनी एक यंग एज में होते हैं, तो हम बहुत सारे सपने लेकर चलते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन हमारी ज़िंदगी हमें कहीं से कहीं पहुंचा देती है। कभी हम फर्श पर होते हैं, तो कभी अर्श पर होते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो ज़िंदगी है, वो बदलती रहती है। और सपने अगर ना देखें ना, तो ज़िंदगी का मज़ा नहीं रहता है। तो सपने देखना तो बिल्कुल मत छोड़िए, पूरे हो नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन हम शिद्दत से उन्हें पूरा करने की कोशिश तो कर सकते हैं ना, है ना। तो चलिए सुनवा देते हैं ये अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म कौन है जो सपनों में आया से। इसे आवाज दी है उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल ने। गीत समीर का है और संगीतकार है निखिल विनय।

तो श्रोताओं देख लेते हैं कार्यक्रम के अंतिम मैसेज जो हमें लिखकर भेज रहे हैं। संभाजी चौक सिडको न्यू नांदेड़ महाराष्ट्र से सुधाकर गायकवाड़ और उनका परिवार, ये लिखते हैं। मैडम जी सादर नमस्कार। अधूरे सपने जो मेरा सपना था वो अधूरा रह गया। मैं फोर्स में नौकरी करना चाहता था, बहुत बार कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुआ। कारण था मेरी हाइट 2 इंच कम रहती, बार बार वही सताती थी। आखिर वो पीछा छोड़ दिया और मेरे दोस्त आज ज्वाइन हैं। उनको देखकर लगता है मेरा सपना अधूरा रह गया। जी सुधाकर गायकवाड़ जी, हम समझ सकते हैं क्योंकि ये सपना ना, हम आपसे बताएं तो मतलब इंडिया के बहुत युवा देखते हैं अपने यंग एज में कि हम उस फोर्स में पहुंच पाए, अपने देश की रक्षा कर पाए, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ नहीं पहुंच पाते हैं, कुछ सीमाएं, कुछ जो मापदंड होते हैं उनकी वजह से रह जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल सुनी हो गई है। ऊपर वाले ने आपको उससे भी हसीन दिया है। हाँ, वो देखकर लगता है कि ये रह गया है, लेकिन आपने हमसे शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यही कहेंगे, जो छूट गया है उसे पीछे मुड़कर मत देखिए, जो आपके पास है वो बेहद हसीन है। आपने हमसे अपनी बात साझा की, उसके लिए धन्यवाद। और ये देख लेते हैं अंतिम मैसेज जो हमें लिखकर भेजा है मोहल्ला हलवायान शेरकोट से, जिला बिजनौर से। लिखने वाले हैं मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजा रानी और हिना कौसर। लिख रहे हैं आपको हमारा प्यार भरा सलाम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं हम, और उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी श्रोता भी बहुत अच्छे होंगे। ये लिख रहे हैं, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे हंसकर मुस्कुराकर जीना चाहिए। जितना है उसमें खुश रहें, सब्र करें, हंसते हंसते कट जाएं रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। बिल्कुल सही कहा वकार फरीदी जी आपने, क्योंकि जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वो किसी से कम नहीं, जो नहीं है वो एक ख्वाब है, और जो है वो लाजवाब है। जी हाँ श्रोतम, जो है वो लाजवाब है। और ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमारा कुछ पीछे छूट गया है, बल्कि ये सोचिए जो गया है वो हसीन था, लेकिन जो आया है वो लाजवाब है। और हम खुश नसीब हैं कि जो हमारे पास है, कुछ लोगों को वो भी सपना लगता है। सोच कर देखिए इस बारे में ज़रूर, है ना। और हम छोड़ जाते हैं आपको इस अंतिम गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म भीगी पलकों से। इसे आवाज़ दी आशा भोसले और अमित कुमार ने, गीत लिखा है एमएस हमवत ने, और संगीत है जुगल किशोर और तिलक राज का। तो छोड़ जाते हैं आपको इस प्यारे से गीत के साथ।

फिल्म भीगी पलकों के इसी गीत के साथ कार्यक्रम जिंदगी लाइव संपन्न करने की अपनी दोस्त अलका सिंह को दीजिए इजाजत। श्रोताओं नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे जिंदगी लाइव, हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 1 बजने को है, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज।

0: नरेंद्र मोदी इस समय आंध्र प्रदेश में हैं और वे भोगमरमपुरम में सभा को संबोधित कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: विशेषता है कि उन्होंने दो क्षितिजों को छुआ है, एक तरफ ऊंची आसमान को छूने वाली व्यवस्था एयरपोर्ट का निर्माण और दूसरी तरफ मेरे यहाँ के आदिवासी बहनों के द्वारा नृत्य का विश्व रिकॉर्ड बनाना। मैं चंद्रबाबू के इस विजन को विशेष रूप से सराहना करता हूँ।
2: मित्रों,
3: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने यात्री टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया और ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री ने

0: 6,500 से अधिक आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक थिमसा नृत्य प्रस्तुति देखी, जो उत्तरी आंध्र की जीवंत आदिवासी संस्कृति को दर्शाती है। श्री मोदी आज राज्य में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरु पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फीथिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम के ओर से यहां शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम कर दी हैं। कटौती के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत 2,738 रुपए हो गई है। वहीं कोलकाता में 2,872 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 2,691 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 2,906 रुपए हो गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में पिछले महीने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और ये 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये जुलाई 2025 में 1,83,065 करोड़ रुपए के मुकाबले 15.4% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू जीएसटी राजस्व 1,44,695 करोड़ रुपए रहा। ये एक वर्ष पहले की तुलना में 10.1% अधिक है। तेलंगाना में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के लिए निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें बूथ स्तर के अधिकारी 10 अगस्त तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा अब 17 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 17 अगस्त से 16 सितंबर तक जारी रहेंगी, जबकि उनका निपटान 15 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम में आतंकी हमले में घायल दूसरे श्रमिक की आज सवेरे मृत्यु हो गई, जिससे मृतकों की संख्या 2 हो गई है। कल शाम ईंट भट्टे पर काम कर रहे इन 2 श्रमिकों पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। घटना के तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं कुलगाम जिला प्रशासन की ओर से 6-6 लाख रुपए की तत्काल सहायता भी दी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाले पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Greenfield Aluri Sitaram Raju International Airport at Bhogapuram in Vijayanagaram district of Andhra Pradesh today. On his arrival at the airport, the Prime Minister was received by Andhra Pradesh Governor S. Abdul Nazir, Chief Minister N. Chandrababu Naidu, Deputy Chief Minister Pawan Kalyan and other dignitaries. The Prime Minister inaugurated the passenger terminal building and took a walkthrough of the Greenfield Airport. Mr. Modi also reviewed the airport's state-of-the-art passenger facilities and was briefed by the officials on its design, advanced technology, master plan and future expansion as an aviation hub. Prime Minister Modi also witnessed a traditional Thimsa dance performed by more than 13,500 tribal women, highlighting the vibrant culture of North Andhra. We'll now go live to the Prime Minister's address.

0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में कल हुई मरकजी काबीना की मीटिंग में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। इस मुद्दत के दौरान इस स्कीम के लिए कुल 3,15,000 करोड़ रुपए की मालियाती रकम की मंजूरी दी गई। मरकजी इतलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस स्कीम के जरिए अहल किसान खानदानों को डीबीटी के जरिए बरवक्त और शफाफ आमदनी की मदद फराहम की जा रही है, जिससे किसानों को जरई सरमायाकारी बढ़ाने और उनकी रोजी रोटी को मजबूत बनाने में मदद मिल रही है।
1: पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है। इस प्रोग्राम में देश के किसानों को क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए इनकम सपोर्ट दिया जाता है। इसमें पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्पर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है।
0: इसके अलावा काबीना ने खेलो इंडिया की तौसीई स्कीम को मंजूरी दी है और 2026-27 से 2030-31 की मुद्दत के लिए 36,441 करोड़ रुपए के मुश्तरका अखराजात के साथ कौमी खेलों की फेडरेशनों के लिए तावुन में इजाफा किया। मंजूर शुदा बजट पिछली खेलो इंडिया स्कीम से लगभग 8 गुना है। लखनऊ के रिहायशी और बैनुल अक्वामी पैरा बैडमिंटन में सोने के तमगे समेत मुतअद्दिद तमगे हासिल करने वाले अबू हुबैदा ने हुकूमत के फैसले की तारीफ की है। उन्होंने कहा,
2: मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल महासंघों के ऐतिहासिक बजट बढ़ाना देश के लाखों खिलाड़ियों विशेषकर पैरा खिलाड़ियों के लिए एक नई उम्मीद और नई शक्ति लेकर आया है।
0: मरकजी काबीना ने 5,700 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दी। काबीना की मीटिंग के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना आबी जखैर और अंदरूने मुल्क आबी जखैर के इख्तराए इस्तेमालात के जरिए मुल्क की साफ तवानाई की सलाहियत को वसत देगी। जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत किसानों की खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नफरत अंगेज तकरीर और नफरत से कोई मसला हल नहीं होता। उन्होंने गुमराह नौजवानों से हमदर्दी पैदा करने की अपील करते हुए कहा कि कौम की तामीर और मुल्क की मफाद में उन्हें सजा देने के बजाय राह रास्त पर लाया जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो पैगाम में वज़ीरे आज़म ने जंतर मंतर के हालिया वाक़े का हवाला दिया, जहां उनके और उनकी मरहूम वालिदा के खिलाफ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। उन्होंने कहा कि यह वाक़या मुल्क और दुनिया भर के लोगों ने देखा है और मुआशरे में इस तरह के रवैये पर गुस्सा और मायूसी फितरी है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उनकी इस्लाह का दौर भी होता है। वज़ीरे आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में हर घर तिरंगा मुहिम तकसीम के हौलनाक यादगारी दिन और यौम आज़ादी की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने रियासत के लोगों पर जोर दिया कि वो हर घर तिरंगा मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इस साल 50 मिलियन घरों पर कौमी परचम लहराने का हदफ मुकर्रर करें। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण, उपलब्धता एवं वितरण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा स्वयं सहायता समूहों, खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थाओं, एमएसएमई इकाइयों एवं स्थानीय उत्पादन केंद्रों को हर घर तिरंगा अभियान से जोड़ने के निर्देश दिए। श्री योगी ने कहा कि राशन की दुकानों, ग्राम पंचायत भवनों, जनसेवा केंद्रों, तहसीलों, विकासखंड कार्यालयों, विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, डाकघरों, पेट्रोल पंपों एवं अन्य निर्धारित केंद्रों के माध्यम से आम जन को राष्ट्रीय ध्वज सहज उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि आगामी 14 एवं 15 अगस्त को प्रदेश के सभी सिनेमा घरों में राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान का अनिवार्य प्रसारण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस तथा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के सभी कार्यक्रम पूरे सम्मान, गरिमा एवं राष्ट्रभक्ति के भाव के साथ आयोजित किए जाएं।
0: श्रावण के मुकदस महीने के दौरान रियासत भर में शिव मंदिरों में अकीदतमंदों और यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। सुबह से ही अकीदतमंद वाराणसी के श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में गंगा के पानी के साथ बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। दरियासना कांवड़ यात्रा के लिए रियासत के मुख्तलिफ अजला में रास्तों का रुख मोड़ दिया गया है। और महकमे मौसमियात ने आज से शुरू होने वाले अगले 5 दिनों तक रियासत के मशरकी और मगरबी इलाकों के कई अजला में हल्की बारिश और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। उधर पहाड़ों में मुसलसल बारिश और हरिद्वार, बिजनौर और नरौरा बैराजों से पानी छोड़ने की वजह से बदायूं में दरियाए कछला, गंगा की सतह खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है, जिसके नतीजे में जिले के 36 देहात ज़ेर-ए-आब हो गए हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
4: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। दिन के 1:15 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है महिला जगत।

पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। सोहनलाल द्विवेदी जी की इन सुंदर पंक्तियों के साथ स्वीकार करें हमारा नमस्कार। बहनों, आप लोग सोच रही होंगी कि आज महिलाओं के कार्यक्रम में स्कूल टाइम की ये कविता की पंक्तियां क्यों याद दिला रहे हैं। तो हम कहना चाहते हैं आपसे कि इन पंक्तियों में प्रकृति की सीख छुपी है। सच में बहनों, प्रकृति से हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। पर्वतों, झरनों, नदियों में जीवन जीने के बड़े संदेश हमें मिलते हैं, और इसीलिए कुछ लोग प्रकृति के रहस्यों को समझने में अपने जीवन का हिस्सा ही बना लेते हैं। अब पर्वतारोही को ही देख लीजिए। ये लोग आत्मविश्वास, शारीरिक फिटनेस, मानसिक दृढ़ता को मजबूत करने के साथ ही प्रकृति से जुड़ने के लिए पर्वतारोहण जैसे साहसिक गतिविधियां करते हैं, और इस साहस और जोखिम भरे खेल में हमारी नारी शक्ति भी पीछे नहीं है। बछेंद्री पाल, अरुणिमा सिंह जैसे अनेक नाम हैं जिन्होंने एवरेस्ट पर फतेह हासिल की, और साथ ही अभी हाल ही में मई 2026 में हमारी बीएसएफ की और आईटीबीपी की महिला जवानों ने एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर एक नया ऐतिहासिक पल हमको दिया है। उन्होंने न केवल यहाँ पर तिरंगा फहराया बल्कि वंदे मातरम गीत का भी गाकर ऐतिहासिक पल हमको दिए, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने इस चोटी पर जाकर वहाँ जो फैला हुआ कूड़ा था, वहाँ जितनी भी गंदगी थी उसे एकत्रित करके वो अपने साथ लेकर भी आई। तो एक बहुत अच्छा उदाहरण है प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी व्यक्त करने का। आज पर्वतारोहियों को हम याद इसलिए भी कर रहे हैं कि आज का दिन यानी कि 1 अगस्त राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस के रूप में जाना जाता है, जो कि हमारे पर्वतारोहियों के लिए खास दिन है। यूं तो इसकी शुरुआत 1 अगस्त को मूल रूप से अमेरिका से हुई थी, लेकिन अब दुनिया के अनेक हिस्सों में पर्वतारोहण के साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए, पर्वतों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए और साथ ही कठिन गतिविधियों में असाधारण साहस, धैर्य और उपलब्धियों को सम्मान देने के लिए भी ये दिन जाना जाता है। और आज हम भी अपने आधी आबादी क्रम में पर्वतारोहियों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं, और आधी आबादी में एक पर्वतारोही जो कि महिला है, बहुत अधिक उम्र में उन्होंने इससे नाता जोड़ा, उसके संघर्षों की कहानी आप तक साझा कर रहे हैं।

दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों को फतेह करना एक रोमांचक उपलब्धि है। यहाँ तक पहुँचना जितना जोखिम भरा है उतना ही उत्साहजनक अनुभव होता है खतरों का सामना करते हुए इस पर जीत हासिल करना। ऐसे ही जोखिम और खतरों को पार कर 2011 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर जीत हासिल की जमशेदपुर झारखंड की प्रेमलता अग्रवाल ने। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली वो सर्वाधिक आयु की भारतीय महिला पर्वतारोही बनी। जब वो माउंट एवरेस्ट पर गईं तो उस समय उन्होंने लगभग 47 की उम्र पार कर ली थी और 50 साल की उम्र में उन्होंने 2013 में एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया। 2013 में प्रेमलता अग्रवाल ने 7 समिट्स यानी कि दुनिया के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई। प्रेमलता को बचपन से ही खेलने का शौक तो था लेकिन एडवेंचर स्पोर्ट्स से वो कोसों दूर थी। ये सब तो उन्होंने शादी के काफी साल बाद शुरू किया। लगभग 34 साल की उम्र में उन्होंने पर्वतारोहण से नाता जोड़ा। अपने बारे में बताती प्रेमलता अग्रवाल।

0: कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जिसके बारे में आपने कल्पना भी न की हो। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। साधारण गृहिणी अपने पारिवारिक बंधनों से बंधी हुई, मुझे क्या पता था एक दिन रसोई घर से निकलकर स्पोर्ट्स से जुड़ जाऊंगी जिसमें बहुत ही साहस और शारीरिक क्षमता की जरूरत हो, माउंटेनियरिंग।
1: प्रेमलता अग्रवाल जी की उम्र जब 18 साल की थी तो उनकी शादी हो गई थी और 24 साल तक आते आते वो दो बेटियों की माँ बनी। बछेंद्री पाल उनकी गुरु हैं जिनसे प्रेरित होकर उन्होंने एडवेंचर से नाता जोड़ा और वो एक आम गृहिणी से खास बन गई।
0: एडवेंचर से तो मेरा दूर दूर का नाता रिश्ता नहीं था। 18 साल की उम्र में मेरी शादी तय हो गई। एक साल के अंदर पहली बेटी हुई, 4 साढ़े 4 साल बाद दूसरी बेटी हो गई और मेरी पूरी दुनिया बच्चों में सिमट कर रह गई। मैं उनको जमशेदपुर के एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लेके जाती थी। इसी दौरान मेरी मुलाकात बचेंद्री पाल जी से हुई। उनके ऑफिस में गई तो उनके एवरेस्ट के फोटोग्राफ्स देखकर मैं बहुत प्रभावित हुई और मैं चाहती थी मैं अपनी बेटियों को भी एडवेंचर स्पोर्ट्स में डालूं। तब उन्होंने कहा, बेटियां ही क्यों, आप भी इस स्पोर्ट्स में आ सकती है। मैंने आश्चर्य से कहा, मैं और एडवेंचर का स्पोर्ट्स, दो बेटियों की माँ इस उम्र में परिवार की जिम्मेवारी। उन्होंने कहा, अगर कुछ पाना है लाइफ में तो उम्र आगे नहीं आती। और उनकी यही बात मेरे लिए प्रेरणा बन गई और मेरी बचपन की अधूरी अभिलाषा फिर से जीवंत हो गई। मैं बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स करने के लिए दार्जिलिंग गई। जब वहां गई तो मैंने देखा कि वहां तो मेरी बेटी की उम्र की लड़कियां हैं और वहां के अधिकारी ने जब मुझे देखा और कहा, आप बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स करने आई है, आपको पता है ये कोर्स कैसे करते हैं? और मैंने तो डर के मारे बताया ही नहीं कि मेरी शादी हो चुकी है और दो बच्चे भी हैं। तो मैंने कहा, अब मैं इसमें अपना पूरा 100% लगा दूंगी। मैंने जी जान लगा दी उसमें। बहुत से लोग वापस चले गए, 50 लोग में केवल 20-21 लोग बचे थे और मुझे बेस्ट ट्रेनिंग अवार्ड मिला।
1: प्रेमलता जो कि एक गृहिणी, दो बच्चों की माँ और बढ़ती उम्र में माउंटेनिंग आसान नहीं थी, लेकिन परिवार के सहयोग और उनके गुरु बछेंद्री पाल के साथ ने उनका ये रास्ता आसान बना दिया। प्रेमलता को पर्वतारोहण के क्षेत्र में योगदान के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें 2013 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित

0: आधी आबादी और इस संदेश के बाद कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। बहनों, माँ बनना एक स्त्री के लिए जीवन में बेहद सुखद अनुभव होता है और इस अनुभव को और भी सुंदर बनाता है माँ का पहला स्पर्श और शिशु का पहला आहार यानी कि स्तनपान। नवजात शिशु के लिए माँ का दूध केवल भोजन नहीं बल्कि अमृत समान है, जो शिशु को पोषण के साथ रोगों से सुरक्षा और माँ के स्नेह का अनमोल उपहार भी देता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी बच्चे के जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीने तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। इसलिए 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में जाना जाता है। और आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि स्तनपान क्यों माँ और शिशु दोनों के लिए वरदान है, इससे जुड़े भ्रम, सही जानकारी क्या है। और जानकारी दे रही हैं स्पेशलिस्ट फूड एंड न्यूट्रिशन डॉक्टर तरुबी अग्रवाल, सहायक अध्यापिका महामाया राजकीय महाविद्यालय शेरकोट जिला बिजनौर से। माँ का दूध प्रकृति का वो अनुपम उपहार है जिसका कोई विकल्प नहीं। ये शिशु को स्वस्थ जीवन की शुरुआत तो देता ही है, साथ ही माँ के स्वास्थ्य की रक्षा भी करता है। इसलिए हम सभी स्तनपान के प्रति जागरूकता बढ़ाएं और जानें कि स्तनपान माँ और शिशु दोनों के लिए वरदान है, जिसमें आज हमारे साथ डॉक्टर तरुबी अग्रवाल, एक्सपर्ट्स फूड एंड न्यूट्रिशन। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए आपसे सबसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा कि आखिर स्तनपान क्यों जरूरी है।
1: सबसे पहले मैम, मुझे इसमें आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि इस बार 2026 का जो ब्रेस्ट फीडिंग हमारा वीक है 1 से 7 अगस्त तक, उसका जो थीम रखा गया है प्रायोरिटाइज ब्रेस्ट फीडिंग सस्टेनेबल सपोर्ट सिस्टम। प्रायोरिटाइज करना यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग स्तनपान को प्राथमिकता देना। हम सस्टेनेबल सपोर्ट सिस्टम को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी भी चीज की जो नींव है, चाहे वो दुनिया में कोई भी चीज है, हम एक मकान को ही एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अगर उसकी नींव ही मजबूती से रखी जाएगी तो वो काफी लंबे समय तक अच्छा चलेगा। इसी तरीके से अगर एक बच्चा जिसने इस दुनिया में अभी अभी जन्म लिया है, अगर उसको माँ के दूध से उसको पोषित किया जाए, उस माँ की गोद से उसकी शुरुआत हो, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी चीज उस बच्चे के लिए कोई नहीं हो सकती। उसकी एक मजबूती से नींव रखने में और भविष्य में उसको एक स्वस्थ नागरिक बनने में उसको सहायक करे।
0: तो जन्म के तुरंत बाद स्तनपान करवाना शुरू कर देना चाहिए बच्चे को?
1: बिल्कुल मैम, जन्म के तुरंत बाद यानी कि जैसे ही बच्चा हुआ है, 0 से 6 माह तक कंटिन्यूसली लगातार माँ को केवल और केवल अपना ही दूध बच्चे को पिलाना है। यहाँ तक कि माँ को किसी भी प्रकार का पानी, कोई भी टॉनिक कुछ नहीं देना। अगर कोई दवाई या कोई मेडिसिन है तो विदाउट डॉक्टर की रिकमेंडेशन के नहीं उस बच्चे को देनी।
0: दूध से ही बच्चे को मतलब पानी या और भी जरूरत है वो सारी पूरी हो
1: जाती? बिल्कुल मैम, दूध से ही पूरी हो जाती है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो स्तनपान है वो बच्चे का एक कंप्लीट फूड है, बैलेंस्ड डाइट है। उसमें हर प्रकार का न्यूट्रिशन है, सारे न्यूट्रिशन जो भी न्यूट्रिएंट्स उसमें होने चाहिए जो कि बच्चे के लिए जरूरी है, वो सब उसमें बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि ब्रेस्ट फीडिंग में एंटीबॉडीज होती है जो कि बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। और इसमें एक लैक्टोफेरिन नाम का पदार्थ भी होता है और बिफिडस फैक्टर, जिसको प्रीबायोटिक बिफिडस फैक्टर कहते हैं, ये भी एक बच्चे की जो इंटेस्टाइन है, जो स्टमक है, उसमें एक तरीके से बिल्कुल एक प्रमोट करता है कि नेचुरल गट फ्लोरा, जितनी अच्छी उसकी गट फ्लोरा होगी उतना अच्छा ये होगा कि उसको डाइजेशन अच्छा होगा, कोई इन्फेक्शन उसकी बॉडी में इजिली एंटर नहीं कर सकते।
0: एक बात यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे मैम हम कि आपने कहा और हम जानते हैं जैसे कि बच्चे के जन्म लेते ही उसको फीडिंग जरूरी है, माँ का दूध पिलाना जरूरी है
1: जी।
0: लेकिन अगर हम सिजेरियन जो बच्चे होते हैं और उस समय महिलाओं की जो कंडीशन होती है वो सही भी नहीं रहती है, स्वस्थ नहीं रहती है, या यूं कहें कि वो दूध पिलाने में सक्षम नहीं होती है उस वक्त
1: जी, जी, जी।
0: तो जो सिजेरियन डिलीवरीज होती हैं उसमें कितने समय बाद हम बच्चे को दूध दे सकते हैं?
1: अकॉर्डिंग टू NIN गाइडलाइंस जो कि हैदराबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन या यूनिसेफ के अकॉर्डिंग, सिजेरियन या नॉर्मल डिलीवरी जिन माताओं की होती है उनके लिए कोई भी अलग से ऐसा कोई मानदंड नहीं दे रखा कि कितनी देर बाद उनको देना है। एक नॉर्मल ये है 1 घंटे के भीतर भी आप, चाहे वो सिजेरियन हुआ है चाहे वो आपका नॉर्मल है डिलीवरी, आप बच्चे को दूध माँ को पिलाना आवश्यक है 1 घंटे के अंदर। और इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी अगर सिजेरियन में है चाहे नॉर्मल में है, क्योंकि नॉर्मल के बाद भी एक माँ जो है वो बहुत ज्यादा वीकनेस

0: महसूस करती है, तो उस समय चाहे वो परिवार है या हॉस्पिटल के लोग हैं, उनको उस समय में हेल्प करनी होगी, मदद करनी होगी कि माँ किस तरीके से बच्चे को गोदी में ले और किस तरीके से उसको प्रॉपरली हैंडल करके दूध पिलाए। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि डिलीवरी के बाद जो 3 से 4 दिन होते हैं उसमें मैम कोलेस्ट्रॉल नाम का एक पीला गाढ़ा दूध सीक्रेट होता है। अगर वही बच्चे को नहीं दिया जाएगा तो वही है कि उसकी 14% जो उसके सर्वाइवल के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, ऐसा रिसर्च बताती हैं।
1: तो जन्म के पहले 1 घंटे के अंदर ही नहीं, वो 3-4 दिन तक मिलता है बच्चे।
0: हाँ हाँ, लेकिन आपको शुरुआत जो है वो पहले घंटे से ही शुरू कर देनी है, उस गाढ़े दूध को निकाल के डिस्कार्ड नहीं करना, उसको फेंकना नहीं है कि भाई हम नहीं पिला सकते, कैसे भी करके माँ को हिम्मत करनी है और बच्चे को उस दूध को पिलाना है जिससे उसकी भविष्य के लिए उसकी नींव मजबूत हो और वो बीमारियों से लड़ सके।
1: अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे ने दूध पी लिया लेकिन उसके बाद भी बच्चा लगातार कई बार रोता रहता है, तो क्या ये संकेत है कि माँ का दूध बच्चे के लिए पर्याप्त नहीं हुआ है?
0: मैम ऐसा बहुत कम होता है कि अगर बच्चे का पेट भर जाए और उसके बाद भी अगर वो रो रहा है, यहाँ पे 2 चीजें हो सकती हैं, या तो बच्चे का प्रॉपरली उसको पेट नहीं भरा, और अगर पेट भरने के बाद भी अगर वो रो रहा है तो इसके मतलब उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है या कोई भी ऐसी परेशानी है जो कि उसको अनकंफर्टेबल महसूस करा रही है जिस वजह से वो लगातार रो रहा है।
1: ये तो बात की हमने बच्चे की, अब उन महिलाओं की बात करते हैं जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है, उनके लिए किस तरह से फायदेमंद होता है अपने बच्चे के लिए दूध पिलाना?
0: तो आज आपका ये टॉपिक यही है कि माँ का दूध बच्चे और माँ दोनों के लिए वरदान। तो हमने अभी तक बात करी कि नवजात शिशु के लिए ये कितना फायदेमंद है, अभी हम बात करने वाले हैं कि माताओं के लिए ये कितना मतलब बेनिफिशियल है।
1: जी।
0: तो सबसे पहले मैं बताऊंगी, आजकल हम लोग बहुत मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में, आर्टिकल्स में पढ़ रहे हैं कि जो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस हैं वो महिलाओं में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो 0 से 6 माह तक बच्चे को कंटिन्यूअसली डॉक्टर से पूछ कर कि कैसे बच्चे को गोदी में लेना है और ब्रेस्ट को कैसे पूरा अच्छे से एम्प्टी होने तक बच्चे को पिलाना है, जब एक ब्रेस्ट अच्छे से खाली हो जाए तब दूसरे ब्रेस्ट में बच्चे को चेक करवाना है, उसको दूध पिलाना है, तो सारी चीजें जो है डॉक्टर की परामर्श के अनुसार माँ को बहुत ध्यान पूर्वक सुन के और उनको प्रैक्टिस करना चाहिए जिससे कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस हैं इनको हम कम कर सकें, और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल खत्म हो सकें। दूसरी चीज कि डिलीवरी के बाद जो बहुत ज्यादा ब्लड का लॉस होता है, ये जो स्तनपान है ये माताओं के लिए इसमें भी बहुत ज्यादा लाभप्रद है कि ये डिलीवरी के बाद जो ब्लड का लॉस है उसको भी कम करता है, यूटरस के रिट्रैक्शन में को मिनिमाइज करता है, यानी कि यूटरस का जो साइज है उसको वापस से लाने में भी ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज्यादा मददगार साबित है माताओं के लिए। बहुत अच्छा पॉइंट है कि ये एक तरीके से इमोशनल बॉन्ड मदर और बेबी के बीच बनाती है कि जब मदर उसको अपनी गोद में उठाती है और जिस तरीके से उन दोनों के बीच जो एक कॉन्टेक्ट होता है, तो वो इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो एक माँ समझ सकती है और उसका बच्चा कि वो कैसा उस समय वो फील करती है। एक दूसरी चीज मैं और यहाँ पे बताना चाहूंगी कि ये जो सेकंड बर्थ है कहीं ना कहीं प्रोलॉन्ग्ड करता है, यानी कि उस समय को बढ़ाता है कि दूसरा टाइम बच्चे का है वो थोड़ा सा डिले हो जाए। क्यों? क्योंकि जो ऑनसेट है मेंस्ट्रुएशन का, जो आने का समय है, उसको भी थोड़ा सा ये डिले कर देता है। तो और एक पॉइंट मेरे माइंड में और आया मैम, इतने अच्छे से सब कुछ यहाँ पे बातें चल रही हैं, तो एक पॉइंट मैं यहाँ पे और बताना चाहूंगी, ये कहीं ना कहीं मैम आजकल बच्चे को उसमें रख देते, एक मशीन है, मैं उसका नाम थोड़ा सा स्किप कर रही हूँ,
1: हाँ
0: कि बच्चा होता है तो तुरंत से उसको उसमें रख दिया जाता है कि उसको न्यूमोनिया हो गया या कुछ है, लेकिन जो एक माँ का और बॉडी से जब बच्चा टच करता है तो टेम्परेचर दोनों का मेंटेन करता है, तो जो टेम्परेचर है वो बेबी का अपनी माँ से जो मेंटेन होता है ना, तो वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी मतलब बहुत हेल्पफुल है ये सब चीजें। ये एक तरीके से हम ये कह देंगे कि माँ को भी बहुत अच्छा लगता है उस टाइम पे और बेबी को भी।
1: तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि माँ और बच्चे दोनों के लिए ही फायदेमंद
0: बहुत है। बिल्कुल।
1: यहाँ पर मैम एक बात और जानना चाहेंगे कि जैसे डिलीवरी के बाद कुछ महीने बाद माएं जो है अपनी जॉब पे जाती हैं, तो जो कामकाजी महिलाएं हैं वो कैसे बच्चे को फीडिंग करवा सकती है, क्योंकि इस बीच कई महिलाओं को दिक्कत होती है क्योंकि घर पे जब वो रहती है तो कुछ कुछ घंटे बाद वो दूध पिलाती है बच्चे को, लेकिन जब वो काम पे जाती है तो एक लंबा गैप हो जाता है।
0: आजकल इस टॉपिक पे काफी काम किया जा रहा है, तो हम एक तरीके से मैम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग एक माँ का अकेला काम नहीं है, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो जहाँ काम कर रही है तो वहां पे भी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको टाइम दे इस फीडिंग को कराने के लिए, क्रैच की फैसिलिटी होनी चाहिए, घर में है तो परिवार के सदस्य उसको पूरी देखभाल दें, हॉस्पिटल में है तो ऑब्वियसली डॉक्टर्स नर्सेज उसको गाइड करें और अच्छे से उसको केयर की जरूरत होती है।
1: एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है मैम कि जो माएं दूध पिला रही हैं, उनका भोजन कैसा होना चाहिए कि उनकी सेहत अच्छी रहे, बच्चे के प्रॉपर दूध भी बनता रहे।
0: सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी मैम, पौष्टिक आहार होना चाहिए। जब हम पौष्टिक आहार की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला शब्द आता है कि पौष्टिक आहार मतलब कैसा, यानी कि संतुलित। हम अनाज लेते हैं खाने में, दालें लेते हैं, सब्जियां लेते हैं, फल लेते हैं, आपका दूध दही सूखे मेवे हो गए, चिकनाई। तो हम अपने पूरे दिन भर के खाने को इस तरीके से प्लान करें, इस तरीके से उसकी योजना बनाएं, इन सब में से हमारे शरीर में कुछ ना कुछ जाना चाहिए। अब इसमें भी हम एक बहुत ही बुद्धिमानी से हम ये काम कर सकते हैं जो कि महिलाएं तो अधिकतर सभी घरों में करती हैं। इसे दालों के भी कई प्रकार होते हैं, तो आपने आज अगर अरहर की दाल बनाई है तो कल आप कोई और वैरायटी ले लीजिए दाल की, परसों कोई और वैरायटी ले लीजिए, नेक्स्ट डे आप उसमें कुछ स्प्राउट्स ले सकते हैं,
1: मतलब बदल बदल
0: बदल बदल के। यानी कि यहाँ पे भी आपको एक बहुत ही बुद्धिमानी से एक वाइजली डिसीजन लेना है बीइंग अ होम मेकर कि मैं अपने खाने में वैरायटी कैसे लाऊं, जिससे कि आप भी उस आपको पूरी तरीके से हर चीज की पौष्टिकता आपको मिले। अगर आप दूध नहीं ले पाती हैं तो दूध का क्या सब्स्टिट्यूट आप उसमें ऐड ऐसा करें कि आपको दूध से मिलने वाले पोषक तत्व सभी आपको उसमें मिले। दूसरी चीज कुछ ऐसा है कि कुछ फूड्स ऐसे हैं जो कि दूध बनाने में बहुत ज्यादा सहायक हैं, तो उनका सेवन कर सकते हैं। उसके अलावा गैलेक्टोगोज कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिनको कि हम बोलते हैं कि दूध बनाने में से सौंठ हो गई, अजवाइन हो गई, जिनको गोंद है, ये लड्डू है, मतलब इन चीजों का सेवन भी अगर हम घर में डेली उसमें करते हैं तो ये दूध को बनाने में काफी हेल्पफुल।
1: तो जैसे कि हमारे पहले समय से ही चला आ रहा है कि डिलीवरी के बाद माताओं को जो है लड्डू बना के जाते हैं, पौष्टिक लड्डू, तो वो वही आहार हो गए।
0: तो आंगनवाड़ी सेंटर्स हर क्षेत्र में होते हैं, तो वहाँ पे पुष्टाहार या पौष्टिक आहार के नाम से एक पैकेट मिलता है धात्री माताओं को। अच्छा। जो उन माताओं को जो कि फीड कराती हैं, तो मेरे ख्याल से अगर हम उन पैकेट के पीछे का रैपर पढ़ें तो वो एक बहुत ही पौष्टिक खाना है माताओं के लिए, जो कि दूध को बनाने में माताओं के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है।
1: और उसमें मेरे ख्याल से अलग अलग मात्राएं लिखी भी रहती है, जो बिल्कुल उसमें शामिल रहती है।
0: बिल्कुल मैम, और अगर आप उसको पढ़ेंगे और उसको खाएंगे तो आपको खुद अपने शरीर में और दूध में ऐसा लगेगा कि हाँ, बच्चा भी मेरा संतुष्ट है, आपको खुद भी अच्छा लगेगा, आपको एक एनर्जी फील होगी।
1: बिल्कुल,
0: सभी पोषक तत्व हैं। मुझे वो बहुत अच्छी चीज लगी जो सरकार द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है धात्री माताओं के लिए।
1: और मैम एक चीज और जानना चाहेंगे कि 6 महीने तक बच्चे को जो है माँ का दूध जरूरी है, और अधिकतम कितने समय तक पिलाया जा सकता है?
0: 0 से 2 इयर्स तक आप बच्चे को फीड करा सकते हैं, लेकिन 6 माह तक बिना किसी अन्य पदार्थ के कोई भी चीज आपको नहीं देनी, 6 माह तक केवल और केवल माँ का दूध।
1: क्या एक चीज और देखने में आती है मैम कि बहुत कम होता है, बहुत कम महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि कई बार उन्हें दूध बिल्कुल बनता ही नहीं है बच्चे के जन्म के बाद, तो ऐसे में फिर बच्चे को क्या दिया जाए?
0: मैम सबसे पहले तो इसके लिए डॉक्टर से एक बार, कोई मतलब पेडियाट्रिशियन से एक बार रिकमेंडेशन लेनी चाहिए कि मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर ऐसी कंडीशन है तो मदर को बेबी को फीड कराना उस टाइम पे भी नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है कि बेबी अगर बाद हाँ फीड कर रहा है तो मे बी पॉसिबल कि वो दूध बनना स्टार्ट हो जाए, या किसी वजह से अगर दूध नहीं पी पा रहा है बच्चा तो वो होना स्टार्ट हो जाए उसको। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे अगर जरूरत है एक डॉक्टर की, पेडियाट्रिशियन की यहाँ पे बात करने की उनसे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है।
1: मैम अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये कि स्तनपान से जुड़े ऐसे कौन कौन से भ्रम हैं जिन्हें दूर करना जरूरी है?
0: कुछ महिलाएं, सब नहीं, कुछ, वो भी अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस, मेरा ऐसा कहना कुछ नहीं है कि मैं जो पढ़ती हूँ मैगजीन्स में या रिसर्चेस हैं कि वो अपनी बॉडी को मेंटेन रखना चाहती हैं तो ऐसा सोचती हैं भाई कि ऐसा अगर मैं पिलाऊंगी तो मेरा
1: जो सौंदर्य है
0: वो थोड़ा सा खराब हो जाएगा। यह उनके लिए अपना काम बहुत जरूरी होता है कि वो अपने काम को प्रेफरेंस देती हैं कि बच्चे को मेड के ऊपर छोड़ के चली गई।
1: और अगर माँ की तबीयत ठीक नहीं है तब भी
0: हाँ स्तनपान में कराने में कोई दिक्कत नहीं है कि अगर अब माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो लोग सोचते हैं कि हम नहीं कराएं, नहीं, ऐसा कोई नहीं है। अगर कोई सीवियर इन्फेक्शन है बॉडी में तो उस कंडीशन में सबसे पहले डॉक्टर से परामर्श लीजिए कि मुझे ये परेशानी है तो क्या मैं बेबी को फीड करा सकती हूँ नहीं।
1: तो डॉक्टर तरुभी अग्रवाल जी, आज आपने माँ और शिशु दोनों के लिए वरदान स्तनपान इस संबंध में अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता और शिशु दोनों के लिए वरदान स्तनपान, अभी आप सुन रहे थे ये भेंट वार्ता जिसमें जानकारी दे रही थी डॉक्टर तरुभी अग्रवाल, महामाया राजकीय महाविद्यालय सहायक अध्यापिका शेरकोट से। और अब कार्यक्रम में इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आनंद लेते हैं इस गीत का।

बहनों, इस गीत के बाद चलते चलते स्वास्थ्य से जुड़ी दो बातें आपके साथ और कर लेते हैं। बहनों, सांसों का चलना ही जीवन है, क्योंकि हर सांस जीवन का आधार है। लेकिन जब यही सांस लेने में हमें कभी कठिनाई होने लगे, लगातार खांसी या सीने में दर्द जैसी समस्याएं सामने आती हैं, तब हमें एहसास होता है कि स्वस्थ फेफड़े, जिनसे कि हम सांस लेते हैं, वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। इसी संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से हर साल 1 अगस्त को विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे। और ये दिन लोगों को फेफड़ों के कैंसर के प्रति जागरूक करने, उसके शुरुआती लक्षणों को पहचानने के लिए प्रेरित करता है, साथ ही समय पर जांच और उपचार का महत्व भी बताता है। तो अगर कभी भी आपको लगता है कि लगातार खांसी बनी हुई है, खांसी में खून आता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, सीने में दर्द है, या कभी आवाज में बदलाव या आवाज बैठती है, तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि उपचार से, जांच से किसी भी तरह की बीमारी से बचा जा सकता है। और आप अपने स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं। जीवन में बहनों, खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमें अनुमति दें। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। दिन के 1:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्य।

0: मस्त जवानी दिल दरिया की डाटे झाल डटे को ना रह चढ़ जा।
1: वो मस्त जवानी दिल दरिया की।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं हरियाणवी लोकगीत विविध कलाकारों के स्वर में आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। लीजिए पेश है कार्यक्रम का ये अंतिम हरियाणवी लोकगीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहतनाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की भी मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। उड़ीसा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना और औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आधार और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने भोगपुरम में आज अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
1: आज यहां करीब 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत में विमानन क्षेत्र के तेजी से होते विस्तार का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश में परिचालित हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 166 हो गई है और उड़ान योजना ने आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बना दिया है।
1: एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने इस हवाई अड्डे के उद्घाटन को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के विकास में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरु पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फी थिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम के ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें लगभग 200 रुपए कम कर दी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी।
3: वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम होने के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर का मूल्य अब 2,738 रुपए हो गया है। वहीं कोलकाता में अब वाणिज्यिक सिलेंडर 2,872 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 2,691 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 2,906 रुपए में मिलेगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। सकलीन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में पिछले महीने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और ये 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये जुलाई 2025 में 1,83,065 करोड़ रुपए के मुकाबले 15.4% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू जीएसटी राजस्व 1,44,695 करोड़ रुपए रहा, ये एक वर्ष पहले की तुलना में 10.1% अधिक है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम में आतंकी हमले में घायल दूसरे श्रमिक की आज सवेरे मृत्यु हो गई। इससे मृतकों की संख्या 2 हो गई है। एक रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायल श्रमिक की मौत श्रीनगर के एक अस्पताल में चिकित्सा के दौरान हुई। कल शाम ईंट भट्टे पर काम कर रहे इन दो श्रमिकों पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। घटना के तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए तलाश अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मजदूरों की हत्या की कड़ी निंदा की और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। कुलगाम जिला प्रशासन की ओर से 6-6 लाख रुपए की तत्काल सहायता भी दी जाएगी। श्रीनगर से इश्फाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
3: तेलंगाना में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के लिए निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें बूथ स्तर के अधिकारी 10 अगस्त तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा अब 17 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 17 अगस्त से 16 सितंबर तक जारी रहेगी, जबकि उनका निपटान 15 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ओडिशा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत दावे और आपत्तियां

0: दाखिल करने की अंतिम तिथि निर्वाचन आयोग ने बढ़ाकर इस महीने की 19 तारीख कर दी है। दावों और आपत्तियों के निपटान की समय सीमा भी 17 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। आयोग ने बताया कि ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर इस समय सारणी में संशोधन किया गया है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल आज से शुरू हो गया है। पात्र महिलाएं आधिकारिक वेबसाइट dly.delhi.gov.in पर पंजीकरण कर सकती हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने दिल्ली मंत्रिमंडल की इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी इसका ऐलान किया था। वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस के नशा मुक्त अभियान नशे से दूरी है जरूरी के दूसरे चरण ने 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इन सभी 5 उपलब्धियों को मान्यता दी है। इस अभियान ने कई विश्व रिकॉर्ड भी बनाए हैं। इंदौर पुलिस आयुक्त कार्यालय ने 17,00,000 से अधिक लोगों को नशा विरोधी ई शपथ दिलाई और 8,534 प्रतिभागियों की मानव श्रृंखला बनाई। रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के 29 किलोमीटर लंबे दानापुर से फतोहा खंड पर 976 करोड़ रुपए की लागत से एक से अधिक लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस परियोजना से पटना रेल कॉरिडोर के सबसे व्यस्त खंडों में से एक पर भीड़ कम होगी और यात्री और माल ढुलाई सेवाओं में वृद्धि संभव होगी। मंत्रालय ने बताया कि परिचालन के पहले वर्ष में इस परियोजना से प्रतिदिन 22 अतिरिक्त यात्री ट्रेन और 18 अतिरिक्त मालगाड़ी चल सकेंगी। इससे प्रति वर्ष 52,00,000 टन अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता भी बढ़ेगी। आयकर विभाग ने बताया है कि वर्ष 2026-27 के लिए 31 जुलाई 2026 तक 59 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। सोशल मीडिया पोस्ट में करदाताओं को धन्यवाद देते हुए विभाग ने कहा कि उनका विश्वास और समय पर अनुपालन ही भारत के विकास को गति देने वाली ऊर्जा प्रदान करता है। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने आज नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। गोवा स्थित नौसेना अकादमी के 38वें एकीकृत कैडेट पाठ्यक्रम के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल एएन प्रमोद जुलाई 1990 में नौसेना में कमीशन हुए थे। 36 वर्ष से अधिक के अपने विशिष्ट करियर में कई पदों पर उन्होंने कार्य किया। दिसंबर 2023 से जुलाई 2026 के बीच नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में वे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नौसेना की योजना तैयारी और परिचालन तत्परता में सक्रिय रूप से शामिल रहे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इससे राज्य में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने राज्य में अधिक बारिश का अनुमान व्यक्त किया है।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है क्योंकि महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रापड़ा और खुर्दा जिलों के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आने की खतरा पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक, बालेश्वर, जाजपुर और केंदुझर जैसे बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। भद्रक में कई गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं, सड़कों का संपर्क टूट गया है और संचार व्यवस्था बुरी तरह बाधित है, जिससे हजारों लोग भोजन, पीने का पानी और जरूरी सामान के लिए जूझ रहे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, केरलम और माही में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन बिजली गिरने की स्थिति बनी रहेगी। राजधानी दिल्ली में आज शाम कई स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: ताइपे ओपन बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने आज सेमीफाइनल में शानदार जीत के साथ महिला सिंगल्स के फाइनल में अपनी जगह पक्की की। 17 वर्षीय तन्वी ने चीनी ताइपे की हुआंग यू हुसून को सीधे गेम में हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। फाइनल में अब तन्वी का मुकाबला वियतनाम की थुई लिन्ह गुएन से होगा। उन्नति हुडा सेमीफाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। उधर ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के पास कई पदक जीतने के मौके हैं। बॉक्सिंग में ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहन की अगुवाई में 10 मुक्केबाज फाइनल मुकाबले खेलेंगे। अस्मिता डे और हर्ष सिंह के कल जूडो में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने के बाद जूडो खिलाड़ी भी मैदान में उतरेंगे। लॉन बाउल्स में नवनीत सिंह और दिनेश कुमार की पुरुष डबल्स जोड़ी इंग्लैंड के

0: अब महत्वपूर्ण मैच खेलेगी, विजेता सेमीफाइनल में पहुंचेगा। खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स और ट्रैक साइकिलिंग में भी पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति बढ़ती जा रही है। पिछले चार दिनों में पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के सदस्य सरदार उमर नजीर कश्मीरी ने आरोप लगाया कि इन मौतों के लिए सुरक्षा बल जिम्मेदार हैं। एक और बयान में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि मुजफ्फराबाद इलाके में देर रात तक विरोध प्रदर्शन जारी रहे। लोग अपने बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा और स्थानीय अधिकारों द्वारा किए गए वायदों को पूरा करने की मांग को लेकर सड़कों पर डटे रहे। इस बीच अमरीका स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने निहत्ते प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग की निंदा की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से कार्रवाई रोकने, मोबाइल संचार सेवाएं बहाल करने और बल के किसी भी गैर कानूनी इस्तेमाल के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। दोनों देशों के बीच व्यापार 6 वर्षों से रुका हुआ था। इससे 6 साल से ज्यादा समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। भारत और रवांडा ने आपसी व्यापार को बढ़ाने के अपने संकल्प को दोहराया है। नई दिल्ली में हुई भारत रवांडा संयुक्त व्यापार समिति की बैठक के पहले चरण में दोनों पक्षों ने वस्तुओं और सेवाओं के आपसी व्यापार की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष आपसी व्यापार के दायरे को विविधतापूर्ण बनाने, व्यापारिक संबंधों को आसान बनाने और बाजार तक पहुंच से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने से जुड़ी पहलों पर सहमत हुए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने रात भर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 22 घायल हो गए। यह हमला पूरे यूक्रेन में रूस के बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले के ठीक 2 दिन बाद हुआ है, जिसमें 10 नागरिकों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। उड़ीसा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। दिन के 2:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है एक ही गीतकार। नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम एक ही गीतकार में, जिसे लेकर हाजिर हूँ मैं अलका सिंह। श्रोताओं, आज के हमारे गीतकार हैं एक प्रसिद्ध भारतीय उर्दू शायर और बॉलीवुड के महान गीतकार शकील बदायूनी। श्रोताओं, शकील बदायूनी का जन्म 3 अगस्त वर्ष 1916 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। शकील बदायूं का जन्म का नाम शकील अहमद था। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU से वर्ष 1942 में स्नातक में BA की डिग्री पूरी की। उन्होंने कॉलेज के दिनों में ही मुशायरों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था और श्रोताओं वे वहां से ही लोकप्रिय हो गए थे। श्रोताओं, शकील बदायूं का फिल्मी सफर शुरू हुआ वर्ष 1946 में आई फिल्म दर्द के गीतों के साथ, जिससे उनकी बॉलीवुड में धमाकेदार शुरुआत हुई। श्रोताओं, बहुत कम लोग इतने भाग्यशाली होते हैं कि उन्हें अपनी पहली फिल्म में ही सफलता मिल जाती है, लेकिन शकील को वह सफलता मिली जो दर्द से शुरू होकर वर्षों तक जारी रही। तो चलिए सुनवा देते हैं शकील बदायूं की पहली फिल्म दर्द का ये गीत, जिसे आवाज दी है उमा देवी ने, संगीत है नौशाद का और गीतकार हैं शकील बदायूनी।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना शकील बदायूं ने गा लिखा ये गीत, जिसे आवाज दी थी उमा देवी ने, संगीत था नौशाद का और फिल्म थी दर्द। और अब आपको सुनवाते हैं ये जरूरी संदेश।
1: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम, भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम, डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी। रागम, आनंद की अटूट रसधार।
0: एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम एक ही गीतकार में, जिसमें आज के हमारे गीतकार हैं शकील बदायूनी। श्रोताओं, शकील बदायूनी ऐसे कलाकार थे कि उन्होंने पढ़ाई के बाद दिल्ली में सिविल सप्लाई विभाग में क्लर्क की नौकरी की। मिशायरों के शौकीन और गीत लेखन के लिए उन्होंने अपनी पक्की सरकारी नौकरी तक छोड़ दी थी और आ गए थे फिल्मी जगत की दुनिया में। श्रोताओं, शकील बदायूनी

और नौशाद मिलकर संगीत जगत को सबसे लोकप्रिय गीतकारों और संगीतकारों की जोड़ियों में से एक बन गए। उनके द्वारा साथ में दिए गए संगीत में दीदार फिल्म, जो वर्ष 1951 में आई, बाबू बावरा जो 1952 में रिलीज हुई, मदर इंडिया जो उस समय की सबसे आइकॉनिक फिल्म मानी जाती है, उसके गीत भी शकील बदायूं ने ही लिखे हैं। श्रोताओं, जो वर्ष 1957 में रिलीज हुई है, मुगले आजम जो वर्ष 1956 में रिलीज हुई, उसके भी संगीत उल्लेखनीय है। इसके अलावा और भी फिल्म है जिनमें शकील बदायूं ने नौशाद के साथ काम किया। श्रोताओं, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात शकील और नौशाद की देखने को मिलती है कि जब शकील बदायूं को तपेदिक यानी टीबी का पता चला तो उन्हें इलाज के लिए पंचगनी के एक सैनिटोरियम में भर्ती कराया गया। नौशाद ये जानते हुए कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनके पास 3 फिल्में लेकर गए। सैनिटोरियम में ही उनके गीत लिखवाए गए और उन्हें उनकी सामान्य फीस से लगभग 10 गुना अधिक भुगतान दिलवाया उन्होंने। श्रोताओं, ऐसी थी उनकी दोस्ती। और हालांकि शकील बदायूं ने नौशाद के साथ सबसे अधिक फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्होंने रवि और हेमंत कुमार के साथ भी सहयोग किया, बताएंगे आपको, लेकिन इस गीत के बाद, जिसे हमने लिया है फिल्म मेरे महबूब से। इसे आवाज दी है मोहम्मद रफी ने। नौशाद का ही संगीत है और गीतकार हैं शकील बदायूनी।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म मेरे महबूब का ये गीत, जिसे लिखा था शकील बदायूनी ने। संगीत था नौशाद का और आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की। और अब आपको सुनवाते हैं ये ज़रूरी संदेश।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
2: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम एक ही गीतकार में। और आज के हमारे गीतकार हैं महान लेखक उर्दू शायर शकील बदायूनी। श्रोताओं, गीत से पहले हम आपसे बात कर रहे थे शकील बदायूनी के रवि और हेमंत के साथ काम के सफर के बारे में। श्रोताओं, उन्होंने रवि के साथ फिल्म घराना के लिए गीत लिखे।

शुदुम बदायूनी को फिल्म 20 साल बाद के गीत कहीं दीप जले के लिए भी वर्ष 1963 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार दिया जा चुका है। शुदुम शकील बदायूनी इतना ही नहीं, अपने शौक के लिए भी जाने जाते थे। उन्हें बैडमिंटन खेलना बड़ा पसंद था, पिकनिक और शिकार पर जाना, अपने इंडस्ट्री के दोस्तों के साथ जैसे नौशाद और मोहम्मद रफ़ी के साथ उन्हें पतंग उड़ाना बेहद पसंद था। कभी कभी जॉनी वॉकर भी पतंगबाजी प्रतियोगिताओं में उनके साथ शामिल हो जाते थे। दिलीप कुमार, लेखक वजाहत मिर्जा कुमार बारंग कवी और आजम बाजिदपुरी उद्योग जगत में शकील के अन्य करीबी दोस्तों में थे। तो चलिए सुनवा देते हैं शकील बदायूनी की फिल्म घराना का ये गीत, जिसे उनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर गीतकार का अवार्ड मिल चुका है। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी ने, संगीत है रवि का और गीतकार हैं शकील बदायूनी।

श्रोता, अभी आपने सुना फिल्म घराना का ये गीत, जिसे आवाज़ दी थी मोहम्मद रफ़ी ने। गीतकार थे शकील बदायूनी और संगीत था रवि का। आज हम कार्यक्रम एक ही गीतकार में बात कर रहे हैं, शकील बदायूनी की। श्रोता, शकील की नौशाद रवि और गुलाम मोहम्मद से काफ़ी गहरी दोस्ती थी, जिनके साथ उन्होंने अपना जीवन भरपूर जिया। नौशाद ने 24 वर्षों तक अपनी अधिकांश फिल्मों के लिए शकील बदायूनी को गीतकार के रूप में लिया और उनसे एक से बढ़कर एक गीत लिखवाए। श्रोताओं, शकील ने संगीत निर्देशक रवि शर्मा के लिए भी काफी गीत लिखे। उनमें से प्रमुख थी चौधवी का चांद, घराना, घूंघट, गृहस्थी, नर्तकी, फूल और पत्थर और दो बदन फिल्में के गीत भी उन्होंने लिखे। श्रोताओं, शकील बदायूनी ने हेमंत कुमार के लिए 20 साल बाद, साहिब बीवी और गुलाम, बिन बादल बरसात के गीत लिखे हैं। शकील ने एस डी बर्मन की फिल्मों कैसे कहूं और बेनजीर के गीत में भी काम किया है। सी रामचंद्रन के साथ शकील के गीत नजर आते हैं फिल्म जिंदगी और मौत, वहां के लोग, रोशन बेदाग और नूर जहां जैसी फिल्मों में। श्रोताओं, शकील ने लगभग 89 फिल्मों के गीत लिखे हैं। इसके अलावा उन्होंने बेगम अख्तर द्वारा गाई गई कई लोकप्रिय गजलें भी लिखी हैं, जिन्हें आज भी पंकज उदास और अन्य गायकों द्वारा गाया जाता है। श्रोताओं, इतना ही नहीं, शकील बदायूनी को भारत सरकार ने गीतकार आजम की उपाधि से भी सम्मानित किया है। शकील बदायूनी का निधन 20 अप्रैल वर्ष 1970 को बॉम्बे के अस्पताल में 53 वर्ष की आयु में मधुमेह की जटिलताओं के कारण हो गया था, और ये चमकता सितारा दुनिया को अलविदा कह गया। श्रोताओं, शकील हमेशा हमें अपनी जिंदा दिली के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने 53 वर्ष हमेशा खुलकर जिए और ये संदेश दे गए कि अगर आप चाहें तो जिंदगी में कुछ भी पा सकते हैं। चलिए सुनवा देते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, जिसे आवाज दी है आशा भोसले ने। फिल्म है साहिब बीबी और गुलाम, संगीतकार है हेमंत कुमार और गीत लिखा है शकील बदायूनी ने।

अभी आप सुन रहे थे एक ही गीतकार, जिसमें आज के हमारे गीतकार थे शकील बदायूनी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। दिन के 3 बज रहे हैं, अब हमारी ये प्रसारण सभा संपन्न होती है। आज शाम 5 बजे हमारी सांध्यकालीन सभा में आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बज रहे हैं। हमारी दूसरी सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में सुनते हैं मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में सरकार की रोजगार सृजन योजनाओं पर चर्चा, जिसमें है राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। राष्ट्रीय करियर सेवा परियोजना भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है, जिसका शुभारंभ 20 जुलाई 2015 को किया गया। इसका उद्देश्य रोजगार सेवाओं का आधुनिकीकरण करना तथा नौकरी चाहने वालों, नियोक्ताओं, कौशल प्रशिक्षण संस्थानों और करियर काउंसलरों को एक ही डिजिटल मंच पर जोड़ना था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है, नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के बीच में संपर्क स्थापित करना है, करियर परामर्श एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करना है, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी देना है, रोजगार मेलों का आयोजन करना है, रोजगार सेवाओं को डिजिटल और पारदर्शी बनाना है, महिला दिव्यांग तथा ग्रामीण युवाओं सहित सभी वर्गों को रोजगार सेवाओं से जोड़ना है। इस परियोजना के 3 स्तंभ हैं। पहले स्तंभ की बात करें तो NCECS ऑनलाइन पोर्टल है, जिसमें रोजगार एवं करियर सेवाओं को डिजिटल मंच से जोड़ा जाता है। मॉडल करियर सेंटर है, जिसमें रोजगार मार्गदर्शन, काउंसलिंग और जॉब फेयर का संचालन किया जाता है। रोजगार कार्यालयों के आधुनिकीकरण, यानी कि पारंपरिक रोजगार कार्यालयों को आधुनिक करियर सेंटर में बदला जाता है। इस योजना की लाभ की बात करें तो इससे नौकरी खोजने में आसानी होती है, करियर संबंधी सही मार्गदर्शन मिलेगा, निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों की रिक्तियों की जानकारी मिलेगी, कौशल प्रशिक्षण के अवसर भी मिलते रहेंगे, साथ ही युवाओं की रोजगार क्षमता में भी वृद्धि होगी। अब जानते हैं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भारत सरकार की एक प्रमुख स्वरोजगार योजना है, जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को अपना नया उद्योग या व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक ऋण एवं सरकारी सब्सिडी उपलब्ध कराकर योजना के अवसर बढ़ाना है। यह योजना सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना का शुभारंभ 2008 में हुआ था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षित एवं बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करना है, रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। इस योजना के पात्रता में पात्र की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। नए उद्यम स्थापित करने वाले व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। 10 लाख

या 5 लाख से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के लिए कम से कम 8वीं पास होना आवश्यक है। पहले से सरकारी सब्सिडी प्राप्त इकाइयां सामान्यतः इसमें पात्र नहीं होती। पुरानी इकाई पात्र भी नहीं होंगे और नई परियोजना उनके पास होनी चाहिए। विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख से अधिक तथा सेवा क्षेत्र में 5 लाख से अधिक की परियोजनाओं के लिए कम से कम 8वीं पास होना आवश्यक है। अगर हम लाभ की बात करें या मार्जिन मनी सब्सिडी की बात करें तो सामान्य वर्ग में शहरी क्षेत्र के लिए 15% और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 25% है। विशेष श्रेणी जैसे कि एससी एसटी ओबीसी महिला दिव्यांग पूर्व सैनिक अल्पसंख्यक आदि के लिए शहरी क्षेत्र में 25% और ग्रामीण क्षेत्र में 35% है। परियोजना के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराता है और सरकार निर्धारित प्रतिशत के अनुसार सब्सिडी प्रदान करती है।

अभी आप सुन रहे थे मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में सरकार की रोजगार सृजन योजनाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना पर चर्चा। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:10 हो रहे हैं। आइए अब जानते हैं गुमशुदा के बारे में सूचना। सूचना इस प्रकार है, मधु पत्नी दिलीप सिंह पुत्री मनी राम निवासी ग्राम गिलाड़ा थाना नहटौर जनपद बिजनौर दिनांक 18 जुलाई 2026 से लापता है। इनका हुलिया इस प्रकार है, कद 5 फीट उम्र 19 वर्ष रंग सांवला आंख नाक कान औसत। जिस किसी व्यक्ति को गुमशुदा के बारे में जानकारी मिले तो इन नंबर पर सूचित करें। नंबर है 8449762182 9450403139। दूसरे गुमशुदा व्यक्ति के बारे में सूचना इस प्रकार है, शिवानी पुत्री स्वर्गीय राजवीर निवासी ग्राम झुंझेला थाना शिवाला कला जनपद बिजनौर दिनांक 13 जुलाई 2026 से लापता है। इनका हुलिया इस प्रकार है, कद 5 फुट 1 इंच उम्र 19 वर्ष रंग गोरा। गुमशुदा व्यक्ति के बारे में जिस किसी को भी जानकारी मिलती है तो आप 9454403144 9719365052 पर संपर्क कर सकते हैं। अगली सूचना इस प्रकार है, अजय पाल सिंह पुत्र स्वर्गीय मंगू सिंह निवासी ग्राम गौसपुर पोस्ट व थाना कोतवाली देहात जिला बिजनौर 13 जुलाई 2026 से लापता है। इनका हुलिया इस प्रकार है, कद 5 फीट 6 इंच उम्र 40 वर्ष कान आंख नाक औसत लंबा शरीर रंग गेहुआ। गुमशुदा व्यक्ति के बारे में जिस किसी को भी जानकारी मिलती है तो वो इन नंबर पर संपर्क कर सकता है, 9454403133 8273481007। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। आइए अब डालते हैं एक नजर आज के शेष कार्यक्रम पर। शाम 6:50 पर प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाड़ी का प्रसारण हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। आज रात्रि 8 बजे इस सप्ताह संसद में रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती और रात्रि 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। आज शाम 5:15 पर युवा श्रोताओं को सुनवाएंगे कार्यक्रम युववाणी में कुछ खास है आज में राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस पर चर्चा। साथ ही सुनवाएंगे नवमा परवीन की वार्ता, विषय रहेगा कृत्रिम बुद्धिमता भविष्य अथवा जोखिम। शाम 6:05 पर किसान भाइयों को सुनवाएंगे कार्यक्रम कृषि जगत में लोक गीतों व रागनियों का फरमाइशी सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी। साथ ही चर्चा करेंगे खरीफ में उड़द मूंग की देखभाल और VBG रामजी योजना पर चर्चा। शाम 7:32 पर कार्यक्रम सुगम संगीत में सुनवाएंगे रागनी शर्मा की आवाज में चंद भजन और रात्रि 8:15 पर पेश करेंगे कार्यक्रम गीत संध्या। रात्रि 8:30 पर आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम की। कल रात्रि 9:30 पर नेशनल प्रोग्राम ऑफ फीचर और रात्रि 10 बजे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कल प्रातः 7:05 पर कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में जानकारी का विषय रहेगा जोड़ों का दर्द और सावधानियां।
7:10 पर कार्यक्रम खेती की बातें में जानकारी देंगे पशुओं में गलघोटू रोग व रोकथाम पर। ये थी जानकारी आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम की। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 5:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार नमस्कार नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम युवाणी में। दोस्तों, जैसे कि आपको 5:15 पे हमारा बहुत इंतजार रहता है, वैसे ही हम दोनों को, यानी मैं वाणी कौशिक
1: और वाणी के साथ साथ सलोनी को भी आपका उतना ही बेसब्री से इंतजार रहता है। दोस्तों,
0: तो दोस्तों कैसे हैं आप? हम एक बार फिर आ गए हैं आपकी शाम को नायाब बनाने आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम युवाणी में। वैसे सलोनी, तो मुझे एक बात बताओ,
1: क्या पूछो वाणी?
0: वीकेंड लोगों के लिए कितना स्पेशल होता है ना?
1: बहुत ज्यादा। वीकेंड मतलब खुशियों का ठिकाना ही नहीं।
0: और क्या, सारी सैटरडे मॉर्निंग तो लोग सो सो कर निकाल देते हैं।
1: स्पेशली फॉर कॉरपोरेट लोग, पूरे हफ्ते थकान सैटरडे मॉर्निंग सोकर ही आराम से निकालते हैं।
0: तो सलोनी, दोस्तों ने अपनी सुबह तो सोकर निकाल ली, लेकिन शाम को खूबसूरत बनाने का इंतजाम तो हमें करना पड़ेगा। तो चलो अब हमारे लिसनर्स को बता ही दो कि शाम खूबसूरत कैसे बनेगी।
1: वाणी, शाम हो संगीत ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सैटरडे का दिन बहुत ही स्पेशल होता है सेगमेंट गीत आपके नाम की वजह से।
0: जिस सेगमेंट के अंतर्गत हम अपने लिसनर्स को सुनवाते हैं फरमाइशी प्रोग्राम, यानी कि उनकी फरमाइश के कुछ गाने।
1: और दोस्तों, मौका तो देखिए, महीने का पहला ही दिन आपकी फरमाइश को लेकर आया है, जिसके लिए आपको भेजना होता है एक प्यारा सा मैसेज हमारे व्हाट्सएप नंबर 9457078288 पर, ताकि आप सुन सके आपका फरमाइशी गीत सेगमेंट गीत आपके नाम में।
0: सलोनी, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमारे दोस्तों को कुछ अधूरा अधूरा सा छूट रहा है? हमारे दोस्तों के लिए कुछ अधूरा अधूरा सा छूट रहा है?
1: वाणी, मुझे पता है तुम क्या बात कर रही हो, मैं भी वही बोलने वाली थी। तुम हमारी प्यारी सी कहानी की बात कर रही हो ना दोस्तों? तो चलो आपका सस्पेंस ही खत्म करते हैं। प्रोग्राम में आपको गीत सुनवाएंगे फरमाइशी, आप भेजेंगे जब हमें ढेर सारे मैसेजेस। लेकिन आपके सस्पेंस को फिलहाल खत्म करते हैं हमारी इस कहानी के एपिसोड 5 के साथ, जो हमारी कहानी थी जिसका आज 5वां एपिसोड जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए सुनते हैं दो कलाकार कहानी का एपिसोड 5।
2: तो दोस्तों, लेकर आए हैं हम कहानी के उस पार का ये लास्ट एपिसोड नंबर 5। तो आपने पिछले एपिसोड में सुना कि चित्रा को उसकी पेंटिंग के लिए फर्स्ट प्राइज मिला, पहला पुरस्कार मिला। दूसरी तरफ अरुणा को लोगों का प्यार, सम्मान और ढेर सारी दुआएं मिली। अब दोनों अपनी अपनी जगह सही थी, लेकिन सोच का फर्क साफ दिखाई देने लगा था। प्रदर्शनी खत्म हो चुकी थी, कॉलेज का हॉल लगभग खाली हो गया था। चित्रा अपने हाथ में ट्रॉफी लिए धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। कुछ देर पहले तक जो ट्रॉफी उसे अपनी सबसे बड़ी जीत लग रही थी, अब वही उसके हाथों में कुछ भारी सी महसूस हो रही थी। उसके कानों में लोगों की बातें बार बार गूंज रही थी। अगर अरुणा उस दिन कैंप में ना होती तो पता नहीं कितने लोगों तक समय पर मदद पहुंच पाती। उसने कई दिनों तक बिना रुके लोगों की मदद की। चित्रा कुछ पल के लिए रुक गई। उसने सोचा, मैंने भी वही बाढ़ देखी थी, लेकिन मैंने उस दर्द को सिर्फ कैनवास पर उतारा और अरुणा ने उसी दर्द को कम करने की कोशिश की। उसे पहली बार महसूस हुआ कि दोनों ने एक ही घटना देखी थी, लेकिन दोनों ने उसे अलग नजर से समझा। चित्रा ने उस पल को एक पेंटिंग बना दिया और अरुणा ने उसी पल में लोगों का सहारा बनना ज्यादा जरूरी समझा। चित्रा की नजर अपनी ट्रॉफी पर गई। वो हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन इस बार उस मुस्कान में जीत का घमंड नहीं था, उसमें एक नई समझ थी। उसे एहसास हो गया था कि कला सिर्फ रंगों और ब्रश तक सीमित नहीं होती। कला वहाँ भी होती है जहाँ कोई भूखे को खाना खिलाता है, जहाँ कोई रोते हुए इंसान को संभालता है, जहाँ कोई बिना किसी स्वार्थ के किसी अनजान की मदद करता है। चित्रा के मन में अरुणा के लिए सम्मान और बढ़ गया और उसे समझ आ चुका था कि पुरस्कार जीतना अच्छी बात है, लेकिन किसी के दिल में जगह बना लेना उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात होती है। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख थी। हर इंसान अपनी कला से पहचान बना सकता है, लेकिन वही कला सबसे ज्यादा मायने रखती है जो किसी की जिंदगी में थोड़ा सा उजाला ले आए। दो कलाकार दोस्तों सिर्फ दो सहेलियों की कहानी नहीं है, ये हम सब के लिए एक आईना है। हम सब अपनी अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ रच रहे हैं, कोई अपने काम से, कोई अपनी कला से और कोई अपने सपनों से, लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि क्या हमारी मेहनत सिर्फ हमारी सफलता तक सीमित है या उससे किसी और की जिंदगी भी बेहतर होती है। चित्रा गलत नहीं थी, उसकी कला में मेहनत थी, प्रतिभा थी और सुंदरता थी, लेकिन अरुणा ने हमें ये सिखाया कि जब कला में इंसानियत जुड़ जाती है तभी वो सचमुच महान बनती है। शायद इसी वजह से कहानी खत्म होने के बाद भी ट्रॉफी याद नहीं रहती, याद रहती है अरुणा की मुस्कान, उसकी सेवा और उसका बड़ा दिल। तो दोस्तों, दो कलाकार हमें यही सिखाती है कि जीवन में सफलता पाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है एक अच्छा इंसान बनना, क्योंकि पुरस्कार अलमारी में सजते हैं लेकिन इंसानियत लोगों के दिलों में बस जाती है। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे दो कलाकार कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और उसमें छिपे हुए एक प्यारे से मैसेज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
2: हो जाओगे हंस-हंस कर लोटपोट,
1: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
3: और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा।
1: जी हाँ, मजा आ गया।
3: रिंकू, वहाँ बैठे बैठे जबान कर रहे हो, इधर आओ जरा। ये हंसी नहीं बंद होगी तुम्हारी, इधर खड़े रहो चुपचाप।
4: सॉरी मैम।
3: जब से देख रही हूँ बकर बकर बकर बकर करे जा रहे हो, एक सवाल पूछूंगी तो जवाब दिया नहीं जाएगा।
4: एक क्या मैम, आप दो पूछ लीजिए।
3: अच्छा ये बताओ, एक्सीलेटर को हिंदी में क्या कहते हैं?
4: मैं ठहरा रहा, जमी चलने लगी।
3: नालायक, डंडा कहाँ है मेरा?
1: जी हाँ, मजा आ गया।
5: एक बार फिर आपका प्रोग्राम में स्वागत है। तो चलो सलोनी चलते हैं हमारे सबसे स्पेशल सेगमेंट यानी
6: कुछ खास है आज की ओर, जिसमें हम अपने लिसनर्स से काफी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, टॉपिक और महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बातें करते हैं।
5: तो सलोनी, आज क्या इंटरेस्टिंग है?
6: वाणी, आज तो बहुत ही खास दिन है। आज है राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, यानी
5: नेशनल माउंटेनियरिंग डे।
6: दोस्तों, काफी लोगों के दिमाग में आया होगा कि ये आखिर पर्वतारोहण है क्या। दोस्तों, सीधे शब्दों में बताया जाए तो मौत को चुनौती देकर बादलों से बातें करना।
5: बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ों पर हमारे देश का तिरंगा लहराना, यही माउंटेनियरिंग है।
6: और दोस्तों, जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो अमेरिका ने 1 अगस्त को ही, आज ही के दिन, इसकी शुरुआत की थी, ताकि उन साहसी पर्वतारोहियों को सम्मान दिया जा सके जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों लाइक माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल करके इतिहास रच दिया।
5: सलोनी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना ही और उसके बारे में सोचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
6: वाणी, और तुमने कभी नोटिस किया है कि जब हम प्लेन जगह पर रहने वाले लोग पहाड़ों पर घूमने जाते हैं तो हमें कितनी थकान महसूस होती है? रोड पर चलना भी कितना मुश्किल होता है, और वो तो माउंट एवरेस्ट पर जाते हैं।
5: और क्या, तभी तो मैंने कहा कि अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए इंसान के पास एक बहुत अच्छा माइंडसेट, बहुत अच्छा फोकस और सबसे जरूरी चीज, एक बहुत अच्छा फिजीक होना तो सबसे जरूरी ही है।
6: ये तो नंबर एक बात कही तुमने वाणी। दोस्तों, अच्छे फिजीक की नॉर्मल लाइफस्टाइल में भी बहुत ज्यादा जरूरत है, तो अपनी फिटनेस का ख्याल रखिए। और कुछ खास है आज में बस इतना ही।
5: दोस्तों, रेडियो अपने फोन के थोड़ा और करीब लेके आइए, क्योंकि
6: अब आपको हम सुनवाने जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल वार्ता, कृत्रिम बुद्धिमता, जिसमें आपको सुनने को मिलेगा AI के यूज और मिसयूज। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं और जानते हैं कि AI हमारे लिए कितना यूजफुल है या कितना खतरनाक।
7: दोस्तों, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो इसी सिलसिले में आज हम आए हैं अपने युवा साथियों के बीच, जानने उनसे उनके विचार कि वो अपने देश के लिए क्या योगदान दे सकते हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम अपने पहले युवा साथी की तरफ और जानते हैं उनसे उनका नाम।
8: मेरा नाम सचिन शर्मा है।
7: तो सचिन जी, क्या करते हैं आप?
8: मैं एक स्टूडेंट हूँ और अभी अपनी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, और अब मेरा प्रयास ये है कि मैं आगे देश का जो भविष्य है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी तरह से।
9: तो किस प्रकार आप अपना देश का भविष्य बना सकते हैं?
8: मैं खुद भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आगे चल के मैं देश का भविष्य बनाने के लिए बच्चों को प्रिपरेशन।
10: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI भविष्य है या जोखिम? तो आए जानते हैं इसके बारे में। आज का समय विज्ञान और तकनीक का समय है, हर दिन कुछ नया देखने और सीखने को मिलता है। पहले जिन चीज़ों के बारे में लोग सिर्फ सोचते थे, आज वो सब हकीकत बन चुकी हैं। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, स्मार्ट डिवाइस और कंप्यूटर जैसी चीज़ों ने हमारी ज़िंदगी को काफ़ी आसान बना दिया है। इन्हीं नई नई चीज़ों में एक ज़रूरी तकनीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, जिसे हम हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसको एआई के नाम से ही जानते हैं। तो आइए इसके बारे में तफसील से जानते हैं कि एआई क्या है, क्यों है, कब आया है और इसका हमारी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो एआई एक ऐसी तकनीक है जो मशीनों और इंसानों को कंप्यूटर की तरह सोचने, समझने, सीखने, निर्णय लेने की क्षमता देती है। मतलब मशीनें सिर्फ वही काम करती हैं जो उनको पहले से बताया गया हो। आज हम सभी किसी न किसी तरह एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही हमें इसका पता ना हो। जब हम मोबाइल में गूगल असिस्टेंट या वॉइस असिस्टेंट खोलते हैं, या जब यूट्यूब हमारी पसंद की वीडियोस दिखाता है, या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उस समय हमारी पसंद के सुझाव हमें मिलते हैं, तब एआई ही काम कर रहा होता है। आज एआई लगभग हर क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी वजह से कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो ये सब कैसे और कब शुरू हुआ, आइए इसके बारे में जानते हैं। एआई का विचार पहली बार 1950 के दशक में सामने आया था। प्रसिद्ध वैज्ञानिक एलन ट्यूरिंग ने यह प्रश्न उठाया था कि क्या मशीनें सोच सकती हैं। इसके बाद वैज्ञानिकों ने ऐसे कंप्यूटर विकसित करने का प्रयास किया जो मानव बुद्धि की तरह ही कार्य कर सके। आज ये खुलकर सामने आया है और लगभग हर क्षेत्र में प्रयोग किया जा रहा है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में एआई की वजह से पढ़ाई करने के तरीके काफी बदल गए हैं। पहले छात्रों को किसी एक तरीके से ही पढ़ाया जाता था, लेकिन अब एआई की मदद से लगभग हर छात्र को उनकी ज़रूरत के हिसाब से ही पढ़ाया जा सकता है। ऑनलाइन क्लास, स्मार्ट क्लास, वर्चुअल टीचर्स और अनेक स्टडी एप्लीकेशंस जो छात्रों की मदद कर रहे हैं। इसके अलावा चिकित्सा क्षेत्र में भी एआई इसमें भी बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। कई बीमारियाँ ऐसी हैं जिनका पता लगाने में डॉक्टर की मदद कर रहा है एआई। इसके जरिए कई बीमारियों का उनके प्रथम चरणों में पता लगाया जाता है ताकि इलाज समय पर शुरू किया जा सके। इसके अलावा व्यापार और उद्योगों में भी एआई का बहुत इस्तेमाल होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां ग्राहकों की पसंद समझने के लिए एआई का उपयोग कर रही हैं। आज वेबसाइटें हमें वही चीज़ें दिखाती हैं जिसमें हम रुचि रखते हों या जो हम देखना पसंद करते हों। कारखानों में मशीनें कई काम कम समय में और बिना गलतियों के करती हैं। इसी तरह बैंकिंग क्षेत्र में भी, कृषि क्षेत्र में भी इसके अन्य लाभ हैं, जैसे अलग अलग तरह से लोग इसका उपयोग करते हैं, जैसे मिट्टी की गुणवत्ता समझने में या फिर फसलों हों उनकी बीमारियों का पता लगाने में। इसी तरह बैंक में धोखाधड़ी से बचने या फिर गलत लेन देन की पहचान करने में इसका बहुत उपयोग किया जाता है। तो एआई के फायदों की बात करें तो इसके बहुत सारे लाभ हैं और सबसे बड़ा लाभ है समय की बचत। आजकल भाग दौड़ वाले जिंदगी में जहां लोगों के पास टाइम की बहुत कमी है, वहीं एआई उनके लिए एक वरदान है। जो काम करने में किसी भी व्यक्ति को घंटे लगते हो, वही काम बिना किसी गलती के एआई मिनटों में कर सकता है। और जहां किसी भी व्यक्ति को वही काम करने में मिनटों लगते हो, वहीं वो काम एआई सेकंड में करता है। तो ये लगातार लंबे समय तक बिना थके काम कर सकता है। इससे व्यक्ति का समय और मेहनत दोनों बचता है। लेकिन जहां इसके कुछ फायदे हैं, वहां इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो अब उनके बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ी समस्या इसको लेकर जो सामने आई है वो है बेरोजगारी। जैसे जैसे मशीनें और रोबोट काम करने लगेंगे, कुछ नौकरियों में इंसानों की ज़रूरतें कम हो जाएंगी। परिवार का पालन, बच्चों की शिक्षा, ये सभी चीज़ें, खासकर ऐसे काम जिन्हें बार बार एक ही तरीके से करना होता है, उन पर असर ज़्यादा पड़ रहा है। दूसरा ये कि लोग एआई पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर होते जा रहे हैं। पहले लोग खुद सोचते थे, किताबें पढ़ते थे और जानकारियाँ ढूंढते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे। अब कई लोग हर छोटे छोटे सवाल जवाब सब एआई से पूछ रहे हैं। अगर ये आदत बढ़ गई तो हमारी सोचने, समझने और ख़ुद फैसला लेने की क्षमता कम हो जाएगी, बल्कि ये कहना भी सही रहेगा कि सिर्फ कम ही नहीं बल्कि ख़त्म हो जाएगी। एआई हमेशा हमें सही जवाब दे ये भी ज़रूरी नहीं, कभी कभी ये गलत या अधूरी जानकारी भी दे देता है। अगर कोई बिना जांच किए उसी जानकारी पर भरोसा कर ले तो उसका नुकसान भी हो सकता है। इसलिए एआई से मिली जानकारी को हमेशा किसी भरोसेमंद इंसान या स्रोत से मिलकर देखना चाहिए। इससे फर्जी फोटो, वीडियो, आवाज़ तक फेक बनाई जा रही हैं। अब इन सबको देखकर असली और नकली का फर्क करना बहुत मुश्किल है। इसका गलत इस्तेमाल कर लोगों को धोखा दिया जा सकता है। इसका सीधा प्रभाव हमारे परिवार पर या हमारे अपने रिश्तों पर पड़ता है। बच्चों और छात्रों पर भी इसका गलत असर देखने को मिल रहा है। कई बच्चे अपना होमवर्क, प्रोजेक्ट और आंसर्स AI से ही तैयार करते हैं। इससे उनका समय तो बच जाता है, लेकिन वो खुद सीखने और मेहनत करने से दूर हो रहे हैं। और इसी के साथ इसमें एक सबसे बड़ी समस्या गोपनीयता की भी है। गोपनीयता यानी हमारा जो पर्सनल डेटा होता है वो हम नॉर्मली प्लेटफॉर्म्स पर, इंटरनेट पर, सोशल प्लेटफॉर्म्स वगैरह पर शेयर करते ही हैं। अगर ये किसी भी गलत इंसान के हाथ लग जाए तो ये निजी जानकारी भी हमारी खतरे में पड़ सकती है। और अगर लोग हर छोटी बड़ी चीज़ों के लिए AI पर ही निर्भर रहेंगे तो उनकी अपने सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो जाएगी। वो खुद से किसी बात का निर्णय नहीं ले पाएंगे। तकनीक सिर्फ हमारी मदद के लिए होती है, ना कि हम पूरी तरह उसी पर निर्भर हो जाएं। AI पूरी तरह अच्छा भी नहीं है और इसको हम पूरी तरह बुरा भी नहीं कह सकते। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इसका यूज़ हम कैसे कर रहे हैं। अगर इसका यूज़ हम जिम्मेदारी से करें तो मानव जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन वहीं अगर हम इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करें तो ये हमारी ज़िंदगी नष्ट भी कर सकता है। तो ये चीज़ हमारे अपने हाथ में है कि हम इसको किस तरह से इसका उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि AI एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये हमारे जीवन को बहुत बार सही भी कर देता है। हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको करने में हमें AI की मदद लेनी होती है और वो हमारी हेल्प भी करता है, लेकिन क्या ये चीज़ें सारी सही हैं? ये हमें खुद सोचना होगा कि क्या हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य हम AI के हाथ में दे रहे हैं, क्या वो चीज़ सही है? ये हमारे अपने सोचने पर डिपेंड करता है। तो अभी मुझे आपको इसके बारे में सिर्फ इतना ही बताना था। थैंक यू सो मच।

0: हमें कितना अच्छा रिजल्ट दे सकता है, और अगर हम उसका मिसयूज करें तो वो हमारे लिए और हमारे आसपास के लोगों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है।
1: जी हाँ दोस्तों, अब चलते हैं फरमाइशी प्रोग्राम की ओर, यानी कि गीत आपके नाम, जिसमें हमारे लिसनर्स हमें भेजते हैं फरमाइश।
2: गीत गीत गीत गीत

0: फिर में हमारी गीत आपके,
1: गीत आपके नाम।
2: देखो वाणी, हमारे पास गीत आपके नाम की बहुत सारी फरमाइशें आ भी चुकी हैं, जिसमें से सबसे पहले फरमाइश करता है जसपुर रोड दुल्हापुर जिला बिजनौर से, और भेजने वाले हैं महबूब दुकानदार, बेगम साहिबा महबूब, मोहम्मद समीर अंसारी, मोहम्मद वारिस अंसारी, बेटी अलशिफा अंसारी। इसी के साथ हमें अगली फरमाइश मिली है जलालाबाद वेस्ट से, सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशा और निमित आहूजा। अगली फरमाइश आई है मोहल्ला हलवाई यान शेर कोट जिला बिजनौर से, भेजने वाले हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसार। फरमाइश एक और है हमारे पास जो हमें मिली है किदवई नगर सिद्धपुरा से, और फरमाइश करता है जुबेर अली खान, साहिबा अंजुम खान, नबी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नावेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यसफ अब्बासी, राशिद वारसी। एक और हमें फरमाइश मिली है गंज डुंडवारा से, और भेजने वाले हैं शमशुल कमर राही, साही फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी। और इसी के साथ हमें अगली फरमाइश जो मिली है वो मिली है औरंगाबाद महाराष्ट्र से, और भेजने वाले हैं अनिल कुमार घोट के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोट के, वैष्णवी घोट के, गायत्री घोट के, यगेश घोट के। तो दोस्तों अब आपका और इंतज़ार हम ख़त्म करते हैं और चलते हैं गीत आपके नाम के पहले गीत की ओर, जो हमें फरमाइश करताओं ने भेजी है, करते हैं उनकी फरमाइश पूरी।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
2: हो जाओगे आसास कर लोट कोट,
1: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
3: और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा।
1: जी हाँ, मजा आ गया।
3: तेरी बीवी ना फालतू के खर्चे करती रहती है, तेरे बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है वो, समझा?
4: तो क्या करूँ अम्मा मैं, तुम ही बताओ।
3: बस में कर उसे अपने बस में।
4: अरे वो छोड़ो अम्मा, आज वो माई के जाने का कह रही है तो मैं उसे बस में बैठा कर आता हूँ।
3: हाँ बस उसे बस में ही बिठा सकता है तू, बाकी बस में तो वो तेरे है ही नहीं।
1: जी हाँ, मजा आ गया।
5: दोस्तों प्रोग्राम में आपका फिर एक बार स्वागत करते हैं। तो चलो सलोनी जान लेते हैं गीत आपके नाम सेगमेंट में हमें अगली फरमाइश कहाँ से आई है।
6: अगली फरमाइश बोल रही हो वाणी तुम, हमें फरमाइशों की पूरी लिस्ट आ चुकी है हमारे पास। और दोस्तों हमें अगली फरमाइश आई है रामपुर रोड हल्द्वानी उत्तराखंड से। इसी के साथ हमें अगली फरमाइश आई है उत्तराखंड से। और अगली फरमाइश हमें मिली है किदवई नगर सिद्धपुरा से। और भेजने वाले हैं नवी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, राशिद वारसी। इसी के साथ हमें एक और फरमाइश दोस्तों मिली है और फरमाइश भेजने वाले हैं वडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू, टॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा। इसी के साथ दोस्तों हमें फरमाइश एक और मिली है गीत आपके नाम के लिए। और ये फरमाइश दोस्तों हमें मिली है नगीना से और भेजने वाले हैं अनिल विनोचा, अक्षय विनोचा, शमी विनोचा, कनिका अरोड़ा, गीत अरोड़ा, सहज अरोड़ा। तो दोस्तों चलिए सुनते हैं इनकी फरमाइश पर आज का ये दूसरा गीत।

दोस्तों, गीत आपके नाम की अगली फरमाइश भी हमारे हाथों में आ चुकी है और फरमाइश करता है नेपाल नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। इसी के साथ दोस्तों हमें अगली फरमाइश मिली है और फरमाइश भेजने वाले हैं राहुल नंगली से शिव सरस्वती, शिशु मंदिर से प्राची शर्मा, लक्षिता चौहान, निधि रानी। अगली फरमाइश भी हमारे हाथों में आ चुकी है जो है अमरोहा नई बस्ती पतई खालसा से और भेजने वाले हैं बहारुल हसन सिद्दीकी थाना टीन मोहल्ले से, मोहम्मद आलम सिद्दीकी TW वाले इरफान, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, अनाबिया सिद्दीकी, बिटिया अलीशा सिद्दीकी। अगली फरमाइश हमें आई है मथुरा, कृष्ण नगरी मथुरा से सबा अंसारी, शकील अंसारी, हिना अंसारी, बुशरा अंसारी, गुलिस्ता रानी, नंदनी, अंजलि। और दोस्तों एक और फरमाइश मेरे पास है जो हमें मिली है महल कासगंज से और भेजने वाले हैं आबाद खां, नवीन खां, आरफा खां, इल्मा खां, एम असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली, इरफान कुरेशी। दोस्तों हमें बहुत खुशी होती है जब हमारी फरमाइशें इतनी दूर दूर से आती हैं। इसका मतलब है कि हमारे श्रोता हमें बहुत ही दूर दूर से सुन रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज है कि हम उनकी फरमाइश को पूरा करें। तो चलिए चलते हैं गीत आपके नाम की इस प्यारी सी फरमाइश की ओर।

0: दोस्तों, ये जो आपने प्यारा सा सॉन्ग सुना, इसके लिए हमें फरमाइश आई थी गंगा सिंह रावत जी की, रामपुर रोड, हल्द्वानी, उत्तराखंड से। तो दोस्तों,
1: ये था हमारा आज का कार्यक्रम। हम उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम आपको कैसे लग रहे हैं, आप हमें खत के जरिए भी बता सकते हैं। खत के लिए हमारा पता नोट कीजिए। कार्यक्रम युववाणी अनुभव द्वारा, केंद्र निर्देशक आकाशवाणी, नजीबाबाद, पिन कोड 246763।
0: इसी के साथ दोस्तों, पेन और कॉपी उठा लीजिए और नोट कर लीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, जो है 9457078288। इसी के साथ दोस्तों, आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपडेटेड रहने के लिए हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है आकाशवाणी नजीबाबाद। साथ ही पुराने प्ले कहानियां, आने वाले प्रोग्राम हमारे यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। आप सभी लाइक, शेयर, कॉमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और इसी के साथ अपनी साथी सलोनी
1: और वाणी कौशिक को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति।
0: नमस्कार।

0: अभी हमारे युवा श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजने को है। थोड़ी ही देर में दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का युवा अब दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। कर्नाटक के मैसूरु में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार सदैव ऊंचे रहे और उन्होंने शास्त्रों का आत्मसात किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैसूरु भारत की अनादि सांस्कृतिक चेतना का केंद्र है।
2: मैसूरु भारत की अनादि सांस्कृतिक चेतना का केंद्र रहा है। यहाँ के मंदिर, यहाँ की परंपराएं और उत्सव, मैसूरु का दशहरा, यहाँ के भव्य महल, इसका संगीत और साहित्य, भारत की विरासत इस शहर के कण कण में रची बसी है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीतारामा राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना तथा औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आंध्र और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती है।
2: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों, युवा क्लबों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज भलसवा कचरा निस्तारण स्थल का निरीक्षण किया और दिल्ली नगर निगम के अपशिष्ट निपटान कार्यों की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी गई कि 31 जुलाई तक कचरा निस्तारण स्थल पर लगभग 99 लाख मीट्रिक टन अपशिष्ट का निपटान किया जा चुका है और शेष अपशिष्ट को इस वर्ष 15 अक्टूबर तक निपटाने की उम्मीद है। श्री लाल ने नगर निगम को निर्देश दिया कि लैंडफिल साइट पर आने वाले नए अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए हाल ही में आवंटित कार्य में तेजी लाई जाए। केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि 10 अगस्त को निर्धारित नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अब तक भारत ने 3 और स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। मुक्केबाजी में प्रीति पवार ने 54 किलो और जैस्मिन ने 57 किलो में स्वर्ण पदक जीते। 55 किलो में जादूमणि सिंह ने रजत पदक जीता। इसके अलावा सोनम राणा ने पैरा एथलेटिक्स के शॉट पुट F57 वर्ग में पहला स्थान हासिल किया। शुभम जोयाल को रजत पदक मिला। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत और सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पदक तालिका में भारत 8 स्वर्ण 15 रजत और 7 कांस्य समेत कुल 30 पदकों के साथ छठे स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषिगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया आलोक कुमार गंगाराम
1: और आपके भैया सुवेंद्र सिंह झुमरू की
0: राम राम।
1: तो भाई गंगाराम।
0: हाँ भैया झुमरू।
1: अरे कैसे हाल चाल है भाई? सब राजी खुशी?
0: भाई सब बढ़िया। देखो मुंजी लगा दी हमने।
1: अच्छा भैया।
0: और भैया गन्ने में जो है अपना अब कोई काम ही ना रहा था, बंधाई बंधाई चल दी, मिट्टी चढ़ा दी थी, सब काम ठीक चले। आप तो
1: भाई देखो खेती बाड़ी में तो भैया देखभाल जरूरी है
0: जी।
1: और भाई इससे पहले कि हम खेती बाड़ी की बात करें या भैया दूसरी बात करें,
0: हाँ।
1: भाई सबसे पहला भाइयों ने ये बताओ दें कि भैया आज है शनिवार।
0: बिल्कुल।
1: और भैया हर शनिवार को हमारे किसान भाई सुन रहे हैं लोकगीत तो और रागनियों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो लोकमंजरी।
0: बिल्कुल।
1: तो भाई आज भी हम ये कार्यक्रम लेकर आए हैं। और भैया अगर हमारे किसान भाई अपनी पसंद की रागनी लोकगीत सुनना चाहते हैं,
0: हाँ।
1: तो भैया वे अवसर लेकर और शाम के 6:40 तक
0: हाँ।
1: भाई हमारे स्टूडियो में सीधे फोन कर सकते हैं। और भैया फोन करने के लिए नंबर आप बता दो जल्दी से।
0: बिल्कुल भैया। तो हमारा नंबर है 94-57-07-82-88।
1: ठीक
0: भैया एक नंबर तो यो है, दूसरा नंबर एक और बता दूं मैं भैया। पहले वो है लैंडलाइन नंबर, पहले नजीबाबाद का भैया एसटीडी कोड लगाओ 013-41।
1: ठीक।
0: और भैया फोन नंबर है 230-105। तो इनमें से किसी एक नंबर पर भी आप फोन करके अपनी पसंद की रागनी या लोकगीत सुन सकते हैं आप।
1: तो भाई देखो ये हो गई है फरमाइश की बात। तो भैया अगर आप जो है अपनी पसंद की रागनी लोकगीत सुनना चाहते हैं तो भैया फोन लगाना शुरू करो और भाई हम जो जब लो जो थोड़ी सी बातचीत कर ले।
0: बिल्कुल, बातचीत तो भैया जरूरी है।
1: हाँ।
0: देखो आज जो हम बातचीत का अपना सिलसिला है वो भैया एक महत्वपूर्ण योजना से करते हैं।
1: तो भैया वो योजना कौन सी जरा ये भी बताओ।
0: भैया देखो हमारे किसान भाई सब जानते हैं और इस योजना के आने से उनके चेहरे भी खिल गए थे। वो योजना भैया VVG राम जी।
1: बिल्कुल।
0: और भैया देखो ये योजना जो है बहुत ही प्रभावशाली योजना है। अगर हम इसके पूरी बात करें तो इसका जो पूरा नाम है वो है विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन।
1: बिल्कुल।
0: और भाई हमारे पूरे भारत में जो 1 जुलाई 2026 से लागू हो गई, और भाई इसकी कोई खास बात जो है उनकी भी चर्चा करेंगे।
1: बताओ भैया वो बहुत जरूरी है। देखो भैया विकसित भारत जो हमारी योजना है भाई यो हमारे ग्रामीण भारत का कायापलट करेगी।
0: सही बात है।
1: क्योंकि भैया पहले जो हमारी योजना थी मनरेगा भाई वो भी बहुत बढ़िया योजना है।
0: बिल्कुल।
1: और उसमें जो है हमारे ग्रामीण भाइयों को रोजगार मिला और भैया बहुत सारे जो है ऐसे कार्य हुए जैसे भैया जो हमारे चक्रोड़ हो रास्ते हैं उनके मरम्मत का कार्य है। यानी कि भैया इसके माध्यम से कच्चे कार्य भी हुए पक्के कार्य भी हुए, यानी कि भैया हमारे जो ग्रामीण भारत है उसकी तस्वीर बदली।
0: बिल्कुल। तो भाई देखो योजना तो वैसी है वो, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करा गया।
1: अच्छा।
0: वो यो है कि देखो मनरेगा में था 100 दिन के रोजगारी गारंटी।
1: अच्छा।
0: इसमें 100 दिन से बढ़ा कर दिया 125 दिन।
1: बहुत बढ़िया भैया।
0: और दूसरी बात यो है कि भाई एक इसमें बदलाव यो हुआ है कि इसमें राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार है जो सामान्य जो स्थिति है उनमें 60-40 के अनुपात में जो है मतलब कहने का हिस्सेदारी होगी।
1: हाँ, हाँ, की। अच्छा।
0: और भाई बात यू आई कि मनरेगा की सबसे महत्वपूर्ण बात यू रही कि इसमें जो मजदूरी है वो ये 300 रुपए हो गई।
1: ये बहुत बढ़िया भाई। देखो मजदूरी भी बढ़ गई है। और भैया इसकी खास बात एक और भी है।
0: हाँ।
1: भैया वो यो हो कि इसमें सरकार ने यो भी तय करा कि जब खेती बाड़ी के काम होते हैं तो भैया उस टाइम पर लेबर की आवश्यकता होती है। तो यो भी निश्चित करा गया कि भाई जब खेती बाड़ी से फसल की बुआई है कटाई है तो इस टाइम पर योजना नहीं चलने की है। तो भैया उस टाइम पर हमारे किसान भाई है जो हमारे मजदूर भाई है वो खेती बाड़ी में मजदूरी करेंगे और भैया बाद में जब काम नहीं चलता है तो उस टाइम पर इस योजना के माध्यम से रोजगार मिलेगा।
0: बिल्कुल। देखो भाई गाँव में जो कुछ ऐसे काम थे जैसे जल सुरक्षा की बात।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: तो वो भैया बिना मजदूरों के काम करने के हो नहीं सकते थे। तो देखो बड़ी अच्छी बात यह कि जल सुरक्षा को इसमें लिया है, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को लिया है, आजीविका मिशन को लिया है और मौसमी जो बदलाव है उनके अनुरूप जो काम होते हैं उनको लिया है। तो कुल मिलाकर जो है काम भी इसमें बहुत सारे हो गए।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: साथ साथ भैया किसान भाइयों की समस्या रह थी कि भैया जब गन्ने की छिलाई हो या गेहूं की कटाई हो या मुंजी की छिताई हो तो भैया उस टाइम मजदूर नहीं मिलते।
1: हाँ।
0: तो भैया उसमें 60 दिन के विराम का भी प्रावधान है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई देखो बहुत बढ़िया बात है।
0: हाँ।
1: और निश्चित तौर पर भैया जो योजना है रोजगार की और ग्रामीण आजीविका की यो ग्रामीण विकास में मील का पत्थर साबित होगी भैया।
0: बिल्कुल। तो भाई देखो ये तो बात हो गई इस योजना की। अब कहो तो थोड़ी सी और कुछ भी बात कर लें।
1: बिल्कुल भैया बातचीत करते हैं लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं यो कुछ संदेश।
0: ठीक है भैया।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: जरूरी संदेश सुने और भाई अब आगे की बात कर लेते हैं।
1: बिल्कुल, देखो भैया बात बहुत जरूरी है। और देखो भैया हमारी फसल जो है खेतों में खड़ी है, मैं देखो धान की फसल है।
0: हाँ।
1: उसकी देखभाल हम कर रहे हैं।
0: ठीक।
1: साथ ही गन्ने की फसल हमारे खेत में खड़ी है, तो किसान भाई गन्ने की बधाई कर रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: और
0: सही।
1: उसकी देखभाल हम कर रहे हैं। और भाई इसके अलावा देखो अभी हमारे बहन भाइयों ने पिछले महीने भाई उड़द मूंग की बुआई करी है ना भैया, और कुछ हमारे किसान भाई अभी भी पछेत्ती बुआई कर रहे हैं, तो भैया उड़द मूंग की देखभाल करना भी बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, देखो जो आपने जो बात करी है ना उड़द मूंग की देखभाल की, तो देखभाल में भैया तीन प्रमुख बिंदु आते हैं।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: भाई एक तो आता है भैया सिंचाई का, और सिंचाई की जहां तक बात हो तो बरसात हो रही।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: सिंचाई का काम तो हो या नहीं। दूसरी बात यो है कि भाई आती है खरपतवार नियंत्रण, तो हमारे किसान भाई को ध्यान ही देना चाहिए कि भाई अगर उसमें ज्यादा घास फूस हो रही है तो भैया उसकी सफाई के इंतजाम करें। और तीसरा और महत्वपूर्ण जो बात आती है वो आती है भैया कीट नियंत्रण की।
1: बिल्कुल।
0: और भैया देखिए उड़द मूंग में कीट बहुत लगते हैं।
1: हाँ भाई देखो कमला कीट इसमें काफी नुकसान पहुंचाता है।
0: हाँ।
1: पत्ती खा लेता है। और भैया इस टाइम पर जो हम इसमें विशेष महत्वपूर्ण काम करना भैया वो ये हो कि भैया घने पौधे जहाँ पर हैं, तो भैया घने पौधों को उखाड़ कर भैया में विरलीकरण करना है, और पौधे से पौधे की जो हमारी दूरी है भैया वो लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर हमें करनी है। तो इस तरीके से हमारे जो पौधों का विकास हो वो अच्छा होगा और बढ़वार उनमें बढ़िया मिलेगी। तो भैया घने पौधों को हम उखाड़ना है। साथ ही भैया आपने देखा होगा कि हमारे उड़द पीले पीले से हो जाए।
0: बिल्कुल।
1: और पत्तियां एठी मेठी से हो जाए, तो भैया उसे बोलते हैं पीला चित्त वर्ण रोग।
0: बिल्कुल, यो रोग इसमें महत्वपूर्ण। तो भाई देखो अगर यो रोग हो जावे तो इसका नियंत्रण तुरंत करियो।
1: तो भाई देखो यो है तो रोग, लेकिन ये होता है एक कीट की वजह से।
0: सही बात
1: भैया, हमारे जो फसल में सफेद मक्खी लगती है, सफेद तितली सी।
0: हाँ।
1: तो अगर हम अपनी फसल में सफेद तितली सी दिखाई दे रही है उड़ती हुई या बैठी हुई, तो आप ये समझ लो कि भैया वो पीला चित्तवर्ण रोग आने वाला है।
0: सही बात।
1: तो वो पीला चित्तवर्ण रोग हमारी फसल में ना आवो, तो भैया इसके लिए हम जो वो सफेद तितली है भैया उसका इंतजाम करना है।
0: सही कह रहे हैं आप। तो भाई देखो उसके इंतजाम की बात यह है कि भाई मजबूरी आ गई कि हमें जो है दवाई डालनी पड़ेगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो इसके लिए प्रमुख दवाई है वो है डाइमेथोएट 30% ईसी जो है, या मेलाथियन 50% ईसी की जो है निर्धारित मात्रा का छिड़काव करें। या जहां तक निर्धारित मात्रा की बात है तो 2 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में जो है घोल लें, इस हिसाब से घोल बनाकर आप छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरह भैया आपके जो ये फसल है इस पर इसका नियंत्रण हो जाएगा।
1: बिल्कुल। तो भाई इस तरीके से हमारे किसान भाई उड़द की फसल ले सकते हैं और भैया बढ़िया उत्पादन इसका कर सकते हैं। तो भाई देखो गंगाराम
0: जी,
1: भाई अब तुम्हारे किसान भाई बहन जो अपनी पसंद के लोकगीत और रागनियों का इंतजार कर रहे होंगे भैया।
0: बिल्कुल। तो भैया बातचीत का सिलसिला यहीं रोकते हैं और शुरू करते हैं आज का विशेष कार्यक्रम
1: जिसका नाम है
0: हेलो लोक मंजरी।

0: तो स्वागत है हमारे सभी बहन भाइयों का आज के लोकगीतों व रागिणियों के फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी में। और इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपका भैया सुबेंद्र सिंह झुमरू,
1: और मैं हूं आपका भैया आलोक कुमार गंगाराम। तो शुरू करते हैं आज का हेलो लोक मंजरी। और भैया देखो पहली कॉल आ गई।
0: बिल्कुल भैया, देखते हैं कि हमारे कौन भाई लाइन पर। हेलो,
2: हेलो, नमस्कार गंगाराम जी।
0: हाँ नमस्कार जी, नमस्कार।
1: कौन भैया बोल रहे हैं, अपना नाम बता दीजिए।
2: राम राम, मैं सतीश बात कर रहा हूँ, कानपुर से, फरुखाबाद जिला कानपुर से। मैं भी खेती बाड़ी करता हूँ, अभी तो धान के खेत में लगा दिए।
1: क्या नाम बताया आपका, नाम नहीं हम सुन पाए ठीक से।
2: सतीश।
0: सतीश,
1: अच्छा।
0: तो कौन सा धान लगाया आपने सतीश जी?
2: अरे वो साज लगाया, साज।
0: साज,
2: हाँ।
0: अच्छा,
2: पैदावार
0: अच्छी होती है आपके यहाँ उसकी पैदावार?
2: हाँ, पैदावार ज्यादा होती है। मक्का का काट के तो धान लगा दिया है, फिर धान आने का है, तो फिर जो सरसों की बुवाई करेंगे।
0: हाँ हाँ,
2: तो सरसों की तैयारी करने वाले हैं।
1: अच्छा, आपके यहाँ बारिश कैसी हुई है?
2: बारिश सही होती है, जैसे ज्यादा खूब बारिश नहीं हुई है, लेकिन जो है बारिश हुई है।
1: अच्छा,
0: अच्छी बारिश हो रही है आपके यहाँ।
2: हाँ,
0: तो और बताइए खेती
2: आपके। अब खेती बाड़ी जो किसान बाड़ी कोने प्रोग्राम है वो जो बहुत अच्छा लगता है सबका।
0: अच्छा
2: प्रोग्राम अच्छा लगता।
0: अच्छा, इसमें हम जो जानकारी आपको दिलवाते हैं वो अच्छी लगती है आपको, काम आती है वो?
2: हाँ, मुझे समझ में आती है। बहुत सारी जानकारी, दवाई वगैरह देते हो, आपको बताते हो ऐसा दवाई डालना चाहिए, तो वो भी जानकारी मिलती है।
0: जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बताइए आज इस कार्यक्रम में क्या सुनना चाह रहे हैं आप अपनी पसंद से?
2: आज रागिनी या ढोला कोई बढ़िया सा सुना दीजिए किसी आवाज में, बहुत अच्छा लगेगा आपके निजी आवाज के अंदर।
0: जी बिल्कुल, तो हम आपको सुनवा रहे हैं महाशय ब्रह्मदेव से ये देशभक्ति की रागिनी।

0: सारी दुनिया बदल रही, तुम भी बदलो, कुछ ध्यान करो और देशवासियों मिलकर के देश का निर्माण करो। तो बहन भाई ने सुना अपनी पसंद पर ये महाशय ब्रह्मदेव वादे से ये प्यारी सी रागनी। और गंगाराम भाई,
1: हाँ झुमरू भाई,
0: भाई देखो हम सारे देशवासियों को
1: बिल्कुल
0: भैया अपने देश के विकास में सहयोग करना है, और भाई हम जो भी काम करें भैया वो हमारा काम देश के विकास के लिए हितकारी होना चाहिए।
1: बिल्कुल, देखो भाई हम दुनिया, हम देश के जितने भी वासी हैं भैया, चाहे हम कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे भैया हम किसान हैं, चाहे मजदूर हैं, चाहे दुकानदार हैं, या जो भी काम कर रहे हैं,
0: बिल्कुल,
1: तो अगर हम उसकी तरक्की करते हैं, उस काम में तरक्की करते हैं,
0: हाँ हाँ
1: तो वो देश की तरक्की होती है।
0: बिल्कुल,
1: हमारे किसान भाई अगर अच्छी फसल उगा रहे हैं तो वो देश के लिए फायदा कर रहे हैं।
0: हाँ हाँ हाँ
1: तो हर काम को पूरी ईमानदारी के साथ और यो सोच कर करना चाहिए कि भैया यो पूरे देश की इसमें इज्जत शामिल है, तो वही बात इसमें सुनने को मिली है ना।
0: बिल्कुल। और देखिए फरमाइशी कार्यक्रम चल रहा है लोकगीत और रागनियों का, और हमारे किसान भाई चाहते हैं अपनी पसंद का लोकगीत रागनी सुनना, जो तो वो अभी हमारे कार्यक्रम में हमारे स्टूडियो में फोन कर सकते हैं, और फोन करने हमारे नंबर हैं
1: भैया, हमारा फोन नंबर आप नोट कर लो, 9457072888 एक फोन नंबर है, और दूसरा भैया हमारा लैंडलाइन नंबर है 01341230105। इनमें से किसी भी एक फोन नंबर पर आप फोन करके अपनी पसंद के सीधे रागनी या लोकगीत सुन सकते हैं।
0: बिल्कुल। तो अब देखते हैं कि हमारे कौन भाई लाइन पर हैं। हेलो,
2: हेलो भाषा, नमस्ते।
0: नमस्ते नमस्ते
2: जी, मैं उत्तराखंड चेनीखाल चेनगांव फैक्ट से प्रकाश चंद बोल रहा हूँ।
1: जी प्रकाश जी, कैसे हैं?
2: भाषा मैं तो बढ़िया हूँ, आप लोग सब बढ़िया, और आकाशवाणी में समस्त स्टाफ सब बढ़िया।
1: जी बढ़िया है, बिल्कुल। पहाड़ पे मौसम कैसा है बताओ?
2: भाषा मौसम आज दिन में धूप खिली थी, सुबह बारिश थी।
0: अच्छा अच्छा, तो और आपकी
2: मौसम ठीक, मतलब ठीक है मौसम, शाम को तो ठीक हो गया।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए कि ये खेती बाड़ी आपकी कैसी चल रही है?
2: वैसा खेती बाड़ी बहुत बढ़िया चल रही है, मतलब इस टाइम ऐसे हो रहा है कि बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि बारिश भी ज्यादा नहीं हुई, बहुत अच्छी तरह से बारिश हो रही, मतलब अच्छी तरह कम हो रही, कम।
0: हाँ हाँ
1: हाँ, तो आज क्या
2: अच्छा जी,
1: क्या सुनना चाहेंगे आज आप?
2: वैसा वो लाल चूड़ी लेके आया मनियारा।
1: अच्छा,
2: और मेरा परिवार भैसा, मेरा परिवार उज्जवल कुमार, कनुप्रिया, मंजू देवी
1: जी,
2: और मेरी एक भतीजी है समृद्धि, और भतीजा है सिरमोर, और भैसा एक भैसा और है क्या कहते हैं मदन गिरी जी और सत्यवीर जी आचार्य जी, ये रेडियो के बहुत शौकीन है भैसा।
1: जी जी जी,
0: तो बिल्कुल ठीक है जी, अपने परिवार के साथ और अपने सभी मित्रों के साथ में सुनिएगा सुरेश वाडेकर और दिलराज कौर की गाय ये प्यारी सा हरियाणवी लोकगीत।

0: दूर देश ते आया मनिहारा, रंग बिरंगी चूड़ी लाया मनिहारा। तो भाई गंगाराम,
1: हाँ भैया झुमरू,
0: मैं देखो सावन का महीना है और सावन के इस महीने में देखो कांवड़ तो चलती है, साथ ही भाई हरियाली तीज भी आती है और उसमें भैया झूलों की और चूड़े की बात तो होती है।
1: बिल्कुल भाई, देखो सिंदारे का भी चलन है। तो जो है भैया, लड़कियों के माँ बाप जो हैं, या पीहर वाले कह दो
0: जी
1: भैया, वो चूड़ी भेजते हैं या श्रृंगार का सामान भेजते हैं।
0: हाँ
1: तो उसी तरीके के भैया एक परिचित्र इसमें खींचा गया था,
0: बिल्कुल।
1: बहुत बढ़िया रहा है।
0: और भैया देखे, जो हमारी माताएं हैं बहनें हैं उनको बड़ा चाव होता है भैया चूड़ी पहनने का, और खास करके सावन के महीने में जब हरियाली तीज आती है तो इस समय तो रंग बिरंगी चूड़ियां पहनने का अपना ही अलग रिवाज है, अपनी ही एक हमारी परंपरा रही है।
1: बिल्कुल। तो भाई देखो, इन सबको चरितार्थ कर रहा था ये लोकगीत। और भैया अब एक और फोन सुन लेते हैं। हेलो,
2: हेलो,
1: हाँ जी, कौन भैया बोल रहे हैं?
2: जी मैं आलोक कुमार जी, मैं सेवाड़ा से बोल रहा हूँ। मुस्तकीम,
1: जी
2: गुड
1: मुस्तकीम भाई।
2: इवनिंग, नमस्ते, सलाम जी,
0: हाँ
2: कैसे हैं
0: नमस्कार
2: आप?
0: जी, सलाम,
1: नमस्कार,
2: मैं आप आकाशवाणी परिवार में सब लोग कैसे हैं?
0: बिल्कुल जी, बहुत ठीक ठाक है। आप बताइए, आपके
2: जी
0: परिवार में कैसे, क्या काम करते हैं आप?
2: जी मैं छोटी सी दुकान चलाता हूँ सर,
0: अच्छा
2: और मैं टीचर भी हूँ, विद्यालय में पढ़ाता भी हूँ।
1: चलो, बहुत अच्छी बात है। तो ये बताइए, आपके यहाँ मौसम कैसा हो रहा है?
2: सर मौसम तो इस वक्त जो है, मतलब जो है, आज तो जो है धूप थी, गर्मी है इस वक्त, तो
1: अच्छा,
2: बारिश
1: बारिश
2: बारिश
1: हुई?
2: नहीं हुई है,
1: बारिश नहीं
2: अच्छा
1: हुई
2: अच्छा
1: है,
0: अभी एक दो दिन पहले
2: वर्षा नहीं
0: तो,
2: हुई थी।
0: एक दो दिन पहले तो बारिश हुई है।
2: जी हाँ, एक दो दिन पहले तो बारिश हुई थी, और अब बारिश, अब तो मौसम खुला हुआ है।
0: हाँ ठीक है, बिल्कुल। देखिए बीच बीच में ये अंतराल आते रहते हैं और ये हमारी फसलों के
2: जी
0: लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं अंतराल भी आने।
2: जी जी
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए इस कार्यक्रम में क्या सुनना चाह रहे हैं आज आप?
2: मैं वीर वीर वीर जरा भी जो रागनी है बुनेर की, देखिए वो सुनना चाहो।
0: जाहर
1: अच्छा,
0: वीर,
1: जाहरवीर की,
2: जाहरवीर की जो, जी
0: अच्छा
2: जाहर
0: अच्छा
2: वीर की जो रागनी है बुनेर की, देखिए वो सुनना चाह रहा हूँ।
0: बिल्कुल। तो देखिए हम आपको सुनवा रहे हैं भुवनेश गिरी की ये रागनी, लेकिन
2: जी
0: उससे पहले ये जानना चाहेंगे आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है कृषि जगत?
2: देखिए मैं आपका कार्यक्रम रेगुलर सुनता हूँ, और ये इसमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मुझे मिलती है, जैसे हम लोग किसान हैं, गन्ने के बारे में, और जो है खेती के बारे में, और
1: जी
2: पेड़ों के बारे में, मुझे जो है नर्सरी के बारे में, जो है बहुत सारी जो जानकारियां विशेषज्ञ के द्वारा काफी जो है नॉलेज बढ़ रही है हम लोगों की, और हम इससे जो है लाभ भी उठा रहे हैं बराबर खेती के अंदर।
1: ठीक है साहब,
0: जी
1: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद की ये रागनी।

0: ओगरनाथ ने अलग जगह के द्वार पे पहुंचा जाई। तो भाइयों ने रागनी सुनी भीम भुवनेशगिरी से
1: जी,
0: और वह किस्सा था जहरवीर का। और देखो भैया, बात यह है कि हमारा जो समाज है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है भाई, देखिए उसमें संत हमारे जो हुए हैं, जो महात्मा हुए हैं, उनसे हमारा समाज बहुत अधिक प्रेरणा लेता है।
1: बिल्कुल। देखो, जहाँ तक भैया जहरवीर की बात है, तो आने वाले 15 दिन के बाद जहरवीर का पूरा वो चल जाएगा। वहाँ जगह जगह पर मेले लगने शुरू हो जाएंगे
0: बिल्कुल,
1: और भैया उनका पूजन यापन किया करना शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर एक जहरवीर का समय चल रहा है। तो उसके देखते हुए भैया ये बहुत अच्छी रागनी हमारे किसान भाइयों ने सुनी, और मैं समझता हूँ कि आज के समय के हिसाब से सार्थक भी रही।
0: बिल्कुल भाई, देखिए और जहरवीर का जो है निशान है भैया, उसमें निशान होता है और माड़ी पर हमारे भाई जाते हैं, अपनी कामना करते हैं, और भैया मेले लगते हैं, वहाँ पर जो है प्रसाद अर्पित किया जाता है।
1: हाँ
0: तो भाई देखो, ये रागनी हो गई है, और हमारे भाई अगर अपनी पसंद की रागनी सुनना चाहते हैं तो जल्दी से हमें फोन कर सकते हैं। और भैया नंबर आप एक बार फिर बता दो।
1: भैया हमारा नंबर है 9457-07-82-88। और भैया एक और फोन नंबर हमारा 0-43-230-105। तो देखो मैंने इधर नंबर बताया और एक हमारे साथी लाइन पे आ गए।
0: तो भैया देखते हैं कौन है लाइन पर।
1: जी
0: हेलो।
2: हेलो
1: हाँ जी, हेलो
2: सर जी,
1: लोकमान जी।
2: नमस्ते।
0: नमस्कार जी, नमस्कार।
2: मैं अमित धीमान बोल रहा हूँ
0: जी। अमित धीमान जी कहाँ से बोल रहे हो?
2: तिरतपुर के पास कसौर गांव से सर।
0: अच्छा, कसौर से बोल रहे हो।
1: क्या काम करते हो अमित जी आप?
2: सर वैसे तो खेती करते हैं
1: जी,
2: खेती थोड़ी वो जैसे ही जैसा काम मिलता वैसा ही कर लेता हूँ मैं।
1: अच्छा जैसे इस समय चल रहा है, आपने कोई पौध-वौध भी लगाई नहीं इस बार?
2: हाँ पौध लगाई है सर, अमरूद का पेड़ लगाया।
1: अच्छा, बाकी ये यूकेलिप्टिस और ये पॉपुलर और नीम बकेन वगैरह ये नहीं लगाई अभी तक हैं?
2: ये नहीं लगाई सर।
1: अच्छा अच्छा
0: अच्छा हम जानना चाह रहे हैं, जैसा आपने अपना गांव का नाम बताया कसौर।
2: हाँ जी हाँ।
0: तो थोड़ा इसके बारे में बताइए, क्यों इसको कहते हैं कसौर? कुछ है इस बारे में कोई बात या चर्चा?
2: ना बस ऐसा तो कुछ नहीं है। खैर
1: अच्छा,
2: हमारे गांव में वैसे आर्य समाज की मंदिर है और प्रचलन ज्यादातर लोग आर्य समाज से जुड़े हुए हैं।
0: अच्छा अच्छा, बिल्कुल, देखिए अच्छी बात है, आस्था की बात है।
1: तो क्या सुनना चाह रहे हैं आज आप?
2: सर हम रागनी सुनवा देना श्रवण कुमार की।
1: अच्छा,
2: भीम सिंह की आवाज में, और एक बम सुनाना चाहता हूँ मैं।
0: हाँ सुनाइए।
2: बम अभी सुनाता हूँ
1: जी,
2: दिमाग से उतर गई सर। चलो नहीं सुनाता फिर।
0: चलिए कोई बात नहीं,
2: दिमाग से उतर गई।
0: बिल्कुल कोई बात नहीं, अगली बार आप प्रयास कीजिए। तो आपकी पसंद हाँ। पर हम आपको सुनवा रहे हैं भीम सिंह की गाय ये श्रवण कुमार के किस्से की रागनी
2: जी।

0: तो अभी भाई ने सुना ये लोकगीत भीम सिंह से, किस्सा था श्रवण कुमार का, और अब देखते हैं कि हमारे कौन भाई लाइन पर हैं। हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, हेलो लोकमंज जी, कौन भैया बोल रहे हैं?
1: जी, मैं जिला मुरादाबाद ग्राम ध्यानपुरा साबिर अली बोल रहा हूँ।
0: जी
1: जी
0: साबिर अली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
1: हाँ जी, बढ़िया साहब, आप कैसे हैं?
0: बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बताइए क्या काम करते हैं आप?
1: ये हमारा किसानी का काम है, कुछ थोड़ा कुछ किराने की दुकान चलाते हैं।
0: अच्छा, तो खेती बाड़ी ठीक चल रही है आपकी, क्या लगा रखा?
1: इस टाइम साहब बढ़िया गन्ना बढ़िया खड़ा है साहब, मगर बारिश कम हो रही है थोड़ी।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो क्या सुनेंगे आज लोकमंजरी में?
1: आज कोई कोई नहीं, सावन का गीत सुना दो।
2: अच्छा, लोकगीत कोई सावन का।
1: जी जी जी
0: तो
1: जी
0: ठीक है, आपको सुनवाते हैं सावन का ये प्यारा सा लोकगीत।

0: सावन आया अम्मा मेरी। तो ये था रजनी टोंक की आवाज में सावन लोकगीत। और गंगाराम भाई,
1: बिल्कुल हाँ भाई, अब देखो चलते चलते कुछ मौसम की जानकारी देते हैं किसान भाइयों को।
0: तो भाई देखो मौसम की जानकारी जल्दी से बताओ भैया।
1: तो देखो भाई, मौसम की चिट्ठी हमें प्राप्त हुई है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ के मौसम विभाग से। इनके अनुसार भैया आने वाली भैया 4 और 5 तारीख को भैया बारिश की संभावना है, और भैया 3 तारीख तक मौसम थोड़ा सा शुष्क रहेगा, बादल आसमान में छाए रहेंगे। तो ऐसे मौसम को देखते हुए अपने कृषि कार्यों को अंजाम दें। मैं
0: बिल्कुल। तो भाई ये थी मौसम की जानकारी। और भैया अपनी पसंद के लोकगीत और रागनी सुनने के लिए प्रत्येक शनिवार को हमारे किसान भाई सुनते रहे लोकगीतों और रागनियों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम, जिसका नाम है
1: हेलो लोक मंजरी।

0: तो किसान भाइयों ने भैया कार्यक्रम सुना हेलो लोक मंजरी। तो भाई आपको बता दें कि ये कार्यक्रम हमारा प्रत्येक शनिवार को यह प्रसारित होता है।
1: बिल्कुल।
0: और आप भी अपने पसंद की रागनीय लोकगीत सुनना चाहते हैं तो हमें प्रत्येक शनिवार को फोन कर सकते हैं 6:05 से लेकर 6:45 के बीच में।
1: बिल्कुल।
0: फोन नंबर कहूँ तो बताओ दें एक
1: बार। बताओ भैया जल्दी से।
0: भैया हमारा फोन नंबर है 9457082888। एक और नंबर है भैया नजीबाबाद का एसटीडी कोड लगाओ 0341 और 230105।
1: तो भाई ये है हमारे फोन नंबर जिस पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। वो चाहे हमारा फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम हो या हमारा फिर हेलो किसान कार्यक्रम हो या हेलो गन्ना किसान हो या फिर हेलो बासमती कार्यक्रम हो।
0: बिल्कुल। तो भैया देखो आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है तो भैया हमें खत भी जरूर लिखें। खत लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन कोड 246763।
1: तो भाई इस पते पे हमें थरी चिट्ठू का इंतजार रहेगा। और अब आज का योग कार्यक्रम संपन्न करने की अपने भैया सुवेंद्र सिंह झुमरू
0: और अपने भैया आलोक कुमार गंगाराम को इजाजत दीजिए। किसान भाइयों
1: राम राम, राम।

अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 6:45 हो रहे हैं। आइए अब डालते हैं एक नज़र आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम पर। शाम 6:50 पर प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाड़ी का प्रसारण हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। रात्रि 8:00 इस सप्ताह संसद में, रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती और रात्रि 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। शाम 7:32 पर कार्यक्रम सुगम संगीत में आज आपको सुनवाएंगे रागनी शर्मा की आवाज में चंद भजन। रात्रि 8:15 पर पेश करेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संध्या। ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम की। अब एक नजर कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम पर। रात्रि 9:30 पर नेशनल प्रोग्राम ऑफ फीचर और रात्रि 10:00 अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कल प्रातः 6:40 पर समय रहेगा चिंतन का। प्रातः 7:05 पर कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में जानकारी का विषय रहेगा जोड़ों का दर्द और उनकी सावधानियां। प्रातः 7:10 पर कार्यक्रम खेती की बातें में जानकारी देंगे पशुओं में गलघोटू रोग व रोकथाम पर। 7:31 पर समय रहेगा सूरज के साथ साथ का। 9:20 पर धरती गाती है कार्यक्रम में सुनवाएंगे प्रीति शर्मा और सरिता कक्कड़ की आवाज में रोहिलखंडी लोकगीत। 12:05 पर समय रहेगा कार्यक्रम आपका पत्र मिला का। 12:30 पर कार्यक्रम फिल्मी संडे में सुनवाएंगे फिल्म बाजीगर। 1:15 पर कार्यक्रम बालवाटिका में देंगे जानकारी मित्रता दिवस पर। 1:45 पर कार्यक्रम लोकधारा में सुनवाएंगे सुरेंद्र राजेश्वरी की आवाज में कुमाऊनी लोकगीत। 2:30 पर कार्यक्रम रहेगा एक और अनेक, जिसमें आपको सुनवाएंगे अभिनेता सुनील ग्रोवर और साथियों के फिल्माए चंद गीत। शाम 5:00 मेरा सपना उन्नत भारत क्रम के अंतर्गत ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पर, दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण आजीविका मिशन पर। 5:15 पर प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम युवाणी, जिसमें कुछ खास है आज में सुनवाएंगे आकाशवाणी और जिंदगी पर चर्चा। 6:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम में राहुल यादव से जितेंद्र कुमार की बातचीत सुनवाएंगे, विषय रहेगा किसानों की उपज का संगठन के माध्यम से विपणन। साथ ही चर्चा करेंगे वर्षा जल संचयन, गन्ने में सूखी पत्ती।

0: पंचो जय हिंद।
1: रेनू बहनी।
0: हाँ विनय भैया।
1: देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हम पंच बहुत उम्मीद लगाई थे अपनी फसल से ने कि हमारी फसल खूब अच्छी पैदा हुई, हम मेहनत करे थे, खाद डाले थे, पानी डाले थे, उनकी जो रोग कीट से रक्षा करे थे, लेकिन कहूं न कहूं देखा जाते कि कोनो दैवी आपदा आए गए या कहूं सूखा पड़ गया तो अपन जो फसल का मनमाना परिणाम होते हुए हम पंचन के यहाँ ना मिलते है।
0: बिल्कुल सही कहो विनय भैया, लेकिन यही स्थिति परिस्थिति से बचे खातिर जो है हमका सबका सरकार एक बहुत अच्छी योजना दीस है, वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इके तहत जब वो हमारे कोनो ऐसी परिस्थिति आ जाते है या फिर हम पंचे जैसे आपन जो है बीमा कराए रही थे
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो हम पंचे कोनो तरह के दुर्घटना पर कुछ हो पर जो है हम पंचे उससे बाहर निकल पाए थे, तो इतना जब अगर हमारे फसल भी कोने आपदा में है इतना से जो है खराब हो जाते है तो जो ये बीमा रहते है वो उनका पूरा कवर करते है, मतलब हमका पूरा क्लेम मिल जाते है।
1: बिल्कुल, इससे फायदा ये होता है कि जो अपन नुकसान होते की भरपाई होते, साथ में जो अपन अगली तैयारी होते वह मजबूत हो जाते, और सबसे बड़ी बात है जो बार बार कहा जाते कि खेती किसानी एक बड़ा खतरे का काम है, बड़ा जोखिम का काम है, तो वो जोखिम भी जो है सरकार कवर कर देते है, तो किसान के एक तरह से मतलब रक्षा हो जाते।
0: बिल्कुल, मतलब पूर्ण सुरक्षा समझ लो मिल जाती है।
1: क्यों बताओ कि अगर पंच भाई फसल बीमा करावा चाहते हैं तो फिर का कुछ रकम उनका जमा करें?
0: बिल्कुल
1: करें,
0: बिल्कुल भैया, खरीफ फसल की बात करी जाए तो जो कुल बीमा राशि होते है भैया उके जोन है केवल 2% प्रीमियम जोन है किसान देते है, और अगर रबी फसल की बात की जाए तो कुल बीमा राशि के 1.5% प्रीमियम देते है किसान भाई लोग, और अगर वाणिज्यिक और बागवानी जैसी फसलन की बात करी जाए तो इस पर 5% जोन है प्रीमियम हमका सबका देखो थे, बाकी का खर्च जोन है वो सरकार वहन करत है।
1: लेकिन इके लिए बहुत जरूरी बात है कि आप अपने जो बैंक है उमा अगर आपका किसान क्रेडिट कार्ड बना है तो आप जाके यहाँ बैंक के प्रबंधक से संपर्क कर सकते हो कि भैया हमारा फसल बीमा हो के यहाँ है। लेकिन कई बार होते है कि कई मनाई चाहते हैं कि हम फसल बीमा ना करीबा, तो ओहू के लिए आपके यहाँ अगर ऐसा है तो आप बैंक में जाके यहाँ एक बार आपके यहाँ प्रबंधक से मिलके यू मना करे पड़ी कि हम फसल बीमा ना करीबा। लेकिन हम तो कहे थे कि भैया मना कोई ना करो, सब लोग कराओ, ज्यादा से ज्यादा कराओ, क्योंकि बहुत मामूली प्रीमियम जी का कहते हैं बीमा राशि के जो किस्त हो तो के आधार पर आपके यहाँ बड़ा जो है मिल जाते है, उसका पैसा वापसी नष्ट होते, तो इका जरूर कराओ, और अति महत्वपूर्ण योजना है। और भैया एक चीज और जान लो कि चाहे जितनी महत्वपूर्ण योजना सरकार के हो जब तक हम सबकी भागीदारी ना होते तब तक
0: योजना सफल नहीं हो पावत है,
1: लक्ष्य तक ना पहुंचे।
0: बिल्कुल, तो अगर सरकार बहुत कुछ हमारे खातिर सोचे है लेकिन अब हम जागरूक ना हो गए तो भाई देखो कहूँ ना कहूँ फिर जो है वो हम कही जरूर है लेकिन वो सफलता हमार हो जाती है, है ना। तो हम पंचे उस सब योजना का फायदा ले, लाभ उठाई और अपने आप का और अपनी फसलन का सुरक्षित करी।
1: लेकिन रेनु बहनी एक बात और है कि हम पंच लाभ उठाई तो इसके लिए हमका जानकारी भी पूरी होगा चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: और जो जानकारी होते है और खास करके जो आज के बहुत महत्वपूर्ण खबर होते है वो अपने कार्यक्रम में हम लेके आए थे, तो देखो आज के खबर अपने कार्यक्रम में है, इका जाना जाए।
2: किसान भाइयों प्रस्तुत है आज की खबर। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को फार्मर रजिस्ट्री अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, साथ ही उन्होंने 16 अगस्त से शुरू होने वाली खरीफ 2026 ई खसरा पड़ताल की सभी तैयारियां समय से पूरी करने और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य पूरी संवेदनशीलता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक कर विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति का जायजा ले रहे थे। बैठक में उन्हें बताया गया कि प्रदेश में अब तक 2.45 करोड़ से अधिक किसानों का फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण हो चुका है जो केंद्र सरकार के लक्ष्य का 85% है। गाजियाबाद और रामपुर ने लक्ष्य के अनुसार 100% पंजीकरण पूरा कर लिया है। मुख्य सचिव ने खरीफ 2026 डिजिटल क्रॉप सर्वे

0: यानी ई खसरा पड़ताल की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी जिलाधिकारियों को सर्वेयरों का चयन, प्रशिक्षण और कार्य आवंटन समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि अभियान निर्धारित समय पर सुचारू रूप से शुरू हो सके। बैठक में नंद बाबा दुग्ध मिशन की समीक्षा करते हुए एसपी गोयल प्रत्येक गांव में दुग्ध सहकारी समितियों के गठन और अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। अगस्त में सभी जिलों में दुग्ध कॉन्क्लेव भी आयोजित किए जाएंगे। मुख्य सचिव ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों की नियमित निगरानी, प्रभावित परिवारों को समय पर राहत सामग्री उपलब्ध कराने तथा जिलाधिकारियों को लगातार क्षेत्र भ्रमण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जाए और राहत कार्यों में किसी प्रकार की शिथिलता ना हो। किसान भाइयों, ये थी आज की खबर।
1: देखो रेणु बहनी, कहा जाता है कि खेती किसानी और पशुपालन ये एक गाड़ी के दो पहिया हैं, क्योंकि अगर एक स्वस्थ है तो दूसरा स्वस्थ है, और अगर एक स्वस्थ ना है तो दूसरा भी जो है ठीक ना चली।
2: लेकिन भैया, अगर कबो हम पंचे अगर एक के बैलेंस गड़बड़ात है तो दूसरे उके बैलेंस बनाई देते है।
1: हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहो, संतुलन दोनों के बराबर चलेगा चाहिए। तो देखो, अपने जो हरहा गोरु हैं, चाहे दूध वाले हों चाहे जो काम करते हैं वही हों, तो वहाँ एक बड़ी सामान्य सी बीमारी लग जाती है, खुरपका और मुंहपका। जी वहाँ अगर दूध वाले हैं तो डॉक्टर भैया लोग बतावा करते हैं, हम तो उन्हें से सुने हैं कि अगर दूध वाले हैं तो उनका दूध चला जाता है, अगर काम करने वाले हैं तो काफी कमजोर हो जाते हैं, काम भी उनसे ना हो पाता।
2: बिल्कुल भैया, कबो कबो तो अगर ये सब बीमारी ज्यादा बढ़ी गई तो अपन जानवर भी चला जाते हैं।
1: बिल्कुल चला जाते हैं, जब उनकी उत्पादकता चली गई तो फिर जानवर का उपयोग भी कम हो जाते हैं। तो देखो, ये एक ऐसी बीमारी है जो बड़ी मुश्किल से जाते अगर लग जाते, लेकिन अगर इनका टीकाकरण करा दिया जाए तो ये बीमारी अपने हरान के गोरु के पास अबे नहीं करेगी।
2: बिल्कुल ना, इसके खातिर हमका टीकाकरण जरूर समय पर करवावे चाहिए, और जब इसकी सही जानकारी सबसे पहले तो हमरे लगे हुई। तब देखो, हम पंचे जब कोनी चीज के बारे में अच्छे से जाने रहते हैं तो फिर वो काम समय पर जरूर करवा लेते हैं।
1: तो देखो, आज अपने कार्यक्रम में डॉक्टर संगीता तिवारी बहनी जुड़ रही हैं और ये बता रही हैं खुरपका मुंहपका रोग नियंत्रण अभियान। तो यू अभियान का है, कैसे चलावा जा रहा है, कैसे लाभ लिया जाए, आओ जाना जाए।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहाँ पशुपालन से आप जुड़े हैं वहाँ कुछ समस्याएं भी आती हैं, जैसे इस मौसम में FMD यानी खुरपका मुंहपका रोग की समस्या। ये रोग है क्या और इसका बचाव कैसे हो, और उसके लिए जो टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश से निदेशक रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र डॉक्टर संगीता तिवारी साहिबा। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग है क्या, और इसके बचाव के लिए जो टीकाकरण अभियान अपने प्रदेश में चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी?
4: नमस्कार आप सबको। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक FMD का अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान 45 दिन का अभियान निरंतर चलेगा, और जिसका कि एक ही उद्देश्य है कि हम अपने सारे पशुओं को टीका लगा के इस रोग से रोग मुक्त करना चाहते हैं। ये टीकाकरण अभियान लगातार सालों साल चलेगा, जिससे कि हम इस बीमारी को अपने प्रदेश से भगा सकें और हमारे पशु खूब स्वस्थ रहें और अधिक से अधिक दूध दें।
3: डॉक्टर साहब, पशुपालक भाई बहन ये जानना चाहेंगे कि ये पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग है क्या, और इसके नियंत्रण के लिए कौन सा अभियान चल रहा है?
4: ये विषाणु से होने वाला एक अत्यंत संक्रामक रोग है। एक गांव के अगर एक पशु को ये रोग हुआ तो हवा, पानी, चारे और संपर्क के जरिए पूरे गांव में फैल जाता है। इसके प्रमुख लक्षण भी मैं बताना चाहूंगी। पशु को बहुत तेज बुखार होता है, मुंह, जीभ और मसूड़ों में छाले पड़ जाते हैं, मुंह से लार टपकती है और पशु चरना बंद कर देता है, और इसके अलावा खुरों के अंदर भी जख्म हो जाते हैं जिसे पैर से लंगड़ाने लगता है। और जो सबसे ज्यादा इसका प्रभाव हमारे किसान भाई बहनों के ऊपर पड़ता है वो ये कि दूध का प्रोडक्शन घट जाता है। दुधारू पशुओं में दूध का उत्पादन 80% तक गिर जाता है। गर्भवती गाय भैंसों का गर्भपात हो सकता है। नर पशु खेत में काम करने लायक नहीं रहते। भले ही पशु ना मरे लेकिन वो लंबे समय के लिए कमजोर हो जाता है, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता जो कम हो जाती है उस कंडीशन में वह विभिन्न बीमारियों से ग्रसित होता है बार बार, क्योंकि शरीर उसका अपना रोग नियंत्रण कर ही नहीं पाता है।
3: डॉक्टर साहब, इलाज से बेहतर बचाव है, ये विषाणु जनित

0: बीमारी है, तो इसके बचाव के लिए जो अभियान चल रहा है प्रदेश में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी पशुपालक भाइयों बहनों से?
1: देखिए, मैं बताना चाहती हूँ कि भारत सरकार के राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम NADCP के तहत उत्तर प्रदेश में FMDCP चरणबद्ध तरीके से चल रहा है। दिनांक 22 जुलाई से 8 सितंबर के मध्य ये 45 दिन का 8वां चरण ये महाअभियान है, और इस महाअभियान की महाआहुति है कि हर किसान को अपने अपने पशुओं को टीका अवश्य लगवाना है, अपनी जिम्मेदारी मानते हुए इस टीके को अवश्य लगवाना है, जिसमें डोर टू डोर यानी घर घर जाके टीकाकरण करने वाली टीम सरकार के द्वारा पशुपालन विभाग द्वारा बनाई गई है, जो जाएंगी टीकाकरण करेंगी, पशु का एक वैक्सीनेशन कार्ड बनाएंगी, उसको किसान बहन भाइयों को संभाल के रखना होगा। और ये टीका, जो मैं सबसे जरूरी बात आपको बताना चाहती हूँ, कि सरकार की तरफ बिल्कुल निःशुल्क टीका है।
0: डॉक्टर साहब, जब टीमें घर घर जाएंगी या गाँव गाँव जाएंगी टीकाकरण अभियान के लिए खुरपका मुहपका से बचाव के लिए, तो क्या कान में कोई टैगिंग भी होगी क्या?
1: जब हमारी टीमें घर जाती हैं तो वह पशु के कान में एक पीला प्लास्टिक का टैग भी लगाती हैं, जो कि पशु का एक तरह से, जैसे हम लोगों का आधार कार्ड होता है, इसी तरह पशु की वो यूनिक आईडी होती है। ये कान में लगने वाला 12 अंकों का टैग पशु का आधार कार्ड ही कहा जाना चाहिए,
0: यानी पशु का पहचान पत्र।
1: बिल्कुल, पहचान पत्र है। और भारत पशुधन पोर्टल पर इसके पशु का टीकाकरण रिकॉर्ड इस टैग के द्वारा ही ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा।
0: डॉक्टर साहब, गांव में अक्सर पशुपालक भाइयों बहनों के मन में भ्रम होता है कि अगर गर्भित जानवर है तो उसको टीका ना लगे, आप क्या कहना चाहेंगे पशुपालक भाइयों बहनों से?
1: ये सुरक्षित होता है।
0: और अगर बुखार है जानवर को तो क्या टीका लग सकता?
1: हाँ, सजेस्टेड नहीं है। बुखार की कंडीशन में थोड़ा सा रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो उसमें थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए, और जब बुखार ठीक हो जाए तो उसके पश्चात टीकाकरण, क्योंकि 45 दिन का है, तो पशु अगर बीमार भी होगा तो 2-3 दिन के बाद ठीक हो जाएगा, वहाँ नोट करा देना चाहिए कि इसका छूट रहा है और इसका टीकाकरण समय से कर लिया जाए।
0: डॉक्टर साहब, ये क्या साल में टीकाकरण एक बार होता है या दो बार?
1: दो बार होता है, 6-6 माह पे ये टीकाकरण का महाअभियान चलाया जाता है।
0: तो एक जैसे अभी चल रहा है
1: जी,
0: इसके 6 माह बाद दूसरी बार?
1: बिल्कुल, 6 माह के बाद ये फिर से रिपीट होगा, और हम जब तक इस विषाणु जनित रोग को अपने यहाँ से विदा नहीं कर देंगे, तब तक ये महाअभियान हम चलाते रहेंगे।
0: डॉक्टर साहब, पशुपालक भाइयों बहनों की इस महाअभियान में भागीदारी बढ़े, एक एक जानवर को खुरपका मुहपका का टीका लगे, इसके लिए क्या पशुपालक भाइयों बहनों का आह्वान करना चाहती हैं?
1: जब टीम आपके द्वार पे आए तो आप सहर्ष खुशी से उनका अभिवादन करते हुए इस टीकाकरण अभियान के अंदर अपने पशुओं को टीका लगवाएं, और गर्भवती पशुओं को भी टीका लग सकता है।
0: डॉक्टर साहब, जो ये टीका है ये किन किन जानवरों को, जैसे गाय भैंस में कितनी उम्र से कितनी उम्र तक को लग सकता है?
1: केवल शुरू के 3 महीने मैटरनल एंटीबॉडी होती है बच्चों के अंदर, माँ की जो एंटीबॉडी होती है उसमें अगर हम टीकाकरण करेंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन शेष समय में सारे पशुओं को टीका किया जा सकता है, सब बिल्कुल सुरक्षित है।
0: डॉक्टर साहब, क्या इसका इलाज भी संभव है अगर किसी जानवर को हो जाए तो?
1: बिल्कुल, इसका इलाज संभव है, और निरंतर अस्पतालों में केस आते हैं और इलाज किया जाता है, संबंधित दवाइयां लगाई जाती हैं, और खुरों के अंदर भी एंटीसेप्टिक डाला जाता है, और मुंह के छालों के लिए भी फिटकरी इत्यादि के पानी का घोल लगाया भी जाता है, दवाइयां भी आती हैं जो लगाई जाती हैं, जिससे रिकवरी फास्ट हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि इलाज हो, तो इलाज बड़े आराम से इसका किया जाता है।
0: टीकाकरण के बाद पशुपालक भाइयों बहनों को अपने जानवरों की देखभाल में कुछ खास हिदायत?
1: गाँव में अगर 90% से ज्यादा पशुओं को टीका लगेगा तभी हर्ड इम्यूनिटी बनेगी, यानी कि सामूहिक सुरक्षा बनेगी, और इसके अलावा सभी पशुओं को, गाय भैंस बछड़े सबको टीका लगवाएं, बाड़े को साफ रखें, नए खरीदे गए पशुओं को 14 दिन अलग रखने के बाद टीका लगवा कर पुराने पशुओं में मिलाएं, ऐसा ना हो आपके पशु ठीक ठाक हैं और बाहर से आया पशु वैक्सीनेटेड ना हो तो वह बीमारी को लेके चला आए, इस बात का ध्यान रखा जाए। किसी भी आपात स्थिति में जानकारी के लिए पशुपालन विभाग के टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल करें,
0: यानी 1962।
1: एक विशेष तरह की हमारी सेवा है MVU मोबाइल वेटनरी यूनिट, जो कि द्वार पे पहुंचती है और इलाज देती है पशुओं को।
0: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहती हैं पशुपालक भाइयों बहनों का खुरपका मुहपका रोग नियंत्रण और टीकाकरण अभियान के बारे में? डॉक्टर साहब,
1: मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी तरह का भ्रम ना पालिए, और पशु का सुरक्षा कवच है टीका, इसके बिना हर इलाज

0: आज है फीका, अपने पशुओं को FMD का टीका जरूर लगवाएं और उत्तर प्रदेश को समृद्ध बनाने में अपना योगदान दें।
1: डॉक्टर साहब, आज कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: रेणु बहनी,
3: विनय भैया,
2: अब बात देखो गीत गौनाई के रहे।
3: अरे भैया, तुम तो हमारे मन की बात कहो हैं?
2: देखो, गीत गौनाई ऐसा होता है कि जैसे एक मानसिक खुराक होते ना हम सबकी, कि कुछ मनोरंजन होगा चाहिए, तो स्वस्थ मनोरंजन अपने कार्यक्रम के माध्यम से अपने सब पंचन भाई का कराए रहे हैं। तो आओ सुना जाए संजोली पांडे के स्वर में है यू लोकगीत।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: एक अपने प्रगतिशील किसान है, प्रगतिशील मतलब ऐसा काम कर रहे हैं कि जो दूसरों के लिए प्रेरणा है,
7: प्रेरणा हो।
6: तो आज अपने किसान जो है वे अपने कार्यक्रम में अपने साथ जुड़े हैं, राम सिंह पटेल भैया। तो आओ जाना जाए कि इनकी सफल किसानी क्या राज का है।
7: हम हो पंचे सफल हो भैया।
6: बिल्कुल,
8: आज के किसान क्रम में आइए आपको ले चलते हैं फतेहपुर जनपद के मलवा ब्लॉक के औंग गाँव, जहाँ के नॉनमेसी किसान राम सिंह पटेल भैया हमारे साथ हैं। राम सिंह पटेल भैया, आप नॉनमेसी खेती के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि कुल कितनी खेती की जमीन है आपके पास?
9: डॉक्टर साहब, हमारे पास खेती की जमीन 8 एकड़ है।
8: क्या फसल योजना बनाए हैं पूरे साल की, खरीफ रबी जायद की?
9: डॉक्टर साहब, जैसे अभी हमारे पास 1 एकड़ धान लगा है, बाकी 7 एकड़ पे हमारे ढैंचा बोया था। ढैंचा को हम खेत में कुछ मिला चुके हैं, कुछ मिलाएंगे। जैसे लहसुन करना है तो उसमें अभी ढैंचा खड़ा है, और जैसे प्याज लग जाएगा, प्याज के बाद हमारा लहसुन लगेगा।
8: यानी खरीफ प्याज भी करते हैं?
9: हाँ, खरीफ प्याज करते हैं, 5 एकड़ पे खरीफ प्याज लगेगा, और खरीफ प्याज के बाद फिर उसके बाद लहसुन का काम होगा। लेकिन खरीफ प्याज के हार्वेस्टिंग के बाद 15 नवंबर तक हमारी हार्वेस्टिंग हो जाती है, तो उसमें हम ये सब्जी वाली मटर बोते हैं GS10।
8: अच्छा।
9: और उस मटर पे ही हम उसी समय बुआई के तुरंत बाद ट्रैक्टर से उसमें नालियां बना देते, जैसे मटर हमारी जब रहती है उसी में हम पौध जो है तरबूज और खरबूजा की तैयार करके, और मटर के बीच में ही हम वो खत्म नहीं होती, हम तीसरी फसल उसी में रोपित कर देते हैं।
8: यानी रिले क्रॉपिंग कर रहे हैं।
9: हाँ, तो उसमें क्या है कि जब मटर खत्म नहीं हुई कि तब तक हमारा तरबूज और खरबूजा तैयार हो जाता है, तो हमें 3 कैश क्रॉप उसी जमीन पे मिल जाती है। और एक जो फसल है हम जमीन को देते हैं हरी खाद, एक फसल तो हम उसी जमीन को देते हैं, 3 फसल अपने लिए लेते हैं।
8: यानी साल में 4 फसल ले लेते?
9: 4 फसल ले लेते हैं। ढैंचा जो है खेत के लिए, हमें जैव कार्बन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए।
8: हाँ।
9: और इसके बाद जो है जो 3 फसलें हैं अपने लिए, कैश क्रॉप अपने खाने के लिए और अपने इनकम के लिए हम 3 फसलें बना।
8: इस समय कौन कौन सी फसल आपके खेत में है?
9: इस समय हमारे पास धान लगा है, प्याज की नर्सरी है, प्याज रुपाई की तैयारी चल रही है।
8: यानी खरीफ प्याज,
9: खरीफ प्याज
8: 5 एकड़ करेंगे?
9: 5 एकड़ की पूरी तैयारी है, हमारे पास 50 क्विंटल बलवेट है।
8: हाँ।
9: और बाकी नर्सरी है, दो विधि से हम करते हैं, बलबेट भी थे और नर्सरी भी थी। डॉक्टर साहब, हम बेड सिस्टम में करते हैं क्योंकि बरसात का सीजन होता है, कभी भीषण बरसात हो सकती है।
8: अंतरण क्या रखते हैं और रोपाई कितने दिन की नर्सरी करते हैं खरीफ प्याज?
9: डॉक्टर साहब, खरीफ प्याज की नर्सरी 45 से 50 दिन की तैयार हो जाती है, और जो दोपाई की दूरी होती है अगर हम फ्लैट पे जब लगाते हैं तो 4 इंच पेड़ से पेड़ की दूरी, 6 इंच लाइन से लाइन की दूरी नक्शा होती थी। लेकिन जब हम बेड सिस्टम में करते हैं तो हमें पेड़ों की संख्या उतनी ही रखनी है, तो हम जो है लाइन से लाइन की दूरी घटा देते, 6 इंच की बजाय 5 इंच कर देते हैं, पेड़ से पेड़ की 4 इंच ही रह देते।
8: कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखते हैं खरीफ प्याज उत्पादन में?
9: खरीफ प्याज के उत्पादन में हमें ध्यान रखना है कि हमें जल भराव वाली जमीन नहीं होनी चाहिए, वर्षा चाहे जितनी हो हमारे उसमें जल भराव नहीं हो, पानी निकल जाना चाहिए, एक तो ये है। दूसरी बात, समय से समय हमें जैसे खरपतवार जो प्रबंधन ये सब पूरा हमें ध्यान में रख के पूरा जो है काम करना होता है।
8: और फसल की भूख कैसे मिटाते हैं?
9: डॉक्टर साहब, 1 एकड़ में 1 बोरी DAP और 1 बोरी पोटास और 20 किलो यूरिया हम जोताई पे देते हैं।
8: कुछ कार्बनिक खादों का प्रयोग करते होंगे?
9: हाँ, सड़ी गोबर खाद, बर्मी कंपोस्ट, अगर जो चीज उपलब्ध है वो हम उसमें पूरा दे करके, और फिर जो है,
8: और हरी खाद तो है ही,
9: हरी खाद है, और संतुलित खेती करते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हम अपनी फसल को देते हैं जिससे अच्छा उत्पादन होता है।
8: 8 एकड़ की खेती और इतनी विविधता, खास करके मसालों में आप प्याज और लहसुन की भी खेती करते हैं और सब्जियां करते हैं, पूरे साल में कितना खर्चा गिरता है 8 एकड़ की खेती में, उत्पादन कितना ले लेते हैं और आपका मुनाफा होता कितना है?
9: डॉक्टर साहब, ये हम लोग जो है ये मान चलते हैं कि लमसम 3 से 4 लाख रुपया हमारा जो है खर्चा होता है, अगर रेट मिल जाता है तो 15 से 25 लाख के बीच में हमारा टोटल बिक्री होती
8: पूरे
9: है
8: साल का।
9: पूरे साल का जो है, तो अगर हम 4-5 लाख जो अपना खर्चा निकाल तो 10 से 15 लाख रुपए तो हमारा साल का सेव बच जाता है।
8: जो अब तक आपका तजुर्बा है उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
9: डॉक्टर साहब, हम तो ये कहेंगे जैसे आज नवयुवक खेती से दूर भाग रहा है, कहते हैं कि खेती घाटे का सौदा है, लेकिन मुझे आज तक नहीं लगा है कि खेती घाटे का सौदा है। हमें उसको जो है बहुत सिस्टमेटिक ढंग से ये छोटी छोटी चीजें इग्नोर नहीं करना है, और ज्ञान के साथ साथ अनुभव के साथ खेती अगर आप करोगे तो कभी खेती घाटे का सौदा नहीं है। जहां पे मार्केट हो उस मार्केट के अनुरूप हमें उत्पादन करना चाहिए, तभी हमें अच्छा रेट और हमारा अच्छी तरह से माल बिक जाता
8: है। बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
9: 9936058016 9936058016 9936058016
8: राम सिंह पटेल भैया, आज के किसान क्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
4: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: यू रहा आज के किसान वाणी का यू अंक,
4: और हमका उम्मीद है कि आप सभी किसान भाई बहन इनके यहाँ यू अंक बहुत पसंद आवा हुई है।
3: तो पंचो, आज के किसान वाणी का अंक आपके यहाँ कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया, अपनी जिज्ञासा, अपने प्रश्न हम तक जरूर भेजो। आप इसमें का बेहतर सुना चाहते हो वो हमका बताओ। तो हमारा पता है कार्यक्रम किसान वाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन कोड 226001।
4: और भैया हमारा ईमेल आईडी भी है, वो का बता दियो।
3: हमारा ईमेल आईडी है farmandhome@gmail.com। और अब यह के साथ हमका यानी विनय के यहाँ
4: और हमका यानी रेनू के यहाँ
3: देव अनुमति
4: जय।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूर्ख व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार।

0: पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का करेंगे शुभारंभ। उत्तर प्रदेश सहित देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा होंगे कार्यक्रम में शामिल। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु में बुद्ध थीम पार्क का किया लोकार्पण। कहा, भगवान बुद्ध के संदेश को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनेगा थीम पार्क। हर घर तिरंगा अभियान के तहत इस वर्ष राज्य में 5 करोड़ घरों पर फहराया जाएगा राष्ट्रध्वज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से अभियान में भाग लेने का किया आह्वान। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर अस्मिता डे ने जूडो में 48 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीतकर रचा इतिहास। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सहित देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों, युवा क्लबों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। इस अभियान के अंतर्गत हर रविवार देश भर में जागरूकता और जन भागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें समाज में सकारात्मक बदलाव का वाहक बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनकी दिवंगत मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था।
1: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
0: केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में बुद्धा थीम पार्क का लोकार्पण किया। उन्होंने कपिलवस्तु बुद्ध स्तूप में लाइट एंड साउंड शो का शुभारंभ किया। श्री पुरी ने कहा कि यह थीम पार्क भगवान बुद्ध के शांति, करुणा और मानव कल्याण के कालजयी संदेश को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। कार्यक्रम में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में श्री पुरी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कल स्वीकृत की गई पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना को क्रांतिकारी बताया।
2: एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन सेक्टर के लिए मंत्रिमंडल ने 84,000 करोड़ का एक योजना अप्रूव की है। इसके तहत 4 साल में डेटा कलेक्शन, डीप वाटर ड्रिलिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में होगा। इस योजना के साथ आने वाले समय में हम 1,00,000 करोड़ तो प्रतिवर्ष बचा पाएंगे।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हर घर तिरंगा केवल एक अभियान नहीं बल्कि राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और देश के गौरवशाली इतिहास से जन जन को जोड़ने का राष्ट्रीय अभियान है। इसे व्यापक जन भागीदारी के साथ जन आंदोलन का स्वरूप दिया जाना चाहिए। कल लखनऊ में मुख्यमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान, स्वतंत्रता दिवस तथा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के आयोजनों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि 14 और 15 अगस्त को प्रदेश के सभी सिनेमाघरों में राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान का अनिवार्य रूप से प्रसारण निश्चित किया जाए। पेश है एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में सहभागिता का आह्वान करते हुए इस वर्ष 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अभियान के तहत प्रदेश भर में तिरंगा रैली, तिरंगा संगीत समारोह, तिरंगा प्रदर्शनी और सेल्फी विद तिरंगा जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रमुख सरकारी भवनों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, हवाई अड्डों, सार्वजनिक स्थलों, प्रमुख बाजारों और चौराहों को तिरंगा थीम पर सजाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के सभी कार्यक्रम पूरे सम्मान, गरिमा और राष्ट्रभक्त के भाव के साथ आयोजित किए जाएं। 9 से 15 अगस्त तक प्रदेश भर में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े सभी स्मारकों, स्मृति स्थलों और शहीद स्थलों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा मामले को लेकर संसद परिसर में नाटक करने पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद पप्पू यादव और अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ वाराणसी में आज मुकदमा दर्ज किया गया। काशी जोन के पुलिस उपायुक्त गौरव बंसवाल ने बताया कि संतों की तहरीर पर सनातन धर्म का अपमान करने के आरोप में यह मुकदमा दर्ज किया गया है।
4: संतों के द्वारा जो है कोतवाली थाना में एक तहरीर दी गई है। मैं उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि राजेश रंजन और पप्पू यादव जी, राहुल गांधी जी और अवधेश जी जो ये हैं, इनके द्वारा सदन में, संसद में कुछ ऐसे कृत्य किए गए हैं जिसके द्वारा जो सनातन धर्म है उसका अपमान हुआ है, उसी में अभियोग पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई की जाए।
0: उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आज अयोध्या में श्री रामलला का दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले पर कहा कि इस पूरे प्रकरण की जांच एसआईटी कर रही है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
5: जो तथ्य सामने आए हैं उन तथ्यों के आधार के ऊपर जो लोग प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए थे उनको सजा हुई है, वो जेल में। बाकी जो एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, एसआईटी की रिपोर्ट माननीय मंत्री जी स्वयं, उसके हम सब लोग चिंतित हैं, जो भी रिपोर्ट आएगी, जो भी उसमें दोषी हुए उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
0: नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार लाहिड़ी ने आज वाराणसी में विंध्य आर्थिक क्षेत्र के 7 जनपदों के सुनियोजित विकास की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को वर्ष 2030 के लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति के लिए समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए और इसके लिए तकनीक आधारित निगरानी तथा डेटा आधारित निर्णय प्रणाली को और मजबूत बनाया जाए। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना में उत्तर प्रदेश ने देश के शीर्ष 100 जनपदों की सूची में अपने 17 जनपदों को शामिल कराया है। सूची में लखनऊ ने पहला स्थान हासिल किया है। एक रिपोर्ट।
6: यूपी नेडा डायरेक्टर रविंदर सिंह ने बताया कि इस सूची में राजधानी लखनऊ ने 1,24,167 रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना के साथ देश का नंबर एक जनपद बनने का गौरव बरकरार रखा है। वहीं वाराणसी ने भी देश में 10वां स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा कानपुर नगर 14वें स्थान पर है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा जन जागरूकता अभियान, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने, समयबद्ध स्वीकृति, डिस्कॉम और संबंधित एजेंसियों के बेहतर समन्वय तथा सब्सिडी वितरण की प्रभावी व्यवस्था ने इस अभियान को नई गति दी है। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने कल जूडो में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर स्मिता डे ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में जूडो में भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अस्मिता को इस जीत के लिए बधाई दी है। अस्मिता डे ने बताया कि देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने पर बहुत खुशी हो रही है।
7: मैं अपने भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला गोल्ड मेडल जीतकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और गर्व हो रही है। ये मेडल सिर्फ मेरा नहीं है बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों का है, जिन्होंने मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद और शुभकामना दी है। मुझे ये जानकर भी बहुत खुशी हुई है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया को 2030 से 31 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
0: मौसम विभाग ने प्रदेश में आगामी सप्ताह के दौरान मॉनसूनी सक्रियता में वृद्धि का अनुमान जताया है। विभाग ने कल से 5 अगस्त तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। इस बीच प्रदेश में कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है। बदायूं में गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जबकि फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ में गंगा खतरे के निशान के पास बह रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का करेंगे शुभारंभ। उत्तर प्रदेश सहित देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा होंगे कार्यक्रम में शामिल। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु में बुद्ध थीम पार्क का किया लोकार्पण। कहा, भगवान बुद्ध के संदेश को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनेगा थीम पार्क। हर घर तिरंगा अभियान के तहत इस वर्ष राज्य में 5 करोड़ घरों पर फहराया जाएगा राष्ट्रध्वज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से अभियान में भाग लेने का किया आह्वान। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर अस्मिता डे ने जूडो में 48 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीतकर रचा इतिहास। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन अब समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें आज के कलाकार हैं रागनी शर्मा, और आज हम आपको रागनी शर्मा की आवाज़ में सुनवा रहे हैं भजन। तो लीजिए सुनते हैं रागनी शर्मा की आवाज़ में ये भजन।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं रागनी शर्मा की आवाज़ में भजन। तो आइए सुनते हैं रागनी शर्मा की आवाज़ में ये अगला भजन।

आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। हम आपको सुनवा रहे हैं रागनी शर्मा के गाए भजन। कार्यक्रम सुगम संगीत में सुनते हैं रागनी शर्मा की आवाज़ में ये अगला भजन।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं रागनी शर्मा के गाए भजन। तो आइए सुनते हैं रागनी शर्मा की आवाज में ये भजन।

0: इसी भजन के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बजने हुए हैं। इस सप्ताह संसद में कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का यह दूसरा सप्ताह था। यह सप्ताह कामकाज के लिहाज से मिला जुला रहा। इस दौरान दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों

स्थानों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर भारी हंगामा किया। इस वजह से पूरे सप्ताह दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा। हालांकि दोनों सदनों ने लंबी चर्चा के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी प्रदान कर दी। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को पूर्वाह्न 11 बजे लोकसभा की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू समेत अन्य भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। सदन ने सभी विजयी खिलाड़ियों, उनके प्रशिक्षकों और टीम इंडिया को बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस समेत कई विपक्षी सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा किया। इस कारण सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे आरंभ हुई तो विपक्षी सदस्यों ने फिर नारेबाजी शुरू कर दी। इस हंगामे के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया, लेकिन सदन में हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने दोपहर 12:08 पर सदन की बैठक 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन से संबंधित इस विधेयक में परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास और 50,00,000 रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। सदन की बैठक 2 बजे शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। शाम 5 बजे बैठक पुनः शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सारे सदस्य तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन कांग्रेस और उसके कुछ साथी इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे। सदन में हंगामा जारी रहने के कारण कार्यवाही कुछ मिनट बाद ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा किया। हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक बार बार बाधित हुई और 4 बार के स्थगन के बाद शाम करीब 5:15 की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर सदन में हंगामा जारी रखा और बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने फिर यही मुद्दा उठाया और मांग की कि गृहमंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर सदन में बयान दें। हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया। सदन में हंगामे को देखते हुए उपसभापति ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 3 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और विपक्ष के कई सदस्य आसन के समीप आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हंगामे को देखते हुए उपसभापति ने बैठक शाम 5:15 तक और पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। मंगलवार को लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध समाप्त होने के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले इस विधेयक को पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक सरकार के विद्यार्थियों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ियों और प्रश्न पत्र लीक आदि की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारों के दौरान भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने परीक्षा प्रश्न पत्र निरोधक कानून को मोदी सरकार की विफलता का स्मारक करार दिया। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह को सदन में इसका जवाब देना चाहिए कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया।
भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि इस संशोधन विधेयक को लाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता और उनकी सरकार की जिम्मेदारी का प्रमाण है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं रोक पाए वो पेपर लीक भला कैसे रोक पाएंगे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि सरकार जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहती है तो प्रधानमंत्री को कैमरे का एंगल नहीं बल्कि दिल का एंगल भी बदलना पड़ेगा। विधेयक पर देर रात तक चर्चा हुई जिसमें विभिन्न दलों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया, चर्चा अधूरी रही। उधर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। वे विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहे थे। हंगामे के कारण बैठक एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और फिर शून्यकाल शुरू करवाया। इसी दौरान विपक्षी सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए और विद्यार्थियों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग का मुद्दा उठाया। सभापति ने हंगामा जारी रहने पर करीब 11:07 पर ही सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक दोबारा शुरू होने पर सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने फिर से गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मांझी ने कहा कि मूल विधेयक 2006 में बना था और इसमें समय तथा बदलती परिस्थितियों के अनुरूप सुधार करने की जरूरत है। उपसभापति ने सदस्यों से कार्यवाही चलने देने की अपील की लेकिन सदन में व्यवस्था न बनते देख उन्होंने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। नीट पेपर लीक के पृष्ठभूमि में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में सख्त प्रावधान शामिल करने के लिए लाए गए इस संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस कारण सदन की कार्यवाही पहले एक बार करीब 40 मिनट के लिए अपराह्न 2:30 बजे तक और फिर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया और उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनि मत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। विधेयक पारित होने के बाद कांग्रेस सांसदों की नारेबाजी के बीच ही अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। चर्चा का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि नीट पेपर लीक के मामले में सरकार ने फौरन कार्रवाई की और 12 जुलाई को जांच सीबीआई को सौंप दी गई। उन्होंने कहा कि कल इस मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है और सुनवाई शुरू हो गई है। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नए संशोधन विधेयक के प्रभाव में आने के बाद फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई के साथ इस मामले में 5 महीने में फैसला आ जाएगा। इससे पहले विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक के खिलाफ विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। इसका सत्ता पक्ष ने तीखा विरोध किया और उनसे माफी की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि या तो नेता प्रतिपक्ष बताएं कि किस आधार पर उन्होंने देश के एक जिम्मेदार व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाया है या फिर वह माफी मांगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बिना किसी तथ्य जांच और साक्ष्य के किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। उसी दिन गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाला विधेयक भी सदन में पेश किया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण भोजनावकाश से पहले सदन की कार्यवाही बाधित रही। भोजनावकाश के बाद सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया। इसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष
तक की सजा हो सकती है। उच्च सदन में विधेयक पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित विपक्ष के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे, क्योंकि वे गृह मंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट यानी बहिर्गमन कर गए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपनी तुष्टिकरण की नीति के कारण वंदे मातरम को आजादी के बाद वह सम्मान नहीं प्राप्त होने दिया जो उसे प्राप्त होना चाहिए। विधेयक पारित होने के बाद कुछ सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद 3:15 पर बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। बृहस्पतिवार को लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के शोरगोल के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित की गई। हंगामे के कारण कार्यवाही पहले दोपहर 2 तक और उसके बाद 3 तक के लिए स्थगित कर दी गई। उसके बाद बैठक शुरू होने पर सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक को पारित कर दिया। उच्च सदन ने एक दिन पहले ही विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पर सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है जो किसी राज्य, व्यक्ति या विचारधारा के खिलाफ नहीं है। इससे पहले द्रमुक सांसदों ने विधेयक का विरोध किया। उधर राज्यसभा में भी हंगामा जारी रहा। शून्यकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस के बल प्रयोग को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा किया। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि 20 से शुरू हुए मानसून सत्र के दौरान विपक्ष का रवैया नकारात्मक रहा है। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदस्यों ने शून्यकाल के तहत लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल भी सामान्य रूप से चला। भोजनावकाश के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा पारित करवाने के लिए रखा। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक समयबद्ध वार्षिक परीक्षा कैलेंडर बनाए जाने का सुझाव दिया तथा हाल ही में हुए छात्र आंदोलन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई ज्यादतियों की न्यायिक जांच कराने की मांग की। विधेयक के समर्थन में भाजपा के बृजलाल ने कहा कि विधेयक यह प्रावधान करता है कि केंद्र एक विशेष एसआईटी का गठन कर सकता है और जांच एजेंसी को मात्र 2 के अंदर पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी है तथा त्वरित अदालत को 3 के भीतर अपना फैसला देना है। जदयू के संजय झा ने कहा कि विकास के पथ पर भारत आज जिस तरह से बढ़ रहा है उसका एक अहम कारण यह है कि बीते करीब 12 में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने कहा कि पहले परीक्षाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास थी, तब इस तरह प्रश्न पत्र लीक के मामले नहीं होते थे। विधेयक पर हुई लंबी चर्चा के बाद विभिन्न दलों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री श्री सिंह ने चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक सिर्फ एनटीए ही नहीं बल्कि यूपीएससी रैंकिंग और रेलवे और बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी परीक्षाओं को भी कवर करता है। उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने आसन के निकट पहुंचकर गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए। अध्यक्ष ओम बिरला ने शोर शराबा को देखते हुए कार्यवाही दोपहर 12 तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक 12 फिर शुरू हुई तो हंगामे की स्थिति जस की तस थी। विपक्ष के हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। सदन ने बिना चर्चा के ध्वनि मत से विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:15 हो रहे हैं। पेश है कार्यक्रम गीत संध्या। लीजिए सुनते हैं रंग फिल्म से ये गीत अलका याग्निक की आवाज़ में। संगीत दिया है नदी।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत संध्या। आइए सुनते हैं सड़क फिल्म से ये गीत अनुराधा पौडवाल की आवाज में। साथ दिया है मनहर उदास ने, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने, गीतकार हैं समीर।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत संध्या यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। पेश है कार्यक्रम एक ही फिल्म से और आज की फिल्म है दो बदन। दो बदन 1966 में राज खोसला द्वारा निर्देशित फिल्म है। इस फिल्म में मुख्य कलाकार में थे मनोज कुमार, आशा पारेख, सिमी ग्रेवाल और प्राण। अगर फिल्म के संगीत की बात करें तो संगीत दिया था रवि ने। फिल्म का विचार मनोज कुमार ने दिया था, जिन्होंने खोसला को नितिन बोस द्वारा निर्देशित फिल्म देदार के शो के लिए अपने साथ चलने को कहा, जिसका स्थानीय सिनेमाघरों में पुनः प्रदर्शन हो रहा था। इसके बाद कहानी को संशोधित करके दो बदन की कहानी लिखी गई और पटकथा G.R. कामत ने लिखी। वैसे तो यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और सिमी ग्रेवाल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। फिल्म के गाने बेहद लोकप्रिय हुए और आज भी काफी पसंद किए जाते हैं। तो आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में ये प्यारा सा गीत।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की फिल्म है दो बदन। फिल्म के गाने काफ़ी हिट हुए थे और संगीत रवि ने दिया था। अगर गीतकार की बात करें तो गीत लिखे थे शकील बदायूनी ने, जिसमें से भरी दुनिया में आखिर जो कि हमने अभी अभी गीत सुना, और नसीब में जिसके जो लिखा था, एक गाना था लो आ गई उनकी याद, यानी कि लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये सारे गाने हिट हुए। लीजिए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम एक ही फिल्म से यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: नमस्कार,

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी। केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता। 7 भारतीय मुक्केबाज आज फाइनल में खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयां तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था।
1: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की। आज युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है, भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBBS भी स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
0: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीतारामा राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में NDA सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
1: मुझे पूरा विश्वास है, आज यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, जिनकी नींव रखी गई है, वो सारे प्रोजेक्ट स्वर्ण आंध्रा और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। आंध्र प्रदेश विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जा स्रोत बन रहा है। मैं एक बार फिर इन सभी परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ एक

0: की मंजूरी दी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है।
1: बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए स्वीकृत सहायता के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को वित्त वर्ष 2026-27 की पहली किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 44,55,00,000 रुपए जारी किए जाएंगे। वहीं असम के लिए पहली किस्त के रूप में 379,35,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जबकि गुजरात को 500,00,000 रुपए जारी किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश, जिससे वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है, उसे दूसरी किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 193,95,00,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। वहीं ओडिशा को दूसरी किस्त के रूप में 500,00,000 रुपए जारी किए गए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र के लिए पहली किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 500,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस मंजूरी का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित राज्यों में जारी राहत और बचाव कार्यों को और सुदृढ़ करना है। प्रिया मंडल के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि राज्यों को हर महीने मिलने वाली किस्त के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और अभ्यर्थी हितैषी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को आज महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह ने यह पुरस्कार प्रदान किया। श्री शाह ने कहा कि श्री डोभाल ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
2: भारत की सेना को आधुनिक बनाना, समसामयिक परिवर्तन करना, सेना के अंदर टेक्नोलॉजी और वीरता दोनों का एक अद्भुत फाइन ट्यूनिंग करना, कई प्रकार के बड़े फैसले अजीत जी के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने लिए।
0: दिल्ली भाजपा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ संसद परिसर में कल धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि संसद परिसर के मकर द्वार के पास हुए प्रदर्शन के दौरान विपक्ष ने धार्मिक आस्था का मजाक उड़ाया, सनातन संस्कृति का अपमान किया और संत समाज का अनादर किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। एक रिपोर्ट।
3: पूर्वी सिक्किम में 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित नाथुला दर्रा सदियों से भारत को तिब्बत से जोड़ने वाले पुराने व्यापार मार्ग का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बंद हुआ सीमा व्यापार 2006 में औपचारिक रूप से फिर से शुरू हुआ। 2020 में कोविड महामारी के कारण रोके जाने तक ये बिना किसी रुकावट के जारी रहा। इसका फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। सीमा व्यापार सोमवार से बृहस्पतिवार तक चलेगा। इसमें गेट सवेरे 7:30 बजे खुलेंगे और हर रजिस्टर्ड व्यापारी को हर दिन 2,00,000 रुपए तक का व्यापार करने की अनुमति होगी। गंगटोक से मैनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: बलूच यकजहती कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चल रहे जन आंदोलन पर पाकिस्तानी अधिकारियों की क्रूर कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। समिति के अनुसार यह दमनकारी रवैया असहमति की आवाजों को कुचलने की व्यापक सरकारी नीति का हिस्सा है। पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। मौसम विभाग ने कल कर्नाटक, केरलम, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज

0: अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटकपुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,59,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। केरलम में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन और जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश से 6 लोगों की मौत हो गई। प्रभावित जिलों में 65 राहत शिविरों में 1400 से अधिक लोगों को पहुंचाया गया है। और अब ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
1: राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक देश के नाम किए। मुक्केबाजी में भारत ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। प्रीति ने महिलाओं की 54 किलोग्राम प्रतियोगिता में कनाडा की स्कारलेट समाना डेल गाडो को 5-0 से हराया। वहीं जैस्मिन ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में माइकेला वॉल्श को 5-0 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादुमणि सिंह ने रजत पदक जीता।
2: काफी अच्छा लग रहा है, मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल आया, तो काफी अगला कंपटीशन से और ज्यादा फोकस करूंगा और अच्छा आने वाला कंपटीशन में अच्छा मेडल लेऊं। मेडल मैं मेरे अंकल को दे दे करूंगा और बीएफआई को, साई को और पूरा इंडिया जो हमारा टीम कोचेस है उन सबको दे दे करूंगा।
1: दिन का तीसरा स्वर्ण पदक आज एथलेटिक्स से आया, जब सोनम राणा ने पुरुषों के शॉटपुट F57 वर्ग में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत पदक अपने नाम किया। सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक हासिल किया।
0: इसके अतिरिक्त 7 भारतीय मुक्केबाज भी आज फाइनल में खेलेंगे। वॉल्ट फाइनल में देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार की चुनौती होगी। 5000 मीटर दौड़ के फाइनल में गुलवीर सिंह ट्रैक पर उतरेंगे। मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले फाइनल में भारतीय टीम खेलेगी। जम्मू और श्रीनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बंद होने के कारण रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बडगाम और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष सेवा सड़क संपर्क बाधित होने से प्रभावित यात्रियों को राहत देने और कश्मीर तथा जम्मू के बीच सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी। केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Swami Vivekanand Cultural Youth Center in Mysuru, credits Indian youth for progress in science, technology and sports. Prime Minister launches development projects worth 18,000 crore rupees in Andhra Pradesh. Centre approves advance release of over 2,000 crore rupees as assistance to flood-affected states. India and China resume cross-border trade through Nathula Pass in Sikkim. Flood fury continues in Odisha, 6 people killed in Kerala as incessant rain causes widespread havoc. And

0: Jasmin Lamboria and Preeti Pawar win gold medals. Para-athletes Oman Rana bags gold in men's shot put F57. Prime Minister Narendra Modi has credited Indian youth for achieving progress in the areas of science, technology and sports and called upon them to contribute in the areas of cleanliness drive, conservation of water and natural resources and gift Indian artefacts. He was speaking after inaugurating the Swami Vivekanand Cultural Youth Centre, Vivek Smarak, in Mysuru today. The Prime Minister emphasized that Swami Vivekanand's vision was to mentor our youth and empower them to work for nation building.
1: Swami Vivekanand ji, युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे. उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं. लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था. भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे. उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की. भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है. आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है. किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से.
0: Mr. Modi further said the capabilities of our youth has transformed India into the second largest mobile phone market. New strides are being made in semiconductor manufacturing, innovations and in private sector space missions. Moreover, Mr. Modi underscored the progress achieved in the last 12 years in the field of education by establishing new universities and colleges, including ITIs, IIMs, IITs, AIMS, and increasing medical seats as well.
1: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है. पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं. 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई. 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए एम्स भी स्थापित किए गए हैं. आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है. मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है.
0: Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar, Governor Thavarchand Gehlot and the President of Ramakrishna Math, Srimad Swami Gautamanandji Maharaj were present on the occasion. Earlier in the day, Prime Minister Modi launched development projects worth about 18,000 crore rupees, including airport, road and energy infrastructure at Vizianagaram in Andhra Pradesh. Addressing a public meeting, the Prime Minister said Andhra Pradesh is moving ahead at a rapid pace and the centre is fully committed to realising the vision of Swarna Andhra and Vikasit Bharat through large-scale infrastructure and industrial development.
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है. एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं. इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं. ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है. मैं आप सभी को इन प्रोजेक्ट की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं.
0: Prime Minister Modi also inaugurated the Alluri Sitarama Raju International Airport at Bhogapuram and said it is a launchpad for the aspirations of the state's youth. He announced that the airport has been named after freedom fighter Alluri Sitarama Raju, which will inspire future generations with the spirit of patriotism and public service.
1: बीते 12 इयर्स में देश के एविएशन सेक्टर ने असाधारण प्रगति की. 2014 तक देश में केवल 74 एयरपोर्ट ऑपरेशनल थे. आज ये संख्या 166 है. एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी. एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं. 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है.
0: Prime Minister Narendra Modi will launch the Nasha Mukt Yuva for Vikasit Bharat Sankalp Abhiyan tomorrow through video conferencing. The launch will mark the beginning

0: China. Border trade will operate from Monday to Thursday, with the gate opening at 7:30 a.m. IST, and each registered trader will be allowed to conduct trade worth up to rupees 2 lakhs per day. Officials confirmed that the existing list of approved imported and exported items and the standard operating system remain unchanged. This is Moinak Chatterjee with Manush Putin Sharma from Akashvani News Gangtok.
1: In Himachal Pradesh, the cross-border trade between India and China also resumed through Shipkila in Kinnaur today after a gap of around 6 years. State Revenue Minister Jagat Singh Negi inaugurated the Chupan Trade Mart at Namgya, a border panchayat in Pooh subdivision of Kinnaur district, and flagged off a group of 17 traders to commence cross-border trade. National Security Advisor Ajit Doval was conferred the Lokmanya Tilak National Award 2026 at a function held at Pune today. The award, instituted by the Lokmanya Tilak Smarak Trust, was presented by Union Home Minister Amit Shah on the occasion of the 106th death anniversary of Lokmanya Bal Gangadhar Tilak. The Delhi BJP today lodged a complaint against Leader of Opposition in the Lok Sabha Rahul Gandhi, Independent MP Rajesh Ranjan, alias Papu Yadav, SPMP Avadhesh Prasad and other concerned individuals for allegedly hurting religious sentiments in the Parliament complex yesterday. The BJP delegation, led by New Delhi MP Bansuri Swaraj, demanded registration of an FIR against the opposition leaders. In view of the closure of Jammu-Srinagar National Highway NH44 between Jammu and Srinagar, the railways has decided to operate a special train between Badgam and Sri Mata Vaishno Devi Katra to facilitate stranded passengers and manage the heavy rush at railway stations. At the ongoing Commonwealth Games in Glasgow, Indian boxers Jasmine Lamboria and Preeti Pawar won gold medals in their respective finals, while para-athlete Soman Rana also bagged a gold in men's shot put F57 event. We have more from our sports desk.
0: India climbed to 6th place today after its medal tally rose to 30, including 8 gold, 15 silver and 7 bronze medals. Indian boxers Jasmine Lamboria and Preeti Pawar delivered dominant victories in their respective finals to win gold medals. Preeti claimed the women's 54-kilogram boxing title with a commanding 5-0 victory over Canada's Scarlett Delgado. Jasmine secured another 5-0 win in the women's 57-kilogram final, defeating Michaela Walsh of Northern Ireland. India also celebrated a historic achievement in para-athletics, with Soman Rana winning gold and Shubham Jual taking silver in the men's short put F57 event. The result marked India's first ever Commonwealth Games gold medal in the men's short put F57 event and the nation's first double podium finish in the category. In athletics, triple jumper Praveen Chitrawal won silver while Silva Prabhu earned bronze. President Draupadi Murmu, Vice President CP Radhakrishnan and Union Sports and Youth Affairs Minister Dr. Mansukh Mandviya congratulated the medal winners. With Vikas Churagja from Sports Desk.
1: And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Swami Vivekanand Cultural Youth Centre in Mysuru, credits Indian youth for progress in science, technology and sports. Prime Minister launches development projects worth 18,000 crore rupees in Andhra Pradesh. Centre approves advance release of over 2,000 crore rupees as assistance to flood-affected states. India and China resume cross-border trade through Nathula Pass in Sikkim. Flood fury continues in Odisha, 6 people killed in Kerala as incessant rain causes widespread havoc. And in Commonwealth Games, boxers Jasmine Lamboria and Preeti Pawar win gold medals. Para-athlete Soman Rana bags gold in men's shot put F57. That is all in the news at 9. Good night.
2: Adab, ye Akashvani hai. Khabron ke saath main Shagufta Yasmeen. वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर का इफ्तिताह किया और साइंस टेक्नोलॉजी और खेलों के शुबे में पेशरफ्त का सेहरा भारतीय नौजवानों को दिया। वजीर आजम ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। मरकज ने सैलाब से मुतासर रियासतों के लिए इमदाद के तौर पर 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पेशगी रकम जारी करने की मंजूरी दी है। सिक्किम में नाथुला पास के रास्ते भारत और चीन के दरमियान सरहदी तिजारत फिर शुरू हो गई है। ओडिशा में सैलाब का जोर जारी है। केरलम में लगातार बारिश होने से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और 6 अफराद की मौत हो गई है। और दौलत मुश्तरका खेलों में भारतीय मुक्केबाजों जैस्मीन लंबोरिया और प्रीति पवार ने सोने के तमगे जीते हैं, जबकि मर्दों के शॉटपुट F57 में पैरा एथलीट सोमन राणा ने भी सोने का तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साइंस, टेक्नोलॉजी और खेलों के शोबे में पेशरफ्त में नुमाया रोल के लिए भारतीय नौजवानों की सताइश की है और उन पर जोर दिया है कि वो सफाई सुथराई की मुहिम, पानी की बचत और कुदरती वसाइल को महफूज रखने के शोबों में भी अपना रोल अदा करें और भारत में बनाई गई मसनूआत तोहफे में दें। जना मोदी आज मैसूरू में स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर विवेक स्मारक का इफ्तिताह करने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि हमारे नौजवानों को राह दिखाना और मुल्क की तामीर के लिए काम करने की खातिर उन्हें बाइख्तियार बनाना स्वामी विवेकानंद का नजरिया था।
3: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
2: जना मोदी ने कहा कि हमारे नौजवानों की सलाहियत की बदौलत भारत दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल फोन मार्केट बन गया है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, इख्तराआत और प्राइवेट सेक्टर के खलाई मिशन में नई नई पेशरफ्त हुई हैं। इसके अलावा जना मोदी ने ITIs, IIMs, IITs और एम्स समेत नई यूनिवर्सिटियां और कॉलेज कायम करके नीज मेडिकल सीटों की तादाद में इजाफा करके तालीम के शोबे में गुज़श्ता 12 साल के दौरान की गई तरक्की को उजागर किया।
3: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए एम्स भी स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आंध्र प्रदेश रियासत तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है और मरकजी सरकार बड़े पैमाने के बुनियादी ढांचे और सनती तरक्की के जरिए स्वर्ण आंध्रा और विकसित भारत के नजरिए को हकीकत की शक्ल देने के तई पूरी तरह अहदबंद है। भोगपुरम में अलूरी सीताराम राजू बैन अलावामी हवाई अड्डे का अफ्तताह करने के बाद एक जलसा आम से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और तवानाई से मुतालिक बुनियादी ढांचे समेत तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों से मरकज और रियासत में NDA सरकारों के तहत रियासत की तेज रफ्तार तरक्की की अक्कासी होती है। जना मोदी ने नए हवाई अड्डे को आंध्र प्रदेश, खासतौर पर शिमाली आंध्र की तरक्की के रनवे और रियासत के नौजवानों की उमंगों के लिए एक लॉन्च पैड से ताबीर किया। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने सैलाब से मुतासर रियासतों की मदद के लिए कुदरती आफात की सूरत में काम आने वाले रियासती फंड SDRF के लिए मरकज के हिस्से की 2,117 करोड़ रुपए से ज्यादा की पेशगी रकम जारी करने की मंजूरी दी है। सैलाब से मुतासर 7 रियासतों में से हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और नागालैंड को इससे कबल माली साल 2026-27 के लिए SDRF की पहली किस्त मौसूल हुई थी। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
4: मुतासरा रियासतों के लिए जिस इमदाद की मंजूरी दी गई है उसमें माली साल 2026-27 के लिए पहली किस्त की पेशगी रकम के तौर पर अरुणाचल प्रदेश के वास्ते 44,55,00,000 रुपए शामिल हैं। आसाम के लिए पहली किस्त के तौर पर 79,35,00,000 रुपए मंजूर किए गए हैं, जबकि गुजरात के लिए 500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। हिमाचल प्रदेश को पहले ही इमदाद की पहली किस्त मिल चुकी है और अब दूसरी किस्त की पेशगी रकम के तौर पर 193,95,00,000 रुपए मंजूर किए गए हैं, जबकि ओडिशा के लिए 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त मंजूर की गई है। इसके

0: अब महाराष्ट्र के लिए पहली किस्त की पेशगी रकम के तौर पर 500 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। उम्र दाखिला की वजारत ने कहा है कि मानसून की बारिश का सिलसिला शुरू होने के बाद से हुकूमत रियासती सरकारों के साथ करीबी तालमेल कायम रखते हुए सैलाब की सूरत हाल पर लगातार नजर रखे हुए है। वजारत ने यह भी कहा है कि सरकार ने जहां कहीं भी जरूरत पेश आई हर मुमकिन इमदाद फराहम की है। इसमें कुदरती आफात की सूरत में काम करने वाली फोर्स NDRF की टीमों को पहले से तैनात करना और दिफा की वजारत की तरफ से लॉजिस्टिक्स मदद फराहम करना शामिल है। दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: सिक्किम में नाथुला पास के रास्ते भारत और चीन के दरमियान सरहदी तिजारत आज सुबह से फिर शुरू हो गई है। गुजश्ता 6 साल से ज्यादा अरसे से ही मुअत्तल थी। इस तिजारत का दोबारा शुरू होना भारत और चीन के दरमियान बाहमी राब्तों में एक मुस्बत अलामत है। हमारे नामा निगार ने बताया कि भारत और चीन दोनों मुल्कों के अहदेदारों ने आज सुबह उस मुकाम पर मुलाकात की जो दोनों में से किसी के भी कब्जे में नहीं है। चीन की नुमाइंदगी कॉमर्स और सरहदी तिजारत के महकमों के नुमाइंदों समेत तिब्बत खुद मुख्तार खित्ते के इंतजामी सरबराह ने की। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सरहद के दोनों तरफ तिजारत की बहाली भारत और चीन के दरमियान बाहमी राब्ते के सिलसिले में एक मुस्बत कदम है। 1962 में भारत चीन महाज आराई के पेशे नजर बंद रहने के बाद 2006 में सरहदी तिजारत बाजाब्ता तौर पर बहाल की गई थी और 2020 में COVID-19 वबा के सबब मुअत्तल किए जाने से पहले बिला रुकावट जारी रही। ये सरहदी तिजारत पीर से जुमेरात तक अंजाम दी जा सकेगी और भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 7:30 बजे गेट खोले जाएंगे और हर इंदराज शुदा ताजिर को रोजाना की बुनियाद पर 2 लाख रुपए की तिजारती सरगर्मियां अंजाम देने की इजाजत होगी। अहदेदारों ने इस बात की तस्दीक की है कि मंजूर शुदा दर आमदाती और बर आमदाती अशिया की मौजूदा फहरिस्त और कामकाज के मेयारी जाब्तों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। गंगटोक से मैनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
1: सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रसाद नड्डा ने पोस्ट ग्रेजुएट 2026 के लिए कौमी एहलियत दाखिला इम्तिहान की तैयारियों का आज जायजा लिया ताकि बिला रुकावट महफूज शफाफ और टेक्नोलॉजी पर मबनी इम्तिहान को यकीनी बनाया जा सके। ये इम्तिहान इस माह की 30 तारीख को होगा। मीटिंग के दौरान वजीर मौसूफ ने तिब्बी साइंस से मुतालिक इम्तिहानात के कौमी बोर्ड टेक्नोलॉजी शराकतदारों और उन दीगर मुतालिका फरीकों की तैयारियों का जायजा लिया जो इम्तिहान के इनकाद से मुंसलिक हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ओडिशा में महानदी और उसकी मुआविन नदियों में तोगयानी के साथ सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन बनी हुई है जिससे कटक पुरी जगत सिंहपुर केंद्रपाड़ा और खोरदा अजला के नशेबी इलाकों को एक बबार फिर खतरा लाहक हो गया है। 10 नशेबी अजला मुसलसल हाई अलर्ट पर हैं क्योंकि हीराकुंड बांध से 22 गेट के जरिए सैलाब का पानी छोड़ा जा रहा है। 8 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर हैं जबकि 2,69,000 से ज्यादा लोगों को महफूज मकाम पर पहुंचाया गया है। केरलम में लगातार बारिश होने से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। चट्टानों के टुकड़े गिरने के वाकयात पेश आए हैं और कई इलाकों में पानी भर गया है। कुटायम उडुकी और मलापुरम जिलों से आज बारिश से वाबस्ता 6 अमवात की इत्तला मिली है जबकि 6 अफराद अब भी लापता हैं। जम्मू और श्रीनगर के दरमियान जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा NH-44 के बंद होने के पेश नजर रेलवे ने फंसे हुए मुसाफिरों को सहूलत फराहम करने और रेलवे स्टेशनों पर भीड़भाड़ से निमटने के लिए बडगाम और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के दरमियान एक खसूसी रेलगाड़ी चलाने का फैसला किया है। आकाशवाणी जम्मू के नामा निगार ने खबर दी है कि शाहरा बंद होने के बाद श्रीनगर और श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरों की बढ़ती तादाद के पेश नजर कमर्शियल कंट्रोल जम्मू तवी की दरखास्त के बाद यह फैसला किया गया है। मरकजी सरकार ने टैक्स मुंतकली की एक इजाफी किस्त के तौर पर रियासती सरकारों के लिए 1,09,019 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं जो 10 अगस्त के लिए तयशुदा महाना मुंतकली के अलावा हैं। एक बयान में वजारत खजाना ने कहा है कि इस इजाफी किस्त का मकसद रियासतों को सरमाया अखराजात और तरक्याती अखराजात के अमल में तेजी लाने के लिए मजीद सहूलत फराहम करना है। وزارت کی جانب سے مختلف ریاستوں کے لیے جاری کیے گئے علیحدہ علیحدہ

आदाद शुमार के मुताबिक उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 19,208 करोड़ रुपए मौसूल हुए हैं, जबकि बिहार को 10,845 करोड़ रुपए और मध्य प्रदेश को 8,010 करोड़ रुपए मिले हैं। उधर मगरबी बंगाल को 7,866 करोड़ रुपए मौसूल हुए हैं, जबकि महाराष्ट्र को 7,022 करोड़ रुपए मिले हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान का आगाज करेंगे। मुनशियात के खिलाफ 100 हफ्तों की मुल्कगीर जन भागीदारी मुहिम शुरू होने के मौके पर इसका आगाज हो रहा है। इस प्रोग्राम में 10,000 से ज्यादा मकामात से मुल्क भर के नौजवान हिस्सा लेंगे। मजकूरा मुहिम के तहत पूरे मुल्क में हर इतवार को हफ्तेवार सरगर्मियों का अहतमाम किया जाएगा, ताकि बेदारी को फरोग देने और एक ऐसा मुआशरा बनाने में अवाम की शमूलियत की हौसला अफजाई की जा सके, जहां मुनशियात की लानत ना हो। एयर मार्शल तेजपाल सिंह ने आज फजाइया के नायब सरबराह की जिम्मेदारी संभाल ली है। इस मौके पर उन्होंने कौमी जंगी यादगार पर गुलदायरा नजर किया और मुल्क की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर सूरमाओं को खिराज अकीदत पेश किया। 16 जून 1990 को एक फाइटर पायलट के तौर पर फजाइया में शामिल हुए एयर मार्शल तेजपाल सिंह को 3,500 से ज्यादा घंटों की परवाज का तजुर्बा है। वो कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और एक एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट हैं। एयर मार्शल तेजपाल सिंह भारतीय फजाइया में अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। आज दिल्ली बीजेपी ने लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, आजाद रुकने पार्लियामेंट राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट अवधेश प्रसाद और दीगर मुतालिका लोगों के खिलाफ कल पार्लियामेंट के अहाते में मुबैना तौर पर मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के सिलसिले में एक शिकायत दर्ज की है। नई दिल्ली की रुकने पार्लियामेंट बांसुरी स्वराज की क्यादत में बीजेपी के वफद ने अपोजिशन लीडरान के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने का मुतालबा किया। ग्लासगो में दौलत मुश्तरका खेलों में तमगों की तादाद 30 होने के बाद भारत आज छठे मकाम पर पहुंच गया। भारत ने सोने के 8, चांदी के 15 और कांसे के 7 तमगे जीते हैं। भारतीय मुक्केबाजों जैस्मीन लंबोरिया और प्रीति पवार ने अपने अपने फाइनल मुकाबले में सोने के तमगे जीते। प्रीति ने खवातीन के 54 किलोग्राम के जुमरे में कैनेडा की स्कारलेट डेलगाडो को 5-0 से हराकर खिताब जीता। मौजूदा आलमी चैंपियन जैस्मीन ने खवातीन के 57 किलोग्राम के जुमरे में शिमाली आयरलैंड की मिशेला वाल्श को 5-0 से शिकस्त दी। पैरा एथलेटिक्स में मर्दों के शॉटपुट F57 मुकाबले में सुमन राणा ने सोने का और शुभम जोयाल ने चांदी का तमगा जीता। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर का इफ्तिताह किया और साइंस, टेक्नोलॉजी और खेलों के शोबे में पेशरफ्त का सिहरा भारतीय नौजवानों को दिया। वजीर आजम ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। मरकज ने सैलाब से मुतासर रियासतों के लिए इमदाद के तौर पर 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पेशगी रकम जारी करने की मंजूरी दी है। सिक्किम में नाथुला पास के रास्ते भारत और चीन के दरमियान सरहदी तिजारत फिर शुरू हो गई है। और दौलत मुश्तरका खेलों में भारतीय मुक्केबाजों जैस्मीन लंबोरिया और प्रीति पवार ने सोने के तमगे जीते हैं, जबकि मर्दों के शॉटपुट F57 में पैरा एथलीट सुमन राणा ने भी सोने का तमगा हासिल किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। ये पत्रिका शब्दों की उस यात्रा का हिस्सा है जो हमारी भाषाओं, हमारे साहित्यकारों और हमारी राष्ट्रीय चेतना को आपस में जोड़ती चलती है। आज के अंक में हम काव्य से लेकर गद्य तक, वीरता से लेकर भाषा एकता तक और वर्तमान से लेकर स्मृतियों तक एक संश्लिष्ट यात्रा

उतरेंगे। करगिल की चोटियां आज भी उस अदम्य साहस की गवाह हैं, जब हमारे सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर मातृभूमि की रक्षा की थी। करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आज के संपादकीय में हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक काव्यांजलि, काव्य अनुगूंज उस विजय की। विजय केवल युद्ध भूमि में प्राप्त होने वाला एक परिणाम नहीं, बल्कि राष्ट्र के स्वाभिमान, साहस और त्याग का अमर घोष है। करगिल विजय दिवस हमें उन वीर सैनिकों की अदम्य वीरता का स्मरण कराता है, जिन्होंने दुर्गम हिम शिखरों पर अपने प्राणों की आहुति देकर भारत की अस्मिता की रक्षा की। युद्ध के इतिहास में तलवारें और बंदूकें विजय का मार्ग प्रशस्त करती हैं, किंतु विजय को अमरत्व शब्द देते हैं। यही कारण है कि भारतीय काव्यधारा में वीर रस केवल उत्साह का संचार नहीं करता, बल्कि राष्ट्र चेतना को जागृत भी करता है। उन वीरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है, स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा की। ये सभी ज्ञात अज्ञात सैनिकों के प्रति राष्ट्र की सामूहिक कृतज्ञता का स्वरूप, जो हर मौसम, हर परिस्थिति और हर चुनौती के बीच हमारी सुरक्षा के प्रहरी बने खड़े हैं। देश के सैनिकों से कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, फतह तिरंग आज क्यों न फिर गड़े, जगत प्रसिद्ध शूर सिद्ध तुम सभी, जवान हिंद के अडिग रहो डटे, न जब तलक निशान शत्रु का हटे, हजार शीश एक थौर पर कटे, जमीन रक्त रुंड मुंड से पटे, तजो न सूचिकाग्र भूमि भाग भी। युद्धरत सीमाओं पर सैनिकों को विदा करने का भाव दर्ज करते हुए कवि आमिर हमजा ने लिखा है, चौतरफा गूंजते सायरन के बीच जंग में जाते एक हथियार बंद सिपाही को सरेराह गले लगाने वाली स्त्री, जो उसकी माँ हो सकती है या कि बहन, प्रेमिका हो सकती है या कि दोस्त, या कि फिर पत्नी, उससे बेहतर भला कौन जान सकता है कि हर अलविदा एक यात्रा की समाप्ति है। इसी तरह एक और बेहद भावपूर्ण कविता की इन पंक्तियों में, जिनका अनुवाद किया है रमेश कौशिक ने, कवि अलेक्जेंडर प्रोकोफ्येव कहते हैं, किंतु सैनिक क्रांतिकारी चीखता है, मर नहीं सकता कभी मैं नहीं अब तक मरा हूँ, मैं मरूंगा भी नहीं। तभी थर्राहट हुई, दीवार जो घेरे हुए थी उसमें दरारें पड़ गईं, और सैनिक के हृदय से सेब तरु की शाख फूटी, फिर बड़ी हो वो खुशी से झूमती है मकबरे पर, और गुलाबी श्वेत फल उस पर गिराती है, सैनिक के हृदय की शिरा अब तक धड़कती है। इसी क्रम में एक सशक्त भोजपुरी गीतकार और कवि राम जियावन दास बावला ने लिखा, करगिल न कुल कश्मीर छोड़ भागू, बापू क हमरे जगीर छोड़ भागू, भाई समझ के जुगवली बहुत हम, आगी लगवले मड़ैया में, छोड़त न बच्चू लड़ैया में, कसके कमरिया अखाड़े जवनवा, उमड़ल बा भीर जस बरसे सवनवा, के बावला मति मरले बा तोहरी, दाकेले ताती तलैया में, छोड़ब न बच्चू लड़ैया में। और हमारे समय के बहुत बड़े कवि रामधारी सिंह दिनकर ने वीर सैनिकों की प्रशस्ति में कहा, जाग रहे हम वीर जवान, जियो जियो जय हिंदुस्तान, हम प्रभात की नई किरण है, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल, हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्र के, सुरभि स्वर्ग की लेते हैं, हम हैं शांति दूत धरनी के, छा सभी को देते हैं, वीर प्रसू माँ की आंखों के, हम नवीन उजियाले हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं, तन मन धन तुम पर कुर्बान, जियो जियो ए हिंदुस्तान।

0: वीरता की अनुगूंज हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र केवल भूमि से नहीं बल्कि उसकी विविधता में एकता से बनता है, और इस एकता का सबसे सुंदर माध्यम है भाषा। भारत जैसे बहुभाषी देश में हर भाषा हर बोली एक सेतु का काम करती है, जो हमें एक दूसरे से और राष्ट्र की सामूहिक चेतना से जोड़ती है। इसी विचार पर केंद्रित है हमारी अगली प्रस्तुति, भाषाओं का सेतु, राष्ट्र का स्वर। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कोंकणी मराठी साहित्यकार श्री दामोदर मावजो इस विषय पर कहते हैं,
1: भाषा एवं साहित्य अपनी संस्कृति की महत्वपूर्ण पहचान होती है। कोई भी भाषा हो, हमारे विविधताओं से भरे भारत देश की ज्यादातर भाषाओं में वाचन लेखन संभाषण जारी रखकर भाषा वृद्धि तथा समाज समृद्धि को बढ़ावा देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान हमें प्राप्त होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भाषाओं में वाचन लेखन संभाषण जारी रखना चाहिए। भाषा राष्ट्रीय एकात्मता सबल और संपन्न हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है।
0: स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी पणजी। इसी विचार बिंदु को आगे बढ़ा रहे हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर हितेंद्र मिश्र।
2: भाषाएं संवाद के लिए एक उपयोगी टूल्स के रूप में काम करती हैं, लेकिन केवल टूल्स ही नहीं होती, इनके साथ संस्कृति, समाज, लोगों के अपने जुड़ाव, लोगों की अपनी परंपराएं, लोगों के अपना अस्तित्व, सब कुछ का जुड़ा हुआ होता है। इसलिए भाषाएं जो जोड़ती हैं, जुड़िया काम करती हैं, वो केवल भाषाई आधार पर ही नहीं करती हैं, बल्कि वो सांस्कृतिक, सामाजिक सभी आधारों पर लोगों को जोड़ती हैं। और स्वतंत्रता आंदोलन में जो स्वतंत्रता आंदोलन की व्यापकता थी, जो उसे विस्तार मिला, जो उसे प्रचार प्रसार मिला, उस प्रचार प्रसार में भाषा की भूमिका सबसे अधिक केंद्रीय और अग्रणी भूमिका है। इस रूप में हम भाषा को देखते हैं और बस एक कह सकते हैं कि भारत में जो भाषाई वैविध्य है, इस भाषाई वैविध्य के साथ भी, लेकिन भारत में भाषाई वैविध्य जरूर है, लेकिन भारत में सांस्कृतिक एकता, जो जुड़ने के तार हैं आपस में लोगों के, वह एक है। हम सभी भारतीय हैं, इसलिए भाषाएं अलग होते होते भी हमारे भाव एक हैं, और इस भाव की जो एकता है वह हमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के समय में बड़े महत्वपूर्ण रूप से दिखाई देती है। इसलिए पहली बार जब अंग्रेजों का आगमन होता है और अंग्रेज भारत में अपनी सत्ता स्थापित करते हैं, मुगलों की सत्ता को विस्थापित करते हुए, तब हम देखते हैं कि उस समय जो लेखन है, उस लेखन का तरीका अलग है, लेकिन जब वो यहाँ के लोगों पर शासन करना और निरंकुशता और यहाँ के लोगों के साथ अत्याचार करना शुरू करते हैं, तब उनकी नियति और उनका कार्य पद्धति बदल जाती है। दोनों में जो पत्रकारिता है, जो भाषा है, जो हमारी भूमिकाएं हैं, वो अलग अलग ढंग से दिखाई देती हैं। इसकी ताकत भी है, और विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वह हम हिंदी की बात करें, चाहे हम बंगला की बात करें, चाहे मराठी की बात करें, चाहे गुजराती की बात करें, तमिल की बात करें, इन सभी भाषाओं में स्वाधीनता आंदोलन के लिए स्वर उठे और मजबूती के साथ खड़े हुए और देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। और भारत में पत्रकारिता की शुरुआत ही व्यवस्था के निरंकुश, व्यवस्था के व्यभिचारी, व्यवस्था के कदाचरण के विरुद्ध खड़ी हुई पत्रकारिता के रूप में भारत में पत्रकारिता विकसित हुई है। हम पहले ही पत्र से अगर देखें तो हम देखते हैं कि वह सत्ता के जो गलत मंशा है उसके खिलाफ पत्रकारिता खड़ी होती है। वह पत्रकारिता चाहे हिंदी की हो, चाहे अन्य भाषाओं की हो, हिंदी उसमें एक प्रमुख भाषा थी, हिंदी एक बड़ी भाषा थी, क्योंकि बोलने वाले समुदाय का व्यापकत्व तो ज्यादा था। तो देखें तो हिंदी में तमाम पत्र पत्रिकाएं थी, जिसमें प्रताप एक महत्वपूर्ण पत्र था, जिसे गणेश शंकर विद्यार्थी निकालते थे, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा संपादित अभ्युदय, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित हिंदी का कर्मवीर, बंगला में हम देखें तो अमृत बाजार पत्रिका शिशु कुमार घोष ने संपादित की, मराठी में तो पत्रकारों की और पत्रिकाओं की सीरीज है पूरी, अगर संक्षेप में चर्चा करें तो केसरी जो प्रतिनिधि पत्र है मराठी का, बाल गंगाधर तिलक ने उसको संपादित किया, स्वयं महात्मा गांधी ने गुजराती में नवजीवन नाम का पत्र निकाला, स्वदेश मित्रन तमिल में सुब्रमण्य अय्यर ने निकाला।

0: उर्दू में मौलाना अबू कलाम आजाद जी ने अल हिलाल नाम का पत्र निकाला, और इन सभी पत्र पत्रिकाओं को आप लेकर के देखें तो इन पत्र पत्रिकाओं का एक ही मंशा थी, वह मंशा थी कि भारत में स्वाधीनता की स्थापना करना। और यह स्वाधीनता सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, यह स्वाधीनता स्वदेशी स्वदेश के प्रति एक प्रेम के जागरण की स्वाधीनता थी, जिसमें इन पत्रिकाओं ने अंग्रेजी नीतियों की आलोचना की, लोगों में जनमत तैयार किया, स्वदेशी के प्रति लोगों की में रुचि जागृत की, और इन सब के बाधक तत्व जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को खड़ा करने का काम किया। राष्ट्रीय आंदोलन विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार चल रहा है, इसकी सूचना इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचती थी। पत्र पत्रिकाएं वे साधन थे जिनके माध्यम से हम पूरे देश को एक साथ जोड़ पा रहे थे। आप देखेंगे कि यह समय था, यह दौर था, जब अखबारों की एक आवाज पर लाखों लोग सड़क पे इकट्ठा हो जाते थे। यह अखबारों के प्रति, पत्र पत्रिकाओं के प्रति लोगों का विश्वास था। लोगों को यह लग रहा था कि पत्र पत्रिकाएं, ये अखबार हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारी स्वाधीनता के लिए काम कर रहे हैं, हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए लोगों का विश्वास, लोगों का विश्वास जीतकर पत्र पत्रिकाएं इस देश को एकता के सूत्र में बांधने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। हम भारतीय मेधा को, भारतीय जो हमारी इंटेलिजेंसिया है, इसको हम किस तरह से पीछे के समय से लेकर के बाहर आए हैं, और हमारी क्या आवश्यकताएं हैं, और हम पीछे किस प्रकार स्वाधीनता आंदोलन में हम इनके माध्यम से पूरे देश को एक सूत्र में बांध सके थे, इस सबकी पूरी मुकम्मल जानकारी अनेक आयामों, अनेक विषयों, अनेक संदर्भों के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर दिया जा रहा है। जो कॉलोनियल माइंडसेट है, जो अंग्रेजों का एक माइंडसेट था, उस तरह के जो माइंडसेट को लेकर के हम जब चर्चा करते हैं तो हम यह देखते हैं कि उसके पीछे उनकी मंशा क्या थी, उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था। वह उद्देश्य था भारत पे अधिकतम समय तक शासन करना, यहाँ की संपदा को लूटना, यहाँ के संसाधनों को लूटना, अपने यहां ले जाना, और हमारे संसाधनों का जितना दोहन इस समुदाय ने किया, जिसे हम ब्रिटिश नाम से कहते हैं, वह लोगों को जानना चाहिए, और वह जानने का माध्यम ही है कि हम स्वतंत्रता आंदोलन के समय की पत्रकारिता की चर्चा करें, उस समय के इतिहास की चर्चा करें, उस समय के ज्ञान संपदा की चर्चा करें, उस समय हमारी स्कूलिंग सिस्टम की चर्चा करें, उस समय की हमारी सारी व्यवस्था, जो समाज की व्यवस्था थी, उसकी चर्चा करें, न्याय प्रक्रिया की चर्चा करें। तो लोगों में यह बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी कि जो 200 वर्ष बीता हमारा अंग्रेजी शासनकाल में, वो किस प्रकार का बीता। और इसीलिए स्वतंत्रता आंदोलन भारत की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य आवश्यकता थी, जो एक समय में खड़ी हुई, और उसके आंदोलन के जरिए ही हम इस बड़े अपने अवरोधक तत्व को, जो हमारे विकास में, हमारे ज्ञान के क्षेत्र में जो बाधक था, उसे हम हटा सके। इसलिए तमाम तरह की जानकारियां दी जानी चाहिए, और अनेक प्रकार से दी भी जा रही हैं। भाषा को लेकर के हमारा काम, जो निदेशालय का काम है हमारा, उसका जो मैंडेट है वो प्रोपगेशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज है। हम उसके माध्यम से, हम भाषाई परिवारों की संकल्पना के माध्यम से, हम भाषाई एकता के माध्यम से, हम सांस्कृतिक संदर्भों को पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं, और लोगों के बीच जाकर के उसकी चर्चा करते हैं। हम तमाम प्रकार की संगोष्ठियां आयोजित करते हैं, और विशेष करके जो हिंदी क्षेत्र से इतर क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में उन क्षेत्र के लोगों को हम भारत के साथ उनके कैसे सामाजिक सांस्कृतिक संबंध हजारों हजार वर्षों से रहे हैं, इसे एस्टेब्लिश करने का प्रयास करते हैं, जिससे भारत में एकता, एकात्मकता और एकीकरण का भाव हम प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक व्यक्ति के बीच जागृत कर सकें।
1: भाषाओं की इस विविधता में जब राष्ट्र प्रेम शब्दों में ढलता है तो वो कालजयी बन जाता है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्य कृति भारत भारती ऐसी ही एक रचना है, जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीयों के हृदय में राष्ट्र प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित रखी है। थोड़े शब्दों में गहन भाव समेटे इस कृति पर आधारित है हमारी अगली प्रस्तुति, लघु रूपक अत्यल्प में संपूर्ण।
2: किसी राष्ट्र के स्वाभिमान की वास्तविक संचेतना का पुनरुत्थान राजनीतिक मंचों से नहीं, बल्कि किसी निष्ठावान साधक की लेखनी से मिश्रित होता है। सन 1912 का वो दौर, जब औपनिवेशिक सत्ता के दंश से संपूर्ण भारतवर्ष की चेतना सुप्त पड़ी थी, तब

0: तुर्की के चिरगांव से एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला कर रख दी। एक ऐसी अमरकृति जिसने बहुत कम शब्दों में यानी अत्यल्प में पूरे भारत के गौरव, उसकी चेतना और उज्जवल भविष्य के सपनों को समेट लिया। भारत भारती, अत्यल्प में संपूर्ण, और इसे अपनी लेखनी से रचा था राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने। तीन खंडों की इस कृति में मैथिली शरण गुप्त ने भारतवर्ष के त्रिकाल का संपूर्ण दर्शन उखेर दिया। भारत भारती का पहला खंड था अतीत खंड। वो पन्ने केवल कविता नहीं थे, वो सोई हुई कौम को जगाने के लिए ऋषियों की वाणी की तरह गूंजे थे।
1: उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी, जो हो रहा अवनत अभी उन्नत रहा होगा कभी। हंसते प्रथम जो पद्म है तम पंख में फंसते वही, मुरझे पड़े रहते कुमुद जो अंत में हंसते वही। उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है, चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वही मारतंड है। अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कला, उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन ही क्या भला।
0: मैथिली शरण गुप्त का राष्ट्र प्रेम केवल अतीत के यशोगान तक सीमित रहने वाला भावुकता का संजाल नहीं था। भारत भारती की वास्तविक अग्नि उसके वर्तमान खंड में धधक रही थी।
1: तुम सभ्य हो मार्केट जिनका सात सागर पार है, पर ग्राम की वो हाट ही उनका बड़ा बाजार है। तुम हो विदेशों से मंगाते माल लाखों का यहाँ, पर वे अकिंचन नमक गुड़ ही मोल लेते हैं वहाँ। तुम दार्शनिक हो ईश का अस्तित्व सत्य न मानते, है भूत प्रेतों से अधिक वे भी न उसको जानते। हा देव इस ऋषि भूमि का ये आज कैसा हाल है, तू काल सचमुच काल ही है, क्रूर और कराल है।
0: गुप्त ने जब औपनिवेशिक गुलामी के दंश, हमारी आपसी फूट और सामाजिक शिथिलता पर लेखनी चलाई, तो पंक्तियां कविता ना रहकर सोई हुई चेतना पर एक करारा वैचारिक वज्रपात बन गई। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर महेश कटारे कहते हैं,
2: एक समय पर भारत भारती की स्थिति थी कि वो काव्य एक समय पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का घोषणा पत्र जैसा हो गया था और आम जन के बीच में बहुत ही लोकप्रिय पुस्तक रही थी। वह ये हिंदी की पहली कृति थी जिसने राष्ट्रीयता के प्रसार प्रचार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
0: प्रभात फेरियों से लेकर स्वाधीनता संग्राम की गुप्त बैठकों तक भारत भारती की पंक्तियां आजादी के दीवानों का पाथे बन गई। इसी अप्रतिम जनचेतना और अनूठी राष्ट्र सेवा को देखते हुए सन 1936 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के अमर समादर से अलंकृत किया।
1: हे नव युवाओं, देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी है, मनुज जीवन की तुम्ही में ज्योति सबसे जगमगी। दोगे न तुम तो कौन देगा योग देशोद्धार में, देखो कहां क्या हो रहा है आजकल संसार में। सुख शांति में सरकार का शासन समय है अब यहाँ, सुविधा समुन्नति के लिए है प्राप्त हमको सब यहाँ। अब भी न यदि कुछ कर सके हम तो हमारी भूल है, अनुकूल अवसर की उपेक्षा फूलती फिर शूल है।
0: भारत भारती का तीसरा और अंतिम खंड भविष्यत खंड मात्र एक राजनीतिक आजादी की मांग नहीं था, बल्कि वो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण, ज्ञान विज्ञान की उन्नति और विश्व बंधुत्व का संकल्प था। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राजरानी शर्मा बताती हैं,
3: हमारे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने हमें आदर्श की ओर उन्मुख किया। भारत भारती काव्य उन्होंने रचा और किस प्रकार से जीवन की संचेतना को उभारता है, देशभक्ति

0: साहित्य मनीषी के बी एल पांडे कहते हैं,
1: भारत भारती को याद करना न केवल इसलिए जरूरी है कि वो उस समय की एक प्रमुख पुस्तक है, बल्कि इसलिए कि स्वातंत्र्य चेतना की प्रेरणा के रूप में उसका मुख्य स्थान है। हम जब अपने प्रासद वर्तमान से मुक्ति कामना के लिए संघर्ष करते हैं तो हमारे साथ हमारा वर्तमान ही नहीं होता बल्कि हमारा प्रेरक और गर्वीला अतीत भी होता है और नए सूर्योदय के भविष्य का प्रकल्प भी होता है। जब हम समय के इन तीनों आयामों के बोध से संपन्न होते हैं तो रचना की समग्रता के विचार में होते हैं, यानी जो हम करना चाहते हैं उसके प्रति हमारी पूरी दृष्टि होती है काल के तीनों आयामों के साथ।
0: राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का ये कालजयी शब्द शिल्प आज भी हमें यही स्मरण कराता है कि स्वदेश प्रेम ही हर राष्ट्र का शाश्वत प्राण तत्व है।
2: आलेख और वाचन प्रांजल, स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी ग्वालियर। राष्ट्र कवि की कविता के स्वर अभी थमे भी नहीं कि हमें याद आते हैं एक और कालजयी रचनाकार प्रेमचंद, जिनके कलम ने केवल कहानियां ही नहीं लिखी आजादी के सपनों को भी शब्द दिए। उनकी महान कृतियों में बसा वतन का दर्द और आजादी की आकांक्षा आज भी उतनी ही जीवंत है। उदाहरण के लिए सोजे वतन, जिसकी रचना प्रेमचंद ने नवाब राय के नाम से की थी। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति कलम का दम और सोजे वतन।
3: तारीख अक्सर युद्ध भूमि की चीखों, तोपों की गूंज और साम्राज्यों के ढहने का हिसाब रखता है, लेकिन किसी राष्ट्र के स्वाभिमान की वास्तविक इबारत किसी निष्ठावान साहित्यकार की मेज पर रखी स्याही से निस्तृत तो होती है। सन 1908 का वो दौर याद कीजिए जब आजादी केवल एक राजनीतिक मांग नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष की आत्मा की आकुलता बन चुकी थी। ठीक उसी दौर में हमीरपुर की एक शांत मेज पर जन्म होता है सोजे वतन का। रचनाकार नवाब राय, यहां सोज केवल एक शब्द नहीं बल्कि पराधीनता के दंश से पीड़ित किसी स्वाभिमानी हृदय की वो अंतर्वेदना है जिसने आगे चलकर पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींद उड़ा दी। इसमें शामिल अमर रचनाएं दुनिया का सबसे अनमोल रतन शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार और सांसारिक प्रेम और देश प्रेम केवल कहानियां नहीं थी बल्कि पराधीन भारत की आत्मा की आकुलता थी। संग्रह की कहानी यही मेरा वतन है में प्रेमचंद ने अपनी मातृभूमि के प्रति जो भाव उकेरे थे वे किसी श्रेष्ठ कविता से कम नहीं थे।
2: साहित्य मनीषी डॉक्टर मनीषा कहती हैं,
4: जब वे सोजे वतन में दास्तानों की शैली में दुनिया का सबसे अनमोल रतन और शेख मखमूर कहानी सुनाते हैं तो उनका लक्ष्य अपने समय की सबसे बड़ी सच्चाई से ही भेंट कराना था, जिसे हुब्बे वतन कहते हैं। प्रेमचंद के समक्ष कहानी की शैली के लिए कोई दुविधा या संकट की स्थिति कभी नहीं रही। इस संकटहीनता को समझने के लिए सोजे वतन एक सुंदर नमूना है, क्योंकि उसमें दास्तानों की शैली से भिन्न कथा रूप की इश्क दुनिया और हुब्बे वतन भी सम्मिलित है। इन सबसे अलग कहानी के कहन का एक रूप यही मेरा वतन है और सिले मातम दिखाई पड़ता है। ये दोनों उत्तम पुरुष शैली की कहानियां हैं। प्रेमचंद अपनी रचनाओं के आरंभ, विस्तार, अंत, घटनाओं के चुनाव, भाषा शैली आदि के विषय में बहुत सचेत थे। वे किसी परफेक्शनिस्ट से कम नहीं थे।
3: 20वीं सदी के प्रथम दशक में जब भारतीय स्वाधीनता संग्राम अपनी राजनीतिक चेतना के नए क्षितिज तलाश रहा था, तब इस संग्रह ने कथा साहित्य को क्रांति का एक सशक्त माध्यम बना दिया। संग्रह की पांचवी कहानी सांसारिक प्रेम और देश प्रेम में प्रेमचंद ने ये स्थापित किया कि व्यक्तिगत प्रेम से कहीं ऊंचा स्थान राष्ट्र प्रेम का है।

0: निरंकुश साम्राज्यवादी सत्ताएं शास्त्रों से अधिक विचारों की शक्ति से भयभीत होती हैं। हमीरपुर के तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर ने जब सोजे वतन के पृष्ठ पलटे तो उसे प्रत्येक कथा में विद्रोह की गूंज सुनाई दी। इस कृति की 500 प्रतियों को जब्त करके सरेआम अग्नि के समर्पित कर दिया गया। ब्रिटिश हुकूमत को यह भ्रम था कि उन्होंने कागज जलाकर क्रांति की ज्वाला को शांत कर दिया, किंतु वे भूल गए थे कि विचारों की राख से ही नए इतिहास का प्रादुर्भाव होता है।
1: साहित्य मर्मज्ञ मजरुल वासे कहते हैं,
2: ये कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार की बर्दाश्त से बाहर था। जिला कलेक्टर हमीरपुर उत्तर प्रदेश ने इसकी सभी उपलब्ध प्रतियां अपने सामने जलवा कर नष्ट करवा दी और लेखक नवाब राय, जो उस समय उप विद्यालय निरीक्षक थे, को सरकारी कर्मचारी होने के कारण और ये चेतावनी देकर क्षमा कर दिया कि आगे से वे अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कोई साहित्य नहीं लिखेंगे। दो विशेष परिवर्तन हुए। प्रथम तो ये कि नवाब राय का नाम बदल गया और वे प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। ये नाम उन्हें अखबार जमाना के संपादक दयाराम निगम ने दिया और दूसरा ये कि अब उनकी भाषा उर्दू से हिंदी हो गई।
0: आज जब हम स्वतंत्र भारत की अक्षुण हवाओं में सांस ले रहे हैं तो हमें उस समर्थ लेखनी को भी नमन करना होगा जिसने बंधनों के कालखंड में स्वाधीनता के दीप प्रज्वलित किए थे। सोजे वतन केवल एक पुस्तक नहीं, हमारी आजादी की साहित्यिक हुंकार थी।
1: वाचन आनंद श्रीवास्तव, स्वराज सौजन्य, आकाशवाणी आगरा। साहित्य की ये यात्रा उन सबके बिना अधूरी है जिन्होंने अपनी लेखनी से भारतीय साहित्य को समृद्ध किया और आज हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन जिनकी रचनाएं आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा, कथाकार भीष्म साहनी, उर्दू के मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी, व्यंग के हस्ताक्षर हरिशंकर परसाई, कथा आलोचना के पुरोधा राजेंद्र यादव, कन्नड़ साहित्य के ज्ञानपीठ विजेता विनायक कृष्ण गोकक, असमिया साहित्यकार सैयद अब्दुल मलिक और कथा आलोचना के पुरोधा राजेंद्र यादव, भारतीय साहित्य में इन विभूतियों के अवदान को नमन करते हुए संपन्न होता है साहित्य भारती का ये अंक। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में श्रोताओं का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम प्रस्तुत कर रहे हैं चिन्मया भगिनी श्रीमती उमा और श्रीमती राधिका का गायन। चिन्मया भगिनी ने अपनी संगीत शिक्षा पद्मभूषण विद्वान मदुरई श्री टी एन शेष गोपालन और कलईमा मणि विद्वान नैवेली श्री आर संतान गोपालन से प्राप्त की। आप अपने गुरु की प्रमुख शिष्याओं में से एक हैं। संगीत के प्रति विशेष अभिरुचि के कारण आप देश विदेश की विविध संगीत सभाओं में अपना गायन प्रस्तुत करती आ रही हैं। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन टीवी चैनलों पर आपके द्वारा प्रस्तुत अनेकानेक कार्यक्रम अत्यंत लोकप्रिय हुए हैं। चिन्मया भगिनी अनेक पुरस्कार एवं उपाधियों से अलंकृत हैं। आज के कार्यक्रम में चिन्मया भगिनी के साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्रीमती श्रद्धा रविंद्रन, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंह पर श्री एन सुंदर।
1: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ कर्नाटिक क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती राधिका। चिन्मया सिस्टर्स आर वन ऑफ द लीडिंग एंड पॉपुलर डियो इन द फील्ड ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक विद देयर मेलिफ्लुस वॉइसेस, spirited singing and strict adherence to classicism, the duo has captured the hearts of rasikas worldwide. Chinmaya sisters are senior disciples of Padma Bhushan awardee Madurai Sri T.N. Seshagopalan and Kalaimamani Neyveli Sri R. Santana Gopalan and have successfully imbibed and observed the specialities of their guru style in their singing. They have travelled extensively and performed in prestigious venues all across India and abroad. They are A-graded artists of Akashvani and have had the privilege of performing in many special programs organized by Akashvani and Doordarshan. In tonight's concert, Chinmaya sisters Srimati Uma and Srimati Radhika are accompanied by Srimati Shraddha Ravindran on the violin, Shri B. Ganapati Raman on the Mridangam and Shri N. Sundar on Morsing.
0: कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए चिन्मया भगिनी प्रस्तुत कर रही हैं नाट्य राग और रूपक ताल में हरिकेशनल्लूर मुत्तैया भागवतर की रचना शक्ति गणपतिम।
1: The concert for tonight begins with the composition of Harikeshanallur Muthaiya Bhagavathar in Raga Nattai set to Rupaka Talam Shakti Ganapatim.

0: चिन्मया भगिनी अब प्रस्तुत कर रही हैं मां मव मीनाक्षी, वराली राग और मिश्र चापुताल में मुत्तुस्वामी दीक्षितर की रचना।
1: चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती राधिका फर्दर कंटिन्यूज देयर कॉन्सर्ट विद मा मव मीनाक्षी, अ कॉम्पोजिशन ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितर इन रागा वराली सेट टू मिश्र चापुतालम।

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं चिन्मया भगिनी, श्रीमती उमा और श्रीमती राधिका का गायन। आपके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्रीमती श्रद्धा रविंद्रन, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंग पर श्री एन सुंदर।
1: इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी आर लिसनिंग टू अ कर्नाटिक क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती राधिका। दे आर अकंपनीड बाय श्रीमती श्रद्धा रविंद्र ऑन द वायलिन, श्री बी गणपति रामन ऑन द मृदंगम एंड श्री एन सुंदर ऑन मोरसिंग।
0: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चिन्मया भगिनी प्रस्तुत कर रही हैं मोहनम राग और आदिताल में रचना नन्नू पालिम्पा, रचनाकार हैं संत त्यागराज।
1: चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती राधिका कंटिन्यूज देयर कॉन्सर्ट विद नन्नू पालिम्पा, अ कॉम्पोजिशन ऑफ सेंट त्यागराजा इन रागा मोहनम सेट टू आदितालम।

0: भगिनी प्रस्तुत कर रही हैं जौनपुरी राग और आदिताल में पापनासम शिवन की रचना मुरुगनई बजी मनमे।
1: चिन्मया सिस्टर्स कंक्लूड देयर कॉन्सर्ट विद मुरुगनई बजी मनमे, अ कॉम्पोजिशन ऑफ पापनासम शिवन इन रागा जौनपुरी सेट टू आदितालम।

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे चिन्मया भगिनी श्रीमती उमा और श्रीमती राधिका का गायन। आपके साथ संगत कर रहे थे वायलिन पर श्रीमती श्रद्धा रविंद्रन, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंह पर श्री एन सुंदर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के चेन्नई केंद्र में रिकॉर्ड किया गया तथा आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: In tonight's national program of music, you just listened to a Carnatic classical vocal concert by Chinmaya sisters Srimati Uma and Srimati Radhika. They were accompanied by Srimati Shraddha Ravindran on violin, Sri B. Ganapati Raman on mridangam and Sri N. Sundar on morsing. With that, we come to the end of tonight's national program of music. This program was recorded at the studios of Akashwani Chennai and was broadcast from Akashwani Delhi.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब आप समाचार सुनेंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
4: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
4: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI 823 हो गई है।
3: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़

रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। गृहमंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117.85 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,69,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी और अन्य संगठनों को मिली विदेशी फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने कहा कि जांच की जा रही है कि विदेश से प्राप्त राशि का इस्तेमाल कैसे किया गया, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी समानांतर जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर राशि का इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों के लिए किया गया है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 12 स्वर्ण, 16 रजत और 8 कांस्य पदकों सहित कुल 36 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंघास, अरुधंती चौधरी और सचिन सिवाच ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।